वंदे मातरम, सुप्रभात। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूँ आप सभी का रेडियो दोस्त सैकत चटर्जी। आप सभी का दिन मंगलमय हो, आप सभी स्वस्थ रहें, सानंद रहें, इसी मंगल कामना के साथ आपका स्वागत है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में। आज है दिन शुक्रवार, अंग्रेजी सन ईस्वी 2026 की जुलाई माह की 17 तारीख, तदनुसार शक संवत 1948 की आषाढ़ माह की 26 तारीख। अभी हमारी स्टूडियो की घड़ी में 5:58 होने को है। प्रारंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: आइए दोस्तों, आप दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी समाचार सुनते हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ से भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ियां परिचालन में हैं। इनमें जर्मनी, जापान, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
2: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री इसके बाद चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद श्री मोदी जालंधर में

0: 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केरलम में 6 पुनर्निर्मित अमृत रेलवे स्टेशनों के साथ देश भर के 75 अन्य अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। केरलम के इन स्टेशनों से राज्य में रेलवे के बुनियादी ढांचे और यात्रियों की सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। इन उन्नत स्टेशनों में आधुनिक प्लेटफॉर्म, बेहतर भवन, आधुनिक प्रतीक्षा कक्ष और यात्रियों के लिए उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इनका उद्देश्य यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सदन में अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगा। इस बैठक में NDA के विधायी एजेंडे, गठबंधन के सहयोगियों के बीच समन्वय और सत्र के दौरान विपक्ष का सामना करने के लिए एकीकृत रणनीति पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से अधिक परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में आज माय भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 से बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी समाचार। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र FM के 103 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब बात करते हैं खेत खलिहानों की, किसान भाइयों की। सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय है पॉली हाउस में खीरे की व्यावसायिक खेती। संकलन एवं वाचन स्वर रेडियो साथी सुनीता अग्रवाल का है।
2: खेती की बातें में श्रोताओं, आज हम बातें करेंगे पॉली हाउस में खीरे की व्यावसायिक खेती। श्रोताओं, पॉली हाउस में खेती एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सब्जी व फूल उत्पादन के उपयुक्त एवं नियंत्रित वातावरण बनाया जाता है। इसमें किसान बेमौसमी सब्जियों व फूलों का उत्पादन कर सकते हैं, जबकि खुले खेतों में मौसम के अनुसार ही किसान खेती कर पाते हैं। बेमौसमी सब्जी उत्पादन होने से जहां किसानों को अधिक लाभ होता है, वहीं लोगों को बेमौसमी हरी ताज़ा सब्जियां खाने को मिल जाती है। पॉली हाउस एक संरक्षित व फ्रेमयुक्त संरचना होती है। यह कम सघनता वाले पॉलीथीन अथवा पारदर्शी प्लास्टिक फिल्म और कीटरोधी नेट से ढकी होती है। इसके अंदर फसलों को नियंत्रित वातावरण में उगाया जा सकता है। गर्मी के मौसम में पॉली हाउस को ठंडा करने के लिए दोनों तरफ से पर्दे को उठा दिया जाता है। फवारा या ड्रिप सिंचाई का उपयोग करके उसे मौसम के अनुकूल बना दिया जाता है, जबकि ठंड के दिनों में पर्दा गिरा दिया जाता है। इससे पॉली हाउस के अंदर तापमान बढ़ जाता है। इस प्रकार किसान बेमौसमी सब्जियों व फूलों की खेती कर सकते हैं। इसके साथ ही तापमान नियंत्रण आर्द्रता के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, मृदा तापमान, पादप पोषक तत्व आदि को नियंत्रित किया जाता है ताकि वांछित सब्जी फसलों को वर्ष भर उत्पादन लिया जा सके। नियंत्रित जलवायु और मृदा परिस्थिति से पॉलीहाउस में उगाई गई सब्जी एवं फूलों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। पॉलीहाउस बनाने के लिए कम से कम 1000 वर्ग मीटर जमीन चाहिए और 2000 वर्ग मीटर तक पॉलीहाउस बनाने के लिए जिला उद्यान विभाग के माध्यम से किसानों को कुल लागत का 50% तक का अनुदान सरकार देती है। वहीं नेट हाउस के लिए कम से कम 500 वर्ग मीटर जमीन चाहिए, इसके लिए भी 50% तक अनुदान सरकार देती है। किसान पहले से पॉली हाउस बनाकर खेती कर रहे हैं और वह क्षतिग्रस्त हो गया है तो उनकी मरम्मत के लिए 75% अनुदान दिए जाते हैं। पॉली हाउस व नेट हाउस पर सरकार द्वारा चयनित एजेंसी किसानों के खेतों में मानक के अनुसार उसे तैयार कर किसानों को उपलब्ध करा देती है। पॉली हाउस बनाने पर 935 रुपये वर्ग मीटर का खर्च आता है, वहीं नेट हाउस के लिए 710 रुपये वर्ग मीटर खर्च आता है। खुले खेत के मुकाबले पॉली हाउस में उत्पादन 3 से 4 गुना अधिक बढ़ जाती है। पॉली हाउस का उपयोग नर्सरी तैयार करने के लिए भी किया जाता है। इसमें बेमौसमी फूलगोभी, बंद गोभी, शिमला मिर्च, खीरा, ककड़ी, भिंडी, टमाटर, परवल आदि सब्जियों की खेती की जा सकती है। इसके अलावा फूलों की भी बेमौसमी खेती की जा सकती है। पॉली हाउस बनाने में किसानों को खर्च अधिक पड़ता है, लेकिन बेमौसमी सब्जी उत्पादन होने से कीमत 3 से 4 गुना अधिक मिल जाती है। इनमें कीटों व रोगों को नियंत्रित आसानी से 100% किया जा सकता है। सब्जियों व फूलों की गुणवत्ता बनी रहती है तथा बाजार में अधिक भाव मिलता है। छोटी जोत वाले किसानों के लिए पॉली हाउस अधिक फायदेमंद है, अतः किसानों को इसे जरूर अपनाना चाहिए और इसका लाभ जरूर लेना चाहिए। और आज की जानकारी बस यहीं तक।

भरत के साथ आए अयोध्यावासी मंदाकिनी तट पर ठहरे हुए हैं। माताओं, गुरु तथा मंत्री से आज्ञा लेकर भरत निषाद राज और शत्रुघ्न के साथ श्री राम के आश्रम के समीप पहुंचते हैं। माता कैकेयी की करनी का ध्यान आते ही उनके मन में संकोच उत्पन्न होता है, किंतु श्री राम की सदाशयता और उदारता के प्रति वो उतने ही आश्वस्त हैं। आश्रम और प्रकृति की शोभा देख भरत के मन में वैसे ही आनंद का संचार होता है जैसे भूखे व्यक्ति को श्रेष्ठ भोजन प्राप्त करने पर होता है। रमणीय वन, सुहावनी पर्वत श्रृंखला, मुनियों के मनोरम निवास स्थान, वन प्रांतर के पशु पक्षी मन में एक सुखद साम्राज्य की कल्पना जगाते हैं। एक ऐसा परिवेश जहां केवल आनंद और मंगल की सृष्टि हो रही है। निषाद राज एक ऊंचे भूखंड पर चढ़कर भरत को श्री राम का आश्रम दिखाते हैं।

आइए दोस्तों, आप सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन। विषय है संघर्ष। संकलन एवं वाचन स्वर रेडियो साथी निर्मला तिवारी का है।

एक बार एक आदमी को अपने बगीचे में टहलते हुए एक टहनी से लटकता हुआ तितली का एक कोकून दिखाई पड़ा। अब हर रोज वह आदमी उसे देखने लगा। उसने ध्यान दिया कि उस कोकून में एक छोटा सा छेद बन गया है। उस दिन वह वहीं बैठ गया और घंटों उसे देखता रहा। उसने देखा कि तितली उस छेद से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही है, पर बहुत देर तक प्रयास करने के बाद भी उस छेद से वह बाहर नहीं निकल पा रही है। वह व्यक्ति शांत हो उसे देखता रहा। तितली शांत हो गई, मानो उसने हार मान ली हो। उस आदमी ने निश्चय किया कि वह तितली की मदद करेगा। उसने कोकुन के छेद को इतना बड़ा कर दिया कि वह तितली आसानी से बाहर निकल जाए। और हुआ क्या, तितली बिना किसी और संघर्ष के आसानी से बाहर निकल आई, पर उसका शरीर सूजा हुआ था, पंख सूजे हुए थे। वो आदमी इस तितली को ये सोचकर देखता रहा कि वह किसी भी क्षण अपने पंख को फैलाकर उड़ने लगेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके उलट बेचारी तितली कभी उड़ ही नहीं पाई। उसने अपनी बाकी की जिंदगी इधर उधर घसीटते हुए ही बिता दी। वह आदमी अपनी दया और जल्दबाजी में यह नहीं समझ पाया कि दरअसल कोकुन से निकलने की प्रक्रिया ही प्रकृति ने इतना कठिन इसलिए बनाया है ताकि ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल उसके पंखों में पहुंच सके और उसके पंखों को पहुंचकर उसे उड़ने लायक बना दें। ऐसा होता तो वह तितली स्वयं छेद से बाहर निकल आती और उड़ सकती थी। वास्तव में हमारे जीवन में कभी कभी संघर्ष ही वह चीज होती है जिसकी हमें सचमुच आवश्यकता होती है। यदि हम बिना किसी संघर्ष के सब कुछ पाने लगें, तो हम भी अपने अपंग हो जाएंगे उस तितली के समान। बिना परिश्रम और संघर्ष के कभी उतनी मजबूत स्थिति नहीं बन पाएगी। हम उतने मजबूत नहीं हो सकते हैं जितनी हमारी क्षमता है। इसलिए जीवन में आने वाले कठिन पलों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए। वक्त कुछ ऐसा सिखा जाएगा कि हमारी जिंदगी की उड़ान आसान हो जाएगी। बिना परिश्रम के अगर सब कुछ हमें प्राप्त होने लगे तो मनुष्य अकर्मण्य हो जाएगा, जिससे उसकी क्षमता घटने लगेगी। इसलिए संघर्ष और परिश्रम ही हमारे जीवन को अग्रसर होने की प्रेरणा देते हैं। सोना जितना तपता है, जितना उसे तपाया जाता है, उतनी ही उसकी चमक बढ़ती है। आभूषण भी तभी बनते हैं। इसलिए हमें संघर्ष और परिश्रम से घबराना नहीं चाहिए।

0: आइए दोस्तों, अब सुनते हैं गांधी कथा। वाचन, स्वर एवं प्रस्तुति अनुराधा सिंह का है।
1: आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है, प्रस्तुत है गांधी कथा।

प्रस्तुत है गांव का आहार के बारे में गांधी जी के विचार। हाथ कुटाई का चावल, अगर चावल पुरानी पद्धति से गांव में ही कूटा जाए तो उसकी मजदूरी हाथ कुटाई करने वाले बहनों के हाथ में जाएगी और चावल खाने वाले लाखों लोगों को, जिन्हें आज मिलों के पॉलिश किए हुए चावल से केवल स्टार्च मिलता है, हाथ कुटे चावल से कुछ पोषक तत्व भी मिलेंगे। चावल पैदा करने वाले प्रदेशों में जहां तहां जो भयावनी चावल की मिलें खड़ी दिखाई देती हैं, उनका कारण मनुष्य का वह अमर्यादित लोभ ही है, जो न तो अपनी तृप्ति के लिए अपने पंजे में आए हुए लोगों के स्वास्थ्य की परवाह करता है और न उनके सुख की। अगर लोकमत शक्तिशाली होता तो वह चावल की मिलों के मालिक से इस व्यापार को समूचे राष्ट्र के स्वास्थ्य को खोखला बनाता है और गरीबों को जीविकोपार्जन के एक ईमानदारी के साधन से वंचित करता है, बंद करने का अनुरोध करता और हाथ कुटाई के चावलों के ही उपयोग का आग्रह रखकर चावल कुटने वाली मिलों का चलना अशक्य कर देता। गेहूं का चोकर युक्त आटा, ये तो सभी डॉक्टरों की राय है कि बिना चोकर का आटा उतना ही हानिकर है जितना कि पॉलिश किया हुआ चावल। बाजार में जो महीन आटा या मैदा बिकता है उसके मुकाबले में घर की चक्की का पिसा हुआ बिना चला गेहूं का आटा अच्छा भी होता है और सस्ता भी। सस्ता इसलिए होता है कि पिसाई का पैसा बच जाता है, फिर घर के पिसे हुए आटे का वजन कम नहीं होता, महीन आटे या मैदे में तौल कम हो जाती है। गेहूं का सबसे पौष्टिक अंश उसके चोकर में होता है। गेहूं की भूसी चाल कर निकाल डालने से उसके पौष्टिक तत्व की बहुत बड़ी हानि होती है। ग्रामवासी या दूसरे लोग जो घर की चक्की का पिसा आटा बिना चला हुआ खाते हैं, वे पैसे के साथ साथ अपना स्वास्थ्य भी नष्ट होने से बचा लेते हैं। आज आटे की मिलें जो लाखों रुपए कमा रही हैं, उस रकम का काफी बड़ा हिस्सा गांव में हाथ की चक्कियां फिर से चलने लगने से गांव में ही रहेगा और वह सतपात्र गरीबों के बीच बढ़ता रहेगा। गुड़, डॉक्टरों की राय के अनुसार गुड़ सफेद चीनी की अपेक्षा कहीं अधिक पौष्टिक है और अगर गांव वालों ने गुड़ बनाना छोड़ दिया तो उनके बाल बच्चों के आहार में से एक जरूरी चीज निकल जाएगी। वे खुद शायद गुड़ के बिना अपना काम चला सकेंगे पर उनके बच्चों की शारीरिक ताकत गुड़ के अभाव में निश्चय ही घट जाएगी। अगर गुड़ बनाना जारी रहा और लोगों ने उसका उपयोग करना न छोड़ा तो ग्रामवासियों का करोड़ों रुपया उनके पास ही रहेगा। हरी पत्ता भाजियां, आहार या विटामिनों के विषय पर लिखी गई कोई भी आधुनिक पाठ्य पुस्तक उठाइए तो उसमें आप इस बात की जोरदार सिफारिश पाएंगे कि हर एक भोजन के साथ थोड़ी सी कच्ची हरी पत्ता भाजी जरूर ली जाए। बेशक खाने से पहले उन्हें 4-6 बार अच्छी तरह से धो लेना चाहिए ताकि उनमें लगी हुई मिट्टी और दूसरा कचरा बिल्कुल साफ हो जाए। ये पत्ता भाजियां हर एक गांव में आसानी से मिल सकती हैं, सिर्फ उन्हें तोड़ने की जरूरत है। फिर भी हरी पत्ता भाजियां शहरों के ही लोगों के शौक की चीज समझी जाती है। भारत के अधिकांश हिस्सों में गांव वाले तो दाल चावल या रोटी पर ही गुजारा करते हैं और इनके साथ बहुत सी मिर्चें खाते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाती है। चूंकि गांव के आर्थिक पुनर्गठन का काम आहार के सुधार से शुरू किया गया है, इसलिए सस्ते और सादे ऐसे खाद्यों को ढूंढ निकालना बहुत जरूरी है जिसे गांव वाले अपना खोया हुआ स्वास्थ्य पुनः प्राप्त कर सके। भोजन के साथ थोड़ी सी हरी पत्ता भाजी लेने से गांव के लोग ऐसे अनेक रोगों से बच जाएंगे जिनसे वे आज तकलीफ भोगते हैं। गांव वालों के भोजन में विटामिनों की कमी है, उनमें से अधिकांश की पूर्ति ताजे हरे पत्तों से हो सकती है। मैंने अपने भोजन में सरसों, सोया, सलजम, गाजर और मूली की सिर्फ पत्तियां लेना शुरू किया है। ये कहने की जरूरत नहीं कि सलजम, गाजर और मूली की सिर्फ पत्तियां ही नहीं, उनके कंद भी कच्चे खाए जाते हैं। इनकी पत्तियों या कंदों को आग पर पकाकर खाना उनके सुप्रिय स्वाद को मारना और पैसे का दुर्व्यय करना है। आग पर पकाने से इन भाजियों की विटामिन

0: विटामिन बिल्कुल या अधिकांश नष्ट हो जाते हैं। इन्हें पकाकर खाना इनके स्वाद की हत्या करना है। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ कि कच्ची भाजियों में एक प्राकृतिक स्वाद होता है जो कि पकाने से नष्ट हो जाता है।
1: आइए दोस्तों, आप सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा। भेंटवार्ता का विषय है अकेलेपन से बचे। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर संजय कुमार मुंडा, जबकि इनसे बातें कर रहे हैं संजीव कुमार लाल।
2: मित्रों, आजकल देखा जा रहा है कि लोग अकेलापन का शिकार हो रहे हैं, लोग अकेला रहना चाहते हैं। आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? हम अकेले क्यों रहना चाहते हैं? क्यों लोगों से मिलना जुलना हम पसंद नहीं करते हैं? यदि हम लोगों से मिलेंगे, जुलेंगे, दोस्त बनाएंगे, परिवार के साथ अच्छे समय बिताएंगे तो हम खुश रह सकते हैं। तो आज का हमारा विषय यही है कि आप अकेले क्यों हैं। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित हैं केंद्रीय मनोचिकित्सक संस्थान के सह प्राध्यापक डॉक्टर संजय कुमार मुंडा जी। डॉक्टर साहब स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: डॉक्टर साहब, आजकल अकेलापन लोगों को क्यों घेर रहा है, क्या कारण मानते हैं आप?
3: अकेलापन एक ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति भीड़ में भी अकेला महसूस कर सकता है, लेकिन आप अगर इसको समझने की कोशिश करें तो हम में से हर कोई जिंदगी में कभी ना कभी अकेलापन चाहता है। खासकर जब हमारा जीवन काफ़ी उलझ गया होता है तो हर इंसान चाहता है कि थोड़ा समय एकांत में बैठ करके, थोड़ा आत्मचिंतन करके कुछ अपनी स्थिति को समझने का प्रयास करता है, उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है। तो ये अकेलापन एक सकारात्मक पहलू है जहां व्यक्ति आत्मचिंतन की तरफ जाता है। अकेलापन अब एक आदत के तौर पे लोगों में आता जा रहा है। ये क्यों हो रहा है, ये समझने की ज़रूरत है। पहला कारण, संवादहीनता। लोग अब एक दूसरे के साथ उस प्रकार से संवाद नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करते हैं। संवाद करने के जगह पे लोगों के हाथों में अब बहुत सारे गैजेट्स आ गए हैं, चाहे मोबाइल आ गया है, चाहे लैपटॉप आ गया, चाहे OTT आ गया। लोग अपने आप को एंटरटेन करना अपने तरीके से एकांत में सीख रहे हैं, बजाय इसके कि एक सामाजिक प्राणी होने के नाते एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित करके जिए, लोग अकेलापन का चाह ज़्यादा रख रहे हैं। तो एक तो ये है। तीसरा कैटेगरी इस तरह का हो रहा है कि लोग जो परेशान है, जो ज़्यादा तनाव में है, वो अब क्या हो रहा है, उनके अंदर एक किस्म का हीन भावना भी आ रही है और लोगों में आत्मविश्वास की कमी आ रही है। तो ऐसे लोग भी हैं जो एकांत को जो है वो मजबूरी में ले रहे हैं, तो उनकी मानसिक अवस्था इस प्रकार से हो जाती है कि वो एकांत में रहने को मजबूर हो जाते हैं। तो एक तबका इस तरह के भी लोगों का होता है। ज़्यादातर आज के युग में जिस तरह का जीवन शैली हम लोगों का बन गया है, उसमें अकेलेपन के लिए बहुत सारे अवसर बने हुए हैं, इसलिए लोग ज़्यादातर उन्हीं अवसरों पर रह लेते हैं। संवाद स्थापित करने का अवसर, सामाजिक होने का अवसर कम से कम होता जा रहा है, तो लोग उसकी तरफ नहीं जा पा रहे हैं, सीधी सी बात है। तो लेकिन इन अवसरों को पैदा करने की ज़रूरत है, इन अवसरों को बनाने की ज़रूरत है अपने जीवन में, जो कि लोग शायद नहीं कर रहे हैं।
2: कोई व्यक्ति किसी से संवाद स्थापित भी करता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं कटाक्ष होता है।
3: हाँ, दो दो बातें हो रही हैं। एक तो संवादहीनता है कि लोग एक दूसरे से संवाद ही नहीं करें। एक घर में ही पूरा परिवार, कई बार ऐसा होता है पूरे दिन में शायद मुश्किल से कुछ पल के लिए ही एक दूसरे से बात किया हो, जबकि वो लोग सुबह से शाम तक एक साथ एक घर में हैं। तो आप समझ सकते हैं ऐसी स्थितियां भी हैं। दूसरा है, संवाद की कमी तो है, दूसरा है अगर संवाद हो भी रहा है तो वो बहुत ही त्रुटिपूर्वक हो रहा है। उसमें बहुत सारे मतलब कटाक्ष, जैसे आपने कहा, जब भी संवाद हो रहा है तो लोग एक दूसरे की कमियां को बता रहे हैं, जब भी संवाद हो रहा है लोग एक दूसरे पे कटाक्ष कर रहे हैं, जब भी संवाद हो रहा है तो लोग एक दूसरे से उलझ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति जब आने लगती है तो लोगों को लगता है इससे अच्छा तो है कि हम बात ही ना करें। तो वो स्थिति भी आती है कि लोग बात करने से कतराते हैं, बात करने का अवसर बनाने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो एक संवादहीनता और साथ में ऐसी स्थिति का आ जाना जहाँ कि एक हेल्दी डायलॉग्स आपस में लोग नहीं स्थापित कर सकते हैं,

0: सबके साथ होते हुए भी व्यक्ति अकेला ही होता है।
1: इसका दुष्प्रभाव क्या देखने को मिल रहा है? ये कहने के हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है।
0: शारीरिक स्थिति ये होती है कि ज़्यादातर लोग अकेलेपन में या तो बैठे हुए अवस्था में रहेंगे या लेटे हुए अवस्था में रहेंगे। अगर हम बोले फिज़िकल एक्टिविटी की बात करें तो अधिकतर फिज़िकल एक्टिविटी जो होता है वो सामाजिक दायरे पे ही होते हैं। चाहे हमें किसी के घर जाना है या कोई हमारे घर आ रहा तो उनके लिए तैयारी करना है, ये एक सामाजिक दायरे में हम कुछ गतिविधियों में लिप्त होते हैं। लेकिन अकेलेपन में कोई भी किस्म का फिज़िकल एक्टिविटी की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो शारीरिक तौर पे व्यक्ति जो है एक तरह से पूरी तरह से आप कह सकते हैं एक्शन रहित हो जाता है, वो कोई काम नहीं करता, निष्क्रिय हो जाता है। दूसरा चीज होता है कि जब व्यक्ति अकेलेपन में रहता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो क्षमता जो है संवाद स्थापित करने की क्षमता जो होती है, एक जो हम सोशल स्किल बोलते हैं, आपके अंदर वो स्किल, वो क्षमता जिससे कि आप लोगों के साथ संवाद स्थापित करते हैं, आप उनकी भावनाओं को समझते हैं, आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, ये सारी चीज़ें प्रभावित होने लगती हैं। तो लोगों के अंदर में एक कमी सी आने लगती है, लोग दूसरों की भावनाओं को नहीं समझ सकते हैं, लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते। क्योंकि सामाजिक स्तर पर जब हम जितना अधिक इस तरह का व्यवहार करेंगे हम उतने और एक तरह से मजबूत होते जाते हैं इन क्षेत्रों में, लेकिन जब ये चीज़ें नहीं होती है, सामाजिक तौर पे ये गतिविधियां नहीं हो रही है, तो एक इस पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ सोचने समझने वाली बात भी, एक बौद्धिक स्तर पे जो हमारा विकास होता है, हम दूसरों के विचारों को आत्मसात करते हैं, अपने विचारों को दूसरों को शेयर करते हैं, इन सब चीज़ों पे प्रभाव पड़ता है। कई बार दूसरों का जो एक मत होता है उसको ग्रहण करने में आप बहुत कठिनाई होती है। जब लोग सामाजिक होते हैं तो लोग दूसरों को मत से अगर वो सहमत नहीं भी है तब भी वो आगे बढ़ना जानते हैं, लेकिन जब संवादहीनता वाली बात होती है तो ऐसा होता है कि मेरे मत से कोई दूसरा व्यक्ति उसको सहमति नहीं दे रहा है तो वहाँ पर एक टकराव की स्थिति आ जाती है। तो ज़्यादातर अकेलापन एक टकराव वाली स्थिति भी पैदा करता है जब भी इससे लोग बाहर आने की कोशिश करते हैं। तो इसके साथ साथ एक तबका ऐसा भी होता है जो धीरे धीरे अकेला रहते रहते रहते वो एक ऐसी स्थिति में पहुँच जाता है जहाँ उसका जीवन पूरी तरह से समाज के बिना एक जीवन की आप कल्पना किस तरह से कर सकते हैं, तो वो समाज से जब वो कट जाता है तो एक बहुत ही खराब स्थिति पैदा हो जाती है।
1: कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में वो घुले मिले, लोगों को सहयोग करे, तो कैसे इन सब चीज़ों से हम बाहर निकले?
0: जी, अकेलापन का, जैसे मैं अभी आपने प्रभाव पूछा था, अकेलापन का प्रभाव व्यक्तिगत स्तर पे होता है, पारिवारिक स्तर पर होता है, और वृहत तौर पे कहे तो सामाजिक, समाज के स्तर पे भी होता है। तो अब बचाव के तरीके भी इसी तरह से व्यक्तिगत स्तर पर हर व्यक्ति को एक कोशिश करनी चाहिए कि वो अगर रोजाना नहीं तो हफ्ते में सही कुछ ऐसा समय जरूर निकाले जब वो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिचित लोगों के साथ और परिवार के साथ संवाद स्थापित करे, बातचीत करे, और बातचीत का विषय कुछ भी हो सकता है आपकी सुविधा के अनुसार। तो बातचीत करना शुरू कीजिए अपने आसपास के लोगों के साथ में। अभी आप स्थिति देख लीजिए, पहले जब मोबाइल और इन सब का युग नहीं था तो स्टेशन में या बस स्टैंड में स्थिति ये होती थी कि लोग एक दूसरे से बगल में कोई भी बैठा हुआ उसके साथ बात करते थे। आजकल स्थिति हो गई है कि परिवार के दो लोग भी अगल बगल की सीट में बैठे हैं तो वो आपस में बात नहीं करेंगे, वो अपने मोबाइल में ही कुछ कर रहे होते हैं। तो संवाद स्थापित करने की ज़रूरत है सबसे पहला बात। दूसरी बात ये हो जाती है कि माहौल को ऐसा बना कर रखिए कि आप घर में खाना खा रहे हैं तो एक साथ एक जगह पर आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, ये स्थिति एक ऐसी हो जाएगी कि परिवार कुछ गतिविधियां रोज ऐसा कर रहा है जिसमें कि परिवार एक सम्मिलित रूप से उसमें भाग ले रहा है, चाहे वो खाना खाने का हो। मैं कुछ लोगों को जो हमारे यहाँ आते हैं मरीज रोगी, उनको मैं सलाह देता हूँ कि 2-3 गतिविधि आपको रोज ऐसी करनी चाहिए जो एक सम्मिलित रूप से परिवार की गतिविधि कहलानी चाहिए। सुबह में उठ करके सामूहिक व्यायाम कीजिए, चाहे वो सामूहिक प्राणायाम हो, योग हो, या कोई भी व्यायाम हो, या

0: चलना फिर टहलना हो, ये आप एक यूनिट की तरह परिवार कर रहा है, एक अकेला इंसान कर रहा है वैसी बात नहीं होनी चाहिए, वो पारिवारिक गतिविधि होनी चाहिए। नाश्ता पूरा परिवार एक साथ बैठ के कर रहा है, खाना पूरा परिवार एक साथ बैठ के कर रहा है, शाम के वक्त में हल्की फुल्की बातें करना, कुछ मनोरंजक गतिविधियां करना, जैसे कि साथ में बैठ करके अगर आप फिल्म भी देखना चाहते हैं साथ में बैठ करके देखिए, आप अगर कुछ गेम्स वगैरह इंडोर गेम्स खेलना चाहते हैं तो वो साथ में बैठ कर कीजिए, बैडमिंटन खेल सकते हैं, कुछ आउटडोर गेम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो एक सामूहिक रूप से करने वाली गतिविधियों को अपने जीवन में स्थान दीजिए, ये सबसे ज़रूरी है इससे बाहर आने का। और सबसे बड़ा बात है, अगर आप अकेलेपन का शिकार है और आप इससे बाहर आना चाहते हैं तो आप दूसरों से मदद मांगिए, आप अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों के साथ शेयर करना सीखिए, ये तभी होगा जब आप संवाद स्थापित करना जानते हैं करते हैं। तो संवाद स्थापित करना इसलिए भी जरूरी है ताकि आप अपने परेशानियों को भी दूसरों से साझा कर सके। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है एक स्तर पर कि सामाजिक हम प्राणी हैं, सामाजिक प्राणी बनकर ही आगे जिए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है।
1: लोगों से मिलिए, लोगों से अच्छी अच्छी बातें कीजिए, हंसी ठिठोरी कीजिए, एक अच्छा समय बिताने की कोशिश कीजिए, अकेलापन आप पर हावी नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय कुमार मुंडा साहब आज आप इस कार्यक्रम में। और मित्रों, रोजाना की तरह हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। आज का दिन आपके लिए शुभ एवं मंगलमय हो। नमस्कार,
0: धन्यवाद।

दोस्तों ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। आज भेंटवार्ता का विषय था अकेलेपन से बचे। भेंटवार्ताकार थे डॉक्टर संजय कुमार मुंडा, जबकि उनसे बातें कर रहे थे श्री संजीव कुमार लाल। इससे पहले दोस्तों आप हमारे केंद्र से जुड़कर सुन रहे थे गांधी कथा, वंदना आपने सुना, चिंतन, रामचरित मानस गान, और हमने बातें की खेत खलिहानों की, जिसके तहत आपने सुना कार्यक्रम खेती की बातें। दोस्तों ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनते हैं कुछ संदेश।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
3: आइए दोस्तों, आप जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से और बारी बारी से सुनते हैं संस्कृत।

0: स्पर्धायाः श्रेष्ठ क्रीडकः इति सम्मानम् अलभत। अधुना उभयदले रविवासरे लण्डन् नगरस्य लॉर्ड्स क्रिकेट इत्येतस्मिन् क्रीडाङ्गणे आयोज्यमाने अन्तिमायां निर्णायक श्रृङ्खलायां परस्परं स्पर्धिष्यतः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रूपए की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिलान्यास करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2,600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3,200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
1: जींद के बाद प्रधानमंत्री मोदी चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सदन में अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगा। इस बैठक में एनडीए के विधायी एजेंडे, गठबंधन के सहयोगियों के बीच समन्वय और सत्र के दौरान विपक्ष का सामना करने के लिए एकीकृत रणनीति पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमा खाच सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते एटीएस ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े कथित आतंकी मॉड्यूल के जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के नाम इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 8 कथित सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कतर के अमीर की अमर विरासत दोनों देशों को उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। खेलों में हॉकी इंडिया देश भर में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए कल से राष्ट्रीय स्तर पर कोचिंग और ऑफिशिएटिंग एजुकेशन पाथवे कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इस पहल का उद्देश्य कोचों और तकनीकी अधिकारियों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाना तथा देश में हॉकी शिक्षा को अधिक व्यवस्थित बनाना है। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को

दोस्तों ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट सैकर चैटर्जी। दोस्तों आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के केंद्र से प्रसारित कार्यक्रमों को। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं आगे हमारे आकाशवाणी केंद्र से और क्या क्या प्रसारित होंगे। दोस्तों सो अब से कुछ ही देर बाद 7:15 पर हम सुन सकेंगे लोकगीतों का हमारा कार्यक्रम पलाश। पलाश में हम आज सुनेंगे झिरका भगत एवं साथियों से कई उराव लोकगीत। दोस्तों जैसे ही लोकगीतों का कार्यक्रम समाप्त होगा वैसे ही हम जुड़ जाएंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम से और 7:45 से सुन सकेंगे स्वर सरिता। आज के हमारे कलाकार होंगे हरिहरण एवं कविता कृष्णमूर्ति। दोस्तों इसके बाद सुबह 8 हम जुड़ेंगे समाचार प्रभात से जो दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। 8:15 पे दिल्ली केंद्र से ही रिले मॉर्निंग न्यूज सुनने के बाद हम जुड़ जाएंगे 8:30 पर अपने रांची केंद्र से और सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। दोस्तों समाचारों का दौर खत्म होते ही हम रुख करेंगे मनोरंजन की दुनिया की ओर और सुनेंगे आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम गीत गुंजन जो 8:45 से प्रसारित किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों सुबह 9 हम जुड़ेंगे जोहार पलामू कार्यक्रम से और सुनेंगे आज के इतिहास और स्थानीय गतिविधियां तथा फिल्म गीत। 9:30 पर आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर हम सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का भाग 1330। दोस्तों इसके बाद समाचारों का सिलसिला चल पड़ेगा और 10 हम जुड़ जाएंगे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे अंग्रेजी समाचार जबकि 10:05 पे प्रसारित किया जाएगा हिंदी समाचार। मित्रों 10:10 पे हम जुड़ जाएंगे विविध भारती से और सुनेंगे कार्यक्रम हेलो फरमाई। 11 सुनेंगे विविध भारती की प्रस्तुति रंग तरंग। 12 सुनेंगे फिर से एक बार विविध भारती की प्रस्तुति यादों की महफिल। दोस्तों इस तरह से शाम 5:30 तक हमारा जुड़ाव दिल्ली मुंबई वो रांची केंद्र से बारी बारी से होता रहेगा जहां से हम दिल्ली केंद्र से सुनेंगे अंग्रेजी समाचार हिंदी समाचार रांची केंद्र से सुन पाएंगे प्रादेशिक समाचार और विविध भारती से जुड़कर सुनेंगे सुरीला सफर सदाबहार नगमे सखी सहेली और हल्लो फरमाइश जैसे कार्यक्रमों को। शाम 5:30 पे हम फिर से एक बार जुड़ जाएंगे आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से और सुनेंगे हमारे रेडियो साथी से सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। यह है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र और दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

दोस्तों, ये है कार्यक्रम पलाश, जो कि लोकगीतों का कार्यक्रम है। और आइए, इसके तहत हम आज सुनेंगे झिगरा भगत एवं साथियों की आवाज में कुछ ओराव लोकगीत।

दोस्तों आप सुन रहे थे लोकगीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम पलाश। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत पर आधारित हम लोगों का कार्यक्रम स्वर सरिता। आज स्वर सरिता कार्यक्रम में हम सुनेंगे हरिहरण को।

दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वर सरिता। आज के स्वर सरिता के हमारे कलाकार थे हरिहरण। आइए दोस्तों आप बारी बारी से जुड़ते हैं दिल्ली और रांची केंद्र से, जहां से आप सुन पाएंगे हिंदी समाचार, अंग्रेजी समाचार और रांची केंद्र से रिले प्रादेशिक समाचार। कृपया दोस्तों कुछ पल प्रतीक्षा करें।

कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।

0: हैं तो हम हैं। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
1: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जींद के बाद वे चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद SCS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब और श्री अनंतपुर साहिब रेलवे स्टेशनों सहित 20 राज्यों के 74 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का जलंधर से ही वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इन स्टेशनों का पुनर्निर्माण दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास प्रोग्राम में से एक अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत किया गया है। वह जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यह भारत के दो सबसे पवित्र आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली डायरेक्ट रेलगाड़ी है, जो हफ्ते में 3 बार चलेगी। प्रधानमंत्री नंगल डैम, तलवाड़ा, मुकेरिया नई रेल लाइन प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर दौलतपुर चौक करतौली नई रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे और करतौली अंबाला ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे आज तीनों राज्यों के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इनका सबसे अधिक लाभ देश की युवा शक्ति को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें केरल के 6 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा

मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आरजी आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति और इसके कार्यान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस नीति के तहत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा।
4: नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के अंतर्गत दिल्ली सरकार वार्षिक दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव का आयोजन करेगी। इसमें नवाचार करने वाले युवा, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, निवेशक, उद्योग जगत और नीति निर्माता एक मंच पर आकर नए विचारों का प्रदर्शन करेंगे, साझेदारियां विकसित करेंगे और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करेंगे। शुरुआत में यह नीति 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी वित्त पोषित कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। सरकार पात्र शैक्षणिक संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य राजधानी को देश के अग्रणी नवाचार और उद्यमिता केंद्र के रूप में विकसित करना है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। एजेंसी ने कहा है कि परिणाम समय पर घोषित किए गए हैं ताकि उम्मीदवारों के लिए प्रवेश और काउंसलिंग कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। इस वर्ष भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों स्थित 5,440 केंद्रों पर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने पुनर्परीक्षा दी थी। गुजरात आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के नाम इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 8 कथित सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। जिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमाकांच सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा संबंधी मुद्दों पर एक बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। केरलम में आज से रमाण मास का शुभारंभ हुआ। केरलम में मलयालम पंचांग के कंगंडम महीने को रमाण मास के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शांति के लिए रमाण का पाठ करते हैं। आज से करगिंडम महीने की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही आज से राज्य के अनेक घरों और मंदिरों में प्रतिदिन रमाण पाठ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके और पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कतर के अमीर की अमर विरासत दोनों देशों को उनकी

रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। उन्होंने भारत और कतर में भारतीय समुदाय के प्रति स्नेह और भारत कतर संबंधों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को भी याद किया। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर कश्मीरी प्रवासियों ने

0: नागरिकों, महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ हिंसा की है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने वामपंथी चरमपंथी आतंकवादियों को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए नई वीजा प्रतिबंध नीति लागू की है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये नीति ऐसे तत्वों को रोकने के लिए है जो हिंसक गतिविधियों के जरिए लोगों की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल देखने के लिए रविवार को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। फाइनल मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। फुटबॉल विश्व कप संयुक्त रूप से राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया और न्यू जर्सी में होने वाले फाइनल के साथ इसका समापन होगा। फुटबॉल में भारत की महिला टीम को एएफसी अंडर 17 अगले वर्ष होने वाले एशियन कप क्वालिफायर के ग्रुप ई में मलेशिया, सीरिया और इराक के साथ रखा गया है। भारत लगातार दूसरी बार महिला एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नीट पेपर लीक के बाद अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच आयोजित नीट यूजी 2026 का परिणाम घोषित होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी है। हिंदुस्तान लिखता है, नीट यूजी का परिणाम जारी, सफल होने वालों में 58% छात्राएं। अमर उजाला के शब्द हैं, पंजाब के आर्यन और हरियाणा के पंशुल अव्वल, 19 बच्चों को 700 से अधिक अंक। अमेरिका और ईरान के बीच ताजा सैन्य संघर्ष को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाया। जनसत्ता ने इस खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, होर्मुज पर जहाजों में भारतीय नागरिकों की तैनाती पर रोक, नौवहन प्रशासन महानिदेशालय का निर्देश। पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़, 1 श्रद्धालु की मौत, लोकसत्य की सुर्खी है। पत्र लिखता है, खराब मौसम और बारिश के बाद उमड़ी 10 लाख की भीड़। राजधानी में 16 साल के बाद सबसे लंबा मॉनसून ब्रेक। दिल्ली में अगले 4-5 दिन और अच्छी बारिश होने की उम्मीद बेहद कम, हिंदुस्तान की सुर्खी है। दैनिक भास्कर ने अनुमान शीर्षक से खबर दी है, दो नए सिस्टम से रफ्तार पकड़ेगा मॉनसून, 20 से उत्तर और मध्य भारत में तेज बारिश, 40 से अधिक देशों के साथ साझा समुद्री अभ्यास, 20 जुलाई से होगा, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, कोच्चि स्थित सदर्न नेवल कमांड में होगी ऑपरेशन की शुरुआत। लोकसत्य ने साइबर अपराध पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, शीर्षक दिया है, डिजिटल भारत पर साइबर अपराध का साया। पत्र लिखता है, साइबर अपराध की सबसे चिंताजनक बात है कि इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। दुनिया के कई देशों में बैठे अपराधी भारत के नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं, ऐसे में सभी को सावधान रहना जरूरी है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू फ्लैग ऑफ इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन फ्रॉम जींद रेलवे स्टेशन इन हरियाणा दिस मॉर्निंग। Delhi government approves 400 crore rupees startup and incubation policy to promote innovation and self-employment. National Testing Agency declares results of NEET UG 2026 re-examination. Gujarat ATS arrests 5 persons from Patan district in connection with its probe into Jaish-e-Mohammed terror module. And in men's cricket, Hosts England beat India by 4.

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के पिस्का, मोरी और बिमलगढ़ रेलवे स्टेशनों का आज लोकार्पण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत शहरी क्षेत्रों में कल और 20 जुलाई को सभी मतदान केंद्रों पर लगेंगे विशेष शिविर। श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को लेकर रेलवे ने 26 जुलाई से 12 सितंबर तक रांची और भागलपुर के बीच 4 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का लिया निर्णय। झारखंड में संगठित अपराध पर अंकुश के लिए पुलिस ने विकसित किया सी

0: 360 सॉफ्टवेयर अपराधियों की निगरानी होगी और अधिक प्रभावी। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के असर से झारखंड में बारिश का दौर जारी। आज खूंटी, गुमला, सिमडेगा सहित 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किए गए झारखंड के 3 प्रमुख रेलवे स्टेशनों का आज लोकार्पण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रांची रेल मंडल के पिस्का और मूरी स्टेशन तथा चक्रधरपुर रेल मंडल के बिमलगढ़ रेलवे स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बताया कि इन रेलवे स्टेशनों को मॉडल रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। यहां यात्रियों के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
1: हमने वायदा किया था यहाँ की जनता से कि हम इसको आनंद विहार बनाएंगे, और देखो 5 साल बाद ये आनंद विहार के लुक में है, जिसमें 2 लिफ्ट लग गई है, प्लेटफार्म बन गए हैं, वेटिंग रूम सारा सब कुछ हो गया है, रैंप बन गया है। 8 लाइन का ये स्टेशन होने वाला है। अब इसके बाद भी जहाँ खाली जगह है वहाँ एक और बिल्डिंग बनने वाली है।
0: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत समय पर गणना प्रपत्र जमा कर रहे हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं विशेषकर युवाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत कम है। उन्होंने बताया कि मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए कल और 20 जुलाई को शहरी क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में यह मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि यह सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। खूंटी में गलत ब्लड ग्रुप का रक्त चढ़ाए जाने के बाद एक आदिवासी महिला की मृत्यु के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिजनों को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाते हुए कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी।
2: अस्पताल में गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वजह से रिएक्शन हुआ और मृत्यु हो गई। ये एक बड़ी चूक हुई कि इस तरह के घटना के वजह से उसका सजा एक गरीब परिवार को मिला। अब इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। प्रशासनिक तंत्र को ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए उपाय करना चाहिए।
0: देवघर श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने 26 जुलाई से 12 सितंबर तक रांची और भागलपुर के बीच 4 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें सुल्तानगंज, जमालपुर और अभयपुर स्टेशनों पर भी रुकेंगी, जिससे बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। ट्रेनों में जनरल, स्लीपर और वातानुकूलित श्रेणी के कोच उपलब्ध रहेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड में संगठित अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस ने पलामू, गढ़वा और लातेहार में C360 सॉफ्टवेयर विकसित किया है। पलामू प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक कौशल किशोर ने बताया कि यह सॉफ्टवेयर अपराधियों का डिजिटल डेटाबेस है, जिसे पुलिस के मोबाइल ऐप से भी जोड़ा जा रहा है। इससे अपराधियों की निगरानी और कार्रवाई को अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी।
3: 360 के अंतर्गत हम लोग एक इस प्रकार का सॉफ्टवेयर हम लोगों ने डेवलप किया है, जिसको कि हम लोग अपने प्रमंडल में लागू

0: करने जा रहे हैं, जिसमें जो भी अपराधकर्मी हैं उनका एक तरीके से एक विस्तृत पोर्ट डिजिटल डेटाबेस के रूप में संधारित किया जाएगा, जिससे कि इस प्रकार के अपराधियों पर लगातार निगरानी की जा सके। साथ ही साथ उनके द्वारा अगर किसी प्रकार की घटना को पारित किया जाता है तो उनकी गिरफ्तारी में तुरंत इस प्रकार की सूचनाओं से हम लोगों को सहायता मिल सके।
1: रांची स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम हमले की जांच के सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने लोहरदगा में कई स्थानों पर छापेमारी की। ये छापामारी इस मामले में न्यायिक हिरासत में बंद आरोपियों के आवास सहित कुछ अन्य ठिकानों पर की गई। तलाशी के दौरान कुछ डिजिटल सामग्री और अन्य साक्ष्य जब्त किए जाने की सूचना है, हालांकि एनआईए ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। बोकारो जिले में प्रतिबिंब ऐप से मिली सूचना के आधार पर बोकारो पुलिस ने साइबर अपराध से जुड़े एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा ने बताया कि सेक्टर 12 और मारफारी थाना क्षेत्र में की गई छापेमारी में मोबाइल फोन, सिम कार्ड, बैंक दस्तावेज, डेबिट कार्ड और नकदी बरामद की गई है।
2: प्रतिबिंब के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई के आधार पर टोटल 9 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। इनसे पूछताछ किया गया, इन्होंने साइबर अपराध में संलिप्तता स्वीकार की है। तो ये बैंक कर्मी बनके कभी टूर एंड ट्रेवल्स का एजेंट बनके विक्टिम लोगों से बात करते थे, उसके बाद में जो बैंक अकाउंट है उनमें अपना राशि मंगाते थे और उसको विड्रॉ करते थे।
1: झारखंड विधानसभा की सदाचार समिति ने रामगढ़ का दौरा कर जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समिति के सभापति रामचंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में अनुकंपा नियुक्ति के लंबित मामलों, पेंशन प्रकरणों तथा जनहितकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। समिति ने अधिकारियों को लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने और सभी विभागों से अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मौसम। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव वाले क्षेत्र के कारण राज्य के अलग अलग हिस्सों में वज्रपात के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज खूंटी, गुमला, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में भारी बारिश की संभावना है, जबकि अन्य जिलों में आकाश में बादल छाए रहेंगे। कल रांची सहित 10 जिलों लातेहार, चतरा, गुमला, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो और लोहरदगा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने एनटीए द्वारा जारी नीट यूजी री एग्जाम के नतीजे जारी किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है नीट का रिजल्ट जारी, सुहर्ष बने स्टेट टॉपर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है नीट यूजी में 720 का परफेक्ट स्कोर किसी को नहीं, 19 छात्र ही 700 पार। दैनिक जागरण लिखता है कोर्ट ने कहा वर्षों पहले की गई जमाबंदी को राजस्व विभाग का अधिकारी नहीं कर सकता रद्द। हिंदुस्तान ने लिखा है पूरी रथ यात्रा में भीड़ बढ़ने से अफरा तफरी, 2 की मौत। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के पिस्का, मुरी और बिमलगढ़ रेलवे स्टेशनों का आज लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत शहरी क्षेत्रों में कल और 20 जुलाई को सभी मतदान केंद्रों पर लगेंगे विशेष शिविर। श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को लेकर रेलवे ने 26 जुलाई से 12 सितंबर तक रांची और भागलपुर के बीच 4 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का लिया निर्णय। झारखंड में संगठित अपराध पर अंकुश के लिए पुलिस ने विकसित किया C360 सॉफ्टवेयर, अपराधियों की निगरानी होगी और अधिक प्रभावी। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के असर से झारखंड में बारिश का दौर जारी, आज खूंटी, गुमला, सिमडेगा सहित 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं आप सभी का रेडियो होस्ट, रेडियो साथी सैकत चटर्जी। दोस्तों आइए जुड़ते हैं उस कार्यक्रम से जिसका नाम है गीत गुंजन। दोस्तों गीत गुंजन कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताते चले कि आज एक बेहद खास दिन है। जी हाँ दोस्तों, आज है 17 जुलाई और आज ही के दिन हिंदी और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन अदाकार रवि किशन साहब का जन्मदिन है। जी हाँ दोस्तों, आइए रवि किशन को याद करते हुए सुनते हैं 1994 में आई उनकी फिल्म जख्मी दिल से इस गीत को, जिसे आवाज़ दिया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने, गीत को लिखा है समीर, जबकि इसे संगीत में ढाला है ऋषि राज ने।

आप सुन रहे हैं गीत गुंजन और आज है रवि किशन का जन्मदिन, तो हम सुन रहे हैं उन्हीं पर आधारित कुछ फिल्म गीत। आइए दोस्तों अब चलते हैं 1977 में जब एक फिल्म आई थी अग्नि मोर्चा, इसमें रवि किशन साहब थे और उन पर एक फिल्म गीत भी फिल्माया गया था। तो आइए दोस्तों सुनते हैं अग्नि मोर्चा फिल्म से उस गीत को जिसे आवाज दिया है कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति, गीत को लिखा है सतीश और धुन बनाया है श्याम सुरेंद्र की जोड़ी।

आइए दोस्तों, अभी हम लोग सुन रहे थे रवि किशन को, क्योंकि आज उनका जन्मदिन था। और अब हम बात करेंगे फिल्म निर्देशक रजत मुखर्जी की। आज उनका निधन हो गया था। रजत मुखर्जी ने मुख्य रूप से 2001 में प्यार तूने किया फिल्म बनाई थी, जबकि 2002 में रोड जैसी लोकप्रिय और सस्पेंस से भरपूर थ्रिलर फिल्मों का निर्देशन किया। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले सुनते हैं प्यार तूने किया फिल्म से उस गीत को, जिसे उर्मिला मातोंडकर और फरदीन खान पर फिल्माया गया था। दोस्तों, इस गीत को आवाज दिया था सोनू निगम और अलका याग्निक ने, गीत को लिखा था नितिन, जबकि म्यूजिक दिया था संदीप ने। यह फिल्म आई थी 2001 में। तो आइए सुनते हैं।

0: तो आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं दूसरी कार्यक्रम की ओर। उससे पहले बता दें कि आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर, और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सायका चैटर्जी। दोस्तों, आप सुन रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम गीत गुंजन। आइए दोस्तों, अब जुड़ते हैं जोहार पलामू कार्यक्रम से।
1: जोहार पलामू।

तो फिर आइए दोस्तों आगे जो हर पलामू कार्यक्रम में बात करते हैं हम जानकारियों की और साझा करते हैं कुछ रोचक तथ्य आपके साथ। दोस्तों ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 17 जुलाई वर्ष का 198वां दिन है आज और साल में अभी और 167 दिन शेष रह गए हैं। आइए दोस्तों आप जान लेते हैं 17 जुलाई की उन महत्वपूर्ण घटनाओं को जो अपने बलबूते इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज करवा चुकी है। दोस्तों सबसे पहले आपको बताएं कि 1994 के 17 जुलाई को धूमकेतु शुमेकर लेबी 9 का पहला टुकड़ा बृहस्पति से जाके टकराया था। दोस्तों 2002 की 17 जुलाई की बात करें तो रूस की स्वेटलाना फीफा प्रोवा ने पोल बॉल्ट स्पर्धा में नया यूरोपीय रिकॉर्ड कायम किया था। दोस्तों 2003 के 17 जुलाई को उत्तर पूर्व कांगो में दुनिया शहर में जातीय हिंसा में 54 लोग मारे गए थे और पूरी दुनिया शोक जताया था। दोस्तों 2006 के 17 जुलाई को कैप कैनेवरल फ्लोरिडा के स्पेस सेंटर में अपनी 13 दिन की अंतरिक्ष यात्रा पूरी कर डिस्कवरी अंतरिक्ष जान पृथ्वी पर सकुशल उतरा था। दोस्तों 2008 के 17 जुलाई को अफगानिस्तान में नाटो सेनाओं ने पाकिस्तान में छिपे आतंकियों पर मिसाइलों और हेलीकॉप्टरों से हमला कर दिया था। दोस्तों 17 जुलाई में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों का जन्म भी हुआ है, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते चले दोस्तों कि भारतीय महिला फ्री स्टाइल पहलवान पूजा सिहाग का जन्म 17 जुलाई 1997 को है और पहले ही आपको बता चुके हैं कि आज हिंदी और भोजपुरी फिल्मों के सक्रिय अभिनेता सांसद रवि किशन का भी जन्मदिन है। उनका जन्म 17 जुलाई 1971 को हुई थी। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक का जन्म भी 17 जुलाई 1943 है और भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की पत्नी बेगम आबिदा अहमद का जन्म 17 जुलाई 1923 है। दोस्तों अब हम बात करेंगे उन शख्सियतों का जिनका निधन 17 जुलाई को हो गया था। तो सबसे पहले आपको बताते चले दोस्तों कि प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक रजत मुखर्जी का निधन 17 जुलाई 2020 को हो गया था। भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ सी एस शेषाद्रि का निधन भी 17 जुलाई 2020 को हो गया था। हिंदी सिने जगत की जानी मानी अभिनेत्री रीता भादुड़ी का निधन 17 जुलाई 2018 को हो गया था, जबकि प्रसिद्ध इतिहासकार वरुण डे का निधन 17 जुलाई 2013 को हुआ था। मणिपुर के भूतपूर्व नवे मुख्यमंत्री बाहेंगबाम निपमचा सिंह का निधन 17 जुलाई 2012 को हुआ था और भारतीय रिजर्व बैंक के 14वें गवर्नर आईजी पटेल का निधन 17 जुलाई 2005 को हो गया था। भारत की प्रसिद्ध अभिनेत्री गायिका और फिल्म निर्माता कानन देवी का निधन 17 जुलाई 1992 को हो गया था। यह एक प्रसिद्ध स्कॉटिश नीतिवक्ता दार्शनिक राजनैतिक अर्थशास्त्री एडम स्मिथ का निधन 1790 के 17 जुलाई को हुआ था, जबकि भारतीय संगीत जगत के मनीषी अपनी कला के समान ही अपनी विद्वता के लिए जाने जाने वाले लालमणि मिश्र का निधन 17 जुलाई 1989 को हुआ था और गुजरात के प्रसिद्ध राजनीतिक और ऑल इंडिया किसान सभा के नेता इंदुलाल याग्निक का निधन 17 जुलाई 1972 को हुआ था। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल गवर्नर जनरल की गृह विभाग समिति के सदस्य अलेक्जेंडर मेडिमेन का निधन 17 जुलाई 1928 को हो गया था। आइए दोस्तों इन जानकारियों के बातों के बाद मनोरंजन की दुनिया में कदम रखते हैं और सुनते हैं यह प्यारा सा खूबसूरत सा फिल्म संग

दोस्तों आप सुन रहे थे अनुराधा पोडवाल और मनहर उदास की आवाज में हीरो फिल्म से इस गीत को। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जबकि गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने। दोस्तों ये हीरो फिल्म जो काफ़ी जबरदस्त ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म थी सुभाष घई की, और इसमें मीनाक्षी शेषाद्री और जैकी श्रॉफ कमाल का अभिनय कर फिल्म को हिट बना दिया था। आइए दोस्तों अब जोहार पलामू कार्यक्रम के तहत बात करते हैं जानकारियों की और हमारे मेदिनीनगर और पलामू ज़िले में हुई कुछ खास गतिविधियों की। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया था और पाटन प्रखंड कार्यालय सभागार में बुधवार को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा नई दिल्ली के तत्वाधान में और जिला विधिक सेवा प्राधिकार डालसा पलामू के आदेश संख्या 134 के निर्देशानुसार सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और समाज को दुर्घटना मुक्त बनाने के उद्देश्य से विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। दोस्तों कल था भगवान जगन्नाथ बलराम और सुभद्रा का रथ यात्रा, जिसे पलामू में धूमधाम के साथ मनाया गया। मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र की बात करें तो चैनपुर में भगवान जगन्नाथ की पुरानी प्राचीन रथ यात्रा निकाली गई और शहर में इस्कॉन के द्वारा, श्री राम जानकी ट्रस्ट के द्वारा, रेड़मा ठाकुर बाड़ी के द्वारा तीन अलग अलग तरीके से रथ यात्रा निकाली गई जो शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण किया। दोस्तों झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की पहल पर IDBI बैंक ने CSR फंड से 10 दिव्यांगों को ट्राई स्कूटी दी है। समाहरणालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री और उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने लाभुकों को ट्राई स्कूटी की चाबी सौंपी। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता संवेदनशील और मानवीय प्रशासन है। दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से उपलब्ध कराए गए इन वाहनों से उनके आवागमन और दैनिक जीवन में काफी सुविधा होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य में जनप्रतिनिधियों और प्रशासन में बेहतर समन्वय से विकास कार्यों को गति मिल रही है। दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्ययोजना को लेकर प्रखंड मुख्यालय में जल सहियाओं की मासिक समीक्षा बैठक हुई। इस मौके पर ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन, डायरिया रोकथाम अभियान तथा पेयजल आदि पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने जल सहियाओं को गाँव में स्वच्छता एवं जागरूकता अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने का निर्देश दिया। दोस्तों राजकीय कृत ब्राह्मण प्लस 2 हाई स्कूल में बुधवार को बाल संसद के गठन को लेकर चुनाव कराया गया। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका ओम प्रकाश सिंह ने निभाई। सहयोगी चुनाव आयुक्त के रूप में संतोष कुमार, पंकज मणि तिवारी,

वो अरविंद कुमार उनके साथ चुनाव कार्य में शामिल थे। चुनाव संपन्न कराने में सभी महिला शिक्षिकाओं ने अपना योगदान दिया। चुनाव को लेकर छात्र छात्राओं में काफी उत्साह देखा गया। 463 छात्रों ने मतदान प्रक्रिया में भाग लिया। इसी क्रम में वैसे कुछ छात्र को मतदान से रोक दिया गया जो यूनिफॉर्म एवं परिचय पत्र के साथ नहीं थे। प्राचार्य सतीश कुमार दुबे ने बताया कि मतदान शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न हुआ। वोटों की गिनती आज यानी कि 17 जुलाई को होगी। दोस्तों, पाटन प्रखंड के नौडीहा स्थित सर्वोन्नत उच्च विद्यालय एवं कन्या मध्य विद्यालय में बुधवार को कल्याण विभाग की ओर से छात्र छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण किया गया। इस दौरान नौडीहा पंचायत के मुखिया रंजीत सिंह ने सर्वोन्नत हाई स्कूल के 54 तथा कन्या मध्य विद्यालय के 15 विद्यार्थियों समेत 69 छात्र छात्राओं को साइकिल प्रदान की। साइकिल मिलने के बाद विद्यार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मुखिया ने कहा कि साइकिल मिलने से बच्चों को विद्यालय आने जाने में सुविधा होगी। लातेहार सरस्वती विद्या मंदिर के वंदना सभागार में बुधवार को विद्यालय के पूर्व छात्र अविनाश कुमार के सम्मान में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था। अविनाश कुमार ने वर्ष 2012 में इसी विद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। वर्तमान में वे बेंगलुरु में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। दोस्तों, महुआडांड के संत जेवियर्स कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2026-30 के फ्रेशर्स छात्र छात्राओं के स्वागतार्थ कॉलेज सभागार में भव्य और प्रेरणादायी ओरिएंटेशन सह स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नव नामांकित विद्यार्थियों का कॉलेज परिवार में आत्मीय स्वागत करते हुए उन्हें संस्थान की शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों से परिचित कराना था। कार्यक्रम का शुभारंभ के प्राचार्य डॉक्टर फादर एम के जोश एवं सभी प्राध्यापकों द्वारा नव प्रवेशी विद्यार्थियों को गुलदस्ता भेंट कर किया गया। इस अवसर पर सभागार उत्साह, उमंग और आत्मीयता के माहौल से सराबोर रहा। दोस्तों, पलामू जिले के छतरपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत पिंडराही के बिचला टोला स्थित चबूतरा पर देवादिदेव भगवान शिव के मंदिर निर्माण एवं धार्मिक सामाजिक जागरूकता के उद्देश्य से मंगलवार को संध्या में मंदिर निर्माण समिति का गठन किया गया। समिति का गठन पलामू जिला धर्माचार्य प्रमुख बालजोगी संत विभू सुमन जी ब्रह्मचारी और संत समिति के संरक्षक सरयू बाबा के सानिध्य में सम्पन्न हुआ। इस दौरान मंदिर निर्माण कार्य को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाने के लिए सर्वसम्मति से विभिन्न पदाधिकारियों का चयन किया गया। चंदवा थाना परिसर में बुधवार को थाना दिवस के तहत विशेष शिविर लगाया गया। शिविर में जमीन से जुड़े विवादों के समाधान के लिए बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे। अंचलाधिकारी सुमित कुमार झा, पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह और SI अजीत कुमार ने संयुक्त रूप से शिकायतें सुनी। भूमि विवाद, सीमांकन, कब्जा और अन्य राजस्व मामलों से जुड़े 40 से अधिक आवेदन आए। दोस्तों, श्रावण मास की धार्मिक आस्था के बीच गुप्त नवरात्रि के मौके पर हैदरनगर स्थित प्राचीन मां भगवती मंदिर में छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज से आए एक दर्जन से अधिक श्रद्धालुओं ने पूरे विधि विधान के साथ मां भगवती की पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में माथा टेका, नारियल व चुनरी अर्पित की और परिवार की सुख समृद्धि तथा देश प्रदेश के कल्याण की कामना की। दोस्तों, इसी के साथ एक बात और आपसे साझा करना चाहूँगा, वो ये कि मौसम अब बदल रहा है। तेजी के साथ मौसम में उमस घट रही है और हल्की फुल्की बारिश तथा तेज बारिश जो पलामू के विभिन्न क्षेत्र में हुई है उसके साथ उमस कम होते हुए धीरे धीरे ठंड प्रवेश कर रही है। हालांकि आगे आने वाले महीने के मध्यम सप्ताह तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। ये मौसम बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए खास ध्यान रखने वाला है, क्योंकि इस समय बुजुर्गों और बच्चों में बीमारियों की संभावनाएं अधिक रहती है। सबसे बड़ी सावधानी पानीय जल को लेकर बरतना चाहिए दोस्तों, और पानीय जल गर्म करके उसे फिर ठंडा करके पिए या सुसुम गर्म पानी ही पिए तो ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। हालांकि घर से बाहर रह रहे लोगों के लिए ये मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी हम ये गुजारिश करेंगे कि अधिक से अधिक ये प्रयास करें कि गर्म पानी ही ठंडा करके पिए। घर में रह रहे बुजुर्गों को और बच्चों को तो ठंडा पानी
पानी नहीं दे तो ज़्यादा बेहतर है। और इसी के साथ कटे फल का सेवन बिल्कुल ना करें इस मौसम में। हालांकि कटा हुआ फल अधिक देर तक छोड़कर अब दोबारा उसका सेवन करना हर मौसम में नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन अभी के मौसम में तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और फ्रिज में रखे चीज़ों को फिर से दोबारा निकाल कर गर्म करके फिर फ्रिज में रख के फिर उसे गर्म करके खाने की जो आदत है ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदेह है, ऐसा डॉक्टर बताते हैं। चिकित्सक सलाह देते हैं कि फ्रिज में जो खाना है उसे कम से कम एक बार आप बाहर निकालें और खा लें, दोबारा उसे रख के फिर गर्म करके खाने की प्रक्रिया को आप भूल जाएं अपने जीवन से तो ज़्यादा बेहतर होगा, जीवन सुरक्षित होगा। तो दोस्तों पहला तो प्रयास ये करें कि फ्रिज में खाना जो है वो हम एक बार से ज़्यादा गर्म न करें और ये कोशिश करें कि फ्रिज में खाना रखें ही नहीं, अलबत्ता कभी कभार अगर रह जाए तो उसे एक बार से ज़्यादा दोबारा गर्म न करें। और हाँ एक बात और, भींगे हुए कपड़े न पहने। अक्सर अभी के मौसम में झुरझुरा बारिश जो होती है, हल्की फुल्की फुहार वाली बारिश जो होती है, उसमें हम घर से बाहर रहते हैं तो जल्दी जल्दी जाने के चक्कर में या चलो ना यार अब तो पहुंच ही जाएंगे ये वाली मानसिकता के शिकार होकर रास्ते में निकल जाते हैं, भींग जाते हैं, हमारा सर भींग जाता है, कमीज शर्ट वगैरह जो भी हम पहनते हैं वो हल्का फुल्का भींग जाता है और हम सोचते हैं कि चलो क्या बदलना है, बहुत हल्का भींगा है ये तो सूख ही जाएगा। ये हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होने वाला है दोस्तों, और आप बीमार पड़ जाएंगे। और अभी की जो बीमारी है खास करके बुखार, वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है शरीर को। तो आप ध्यान दें, अगर आप कोशिश करें कि ना भींगे, लेकिन अगर आप भींग गए हो तो जितना जल्दी हो सके कपड़ा बदल लें। आइए दोस्तों इन जानकारियों के बाद के साथ सुनते हैं खूबसूरत सा प्यारा सा हिंदी फिल्म गीत।

दोस्तों आप सुन रहे हैं वो सात दिन, फिल्म के गीत गायक कलाकार हैं सबीर कुमार और लता मंगेशकर, इसके लिरिकिस्ट हैं आनंद बख्शी, जबकि म्यूजिक कंपोजर हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आइए दोस्तों अब जोहार पलामू कार्यक्रम से मुझे दीजिए, यानी कि आपके रेडियो दोस्त रेडियो होस्ट सैकत चटर्जी को दीजिए विदा, लेकिन जुड़े रहेंगे हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से, क्योंकि अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं हमारे केंद्र से प्रस्तुत प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: संबंध
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में हमेशा ऐसी संगति चुननी चाहिए जो हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाए और हमारी सोच को सकारात्मक बनाए। अच्छे लोग वही हैं जिनकी उपस्थिति से हमारे भीतर का श्रेष्ठ गुण प्रकट हो सकता है और जो हमें हर दिन और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल का।
2: शंकर प्रसाद खूंटे जी लिखते हैं, मैं दृष्टि बाधित हूँ और बीएड स्पेशल एजुकेशन की पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद शंकर प्रसाद खूंटे जी। और अगला संदेश हमें मिला है गाँव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी जी का।
2: गांव खिंदासा तहसील कोरायत जिला बीकानेर राजस्थान से कानाराम चौहान जी।
1: और शोभा राणे जी लिखते हैं ठाणे महाराष्ट्र से।
2: गांव ढोडरी घोटिया जिला मोहला मानपुर छत्तीसगढ़ से महेश कुमार निषाद, रम्मा रानी निषाद, निखिल कुमार निषाद और नैतिक कुमार निषाद।
1: आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर संदेशों के लिए। तो प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। श्रोताओं, एक बार फिर से हम प्रस्तुत हैं नई और रोचक जानकारियों के साथ।
2: श्रोताओं, हम चर्चा कर रहे हैं

0: पुस्तकों के क्रमिक उद्भव और विकास की। आज हम चर्चा करेंगे मुद्रण से आधुनिक पुस्तकों तक की यात्रा पर। श्रोताओं, जिस आधुनिक पुस्तक को हम हाथ में लेकर आज पढ़ते हैं, उसके पीछे लगभग 600 वर्षों का इतिहास है। हमने अब तक सुना कि मुद्रण कला के आने से पहले पुस्तकें हाथों से लिखी जाती थी। भारत में ताड़पत्र, भोजपत्र और बाद में कागज पर ग्रंथ और साहित्य लिखा जाता था।
1: जी हाँ श्रोताओं, यूरोप में चर्म पत्रों और कागज पर लिखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे मानव सभ्यता मुद्रण की ओर बढ़ने लगी। चीन में लगभग 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच लकड़ी के ब्लॉक्स बनाए जा चुके थे, जिन पर अक्षरों को उकेर कर और उसमें स्याही लगाकर पूरे पृष्ठ की छपाई की जाती थी।
0: ये तकनीक हस्तलिखित तकनीक से कहीं अधिक तेज और सुविधापूर्ण थी। 11वीं शताब्दी में चीन में धातुओं या लकड़ी से अलग अलग अक्षरों को बनाया जाने लगा और उनसे शब्द और वाक्य बनाए जाने लगे। ये आधुनिक मुद्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
1: जी श्रोताओं, 15वीं शताब्दी को मुद्रण की दिशा में एक मील का पत्थर माना जाता है, जब जर्मनी के ग्यूटेनबर्ग ने 1450 में छापने की मशीन का आविष्कार किया।
0: जी,
1: इसके द्वारा एक ही पुस्तक की सैकड़ों प्रतियां तैयार हो सकती थीं।
0: गुटेनबर्ग ने एक धातु का फार्मा बनाया जिसमें चल अक्षर थे। चल अक्षरों का अर्थ है उनके फार्मे में अक्षरों को वाक्यों के रूप में सजाया जाता था और उनमें स्याही पोतकर कागज पर छापा जाता था। छपाई के बाद उन्हीं धातु के अक्षरों को फिर से नए वाक्यों के अनुसार संयोजित कर लिया जाता था।
1: जी श्रोताओं, गुटेनबर्ग की मशीन से छपने वाली पहली पुस्तक बाइबल थी, जिसे गुटेनबर्ग बाइबल कहा जाता है। यही तकनीक आधुनिक मुद्रण कला की नींव बनी।
0: इसके बाद हम सभी जानते हैं कि मानव सभ्यता ने एक शानदार मुद्रण तकनीक को देखा। अब डिजिटल मुद्रण का युग है, जिससे कुछ ही समय में हजारों लाखों पृष्ठ छापे जा सकते हैं। इसके बाद आया ई बुक का जमाना, जिसमें हम रह रहे हैं। पहले पुस्तकों को रखने के लिए विशाल पुस्तकालय हुआ करते थे, लेकिन अब हजारों पुस्तकें एक छोटे से डिवाइस में ही रखी जा सकती हैं।
1: जी तो श्रोताओं, कहा जा सकता है कि मिट्टी की पुस्तकों से पेपिरस तक, भोज और ताड़ पत्रों से होते हुए चर्म पत्रों तक, वहां से गुटेनबर्ग के छापे खाने और फिर डिजिटल पुस्तकों तक की पुस्तकों की यात्रा सच में अनूठी है।
0: जी बिल्कुल, सच में अनूठी है। तो श्रोताओं, कैसी लगी आपको ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से बताया गया है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किन भौगोलिक कारणों से हुई और इसे मूड़दार पर्वत श्रृंखला क्यों कहते हैं।
2: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
3: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
2: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
3: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
2: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय?
3: तो आइए सुनते हैं एक नाटक,
2: कैसे बना हिमालय।
3: आज रिद्धि,
2: नव्या
3: और रिदित
2: सब बहुत खुश है,
3: क्योंकि उनका परिवार
2: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
4: चलो चलो, दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
5: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
4: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
5: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे,
4: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है,
5: बहुत मजा आएगा।
3: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
2: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
3: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
2: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे

0: आयुर्वेद
1: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ गए।
0: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
2: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
1: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
2: क्या 20 करोड़ साल?
1: तब हमारी धरती नई नई थी। तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे। सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
2: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
1: नव्या, अब भाई थोड़ा सा धीरज तो रखो। अब बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? रिद्धि तुम बताओ।
3: ये तो बहुत आसान है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
2: रुको, मैं बताती हूँ।
1: तुम बताओ।
2: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशेनिया भी तो कहते हैं।
1: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था और महासागर का नाम था टैथिस महासागर। क्या नाम था?
4: टैथिस महासागर।
1: वाह,
2: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
1: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
2: अलग होकर खिसकने लगे?
1: अरे एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
2: सर फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
1: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
3: लेकिन सर हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
2: सर ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
1: बेटा मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
3: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट?
2: सर आप तो टैथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
1: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
2: जी।
1: देखो, विशाल और शांत महासागर ये एक प्राचीन महासागर था जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
2: फिर क्या हुआ सर जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
1: बेटा उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टैथिस सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं।
2: अच्छा?
1: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गईं।
3: सर मैं कुछ बताऊं इसके बारे में?
1: हाँ बेटा क्यों नहीं।
3: ठीक वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
1: बहुत अच्छे। और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट

0: की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही हैं। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है, इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
1: अब समझ आया सर, इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है, इसके अलग अलग अनुमान हैं। आम तौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
2: सर एक खास बात तो हम भूल ही गए, तेथिस सागर का क्या हुआ?
0: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि तैथित सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
2: यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था वहाँ आज हमारा हिमालय है?
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
1: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टाने मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टाने भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टाने समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
1: अच्छा, तो ये बात है।
0: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
3: माउंट एवरेस्ट।
0: सही जवाब। अच्छा बच्चों एक चीज और बताता हूँ, तिब्बती लोग इसे चोमो लुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों, नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
1: सर मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
0: भला वो क्या?
1: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
0: बिल्कुल सही बात।
4: तो साथियों अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी, कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न, पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनियांकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है स्वामी की दादी।
1: इस कार्यक्रम में स्वामीनाथन नामक एक बच्चे की सुंदर कहानी है, जिसमें उसके और उसकी दादी के बीच प्रेम और स्नेह के संबंध को बताते हुए संदेश दिया गया है कि बच्चों को अपने बड़ों और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। कार्यक्रम मुख्य रूप से पारिवारिक मूल्यों के महत्व पर बल देता है।
2: बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थीं। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था।
3: आजा, आजा, आजा।
2: बड़ी प्रसन्नता से भरकर वो बोला,
4: ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है।
3: अच्छा?
2: उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई।
4: तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है,
2: स्वामीनाथन बोला।
3: सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए,
2: दादी ने पूछा।
4: उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, वो यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं।
3: अच्छा,
2: दादी काफी प्रभावित हुईं।
3: उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा,
2: उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गईं, इधर उधर भटकती हुई और

0: अलग-अलग समय पर घटी घटनाओं को गडमड करती हुई।
1: बस काफी है दादी,
0: उसने रूखे स्वर में कहा।
1: मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं?
2: सारे नंबर मिलते होंगे, है ना?
0: दादी ने पूछा।
1: अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं।
2: चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी-कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी-कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हां, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वो मेडल अब कहां है? मैंने वो तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियां बनवा ली, और वो भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूं कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और
1: अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती?
2: बोलो
1: दादी। जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था।
2: सच? बड़ा बहादुर लड़का है।
1: तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो?
2: अरे नहीं नहीं,
1: तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा।
0: स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की।
1: राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे।
2: अच्छा।
1: राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई?
0: उसने कहानी खत्म होने पर पूछा।
2: नहीं नहीं बेटा, सुन रही हूँ।
1: अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे?
2: 2 शेर राजम पर झपटे थे,
0: दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया।
1: मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में ना जाने क्या क्या ऊल जलूल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती।
2: अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत प्यारा लड़का है।
0: दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ।

0: दादी शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है।
1: मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ।
2: दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा,
0: जो भी उसे झूठा कहेगा वो उसे गोली मार देगा।
3: अच्छा।
2: दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा।
1: तो हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और बच्चे को इस तरह से खो दिया, लेकिन बाद में
2: दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वो भी सो गई।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम स्वामी की दादी, और अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आपसे आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु, चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: आइए दोस्तों, अब जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से और बारी बारी से सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
0: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4

0: 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,770 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। श्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकवाद रोधी दस्ते एटीएस ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से जैश ए मोहम्मद के 8 सदस्यों को इस महीने गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार ये आरोपी गुजरात में आतंकी नेटवर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से अधिक परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic पर उपलब्ध हैं। इस वर्ष भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में स्थित 5,440 केंद्रों पर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने पुनर्परीक्षा दी थी। उत्तर प्रदेश में आज माय भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति और इसके कार्यान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी है। इस नीति के अंतर्गत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और ओडिशा में विभिन्न स्थानों पर तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी आज मूसलाधार वर्षा की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ स्थानों पर ऐसा ही मौसम रह सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय VC प्रमोद। Prime Minister Narendra Modi will visit Haryana, Chandigarh and Punjab today. During his visit to Haryana, the Prime Minister will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at the Jind railway station. The Prime Minister will also lay the foundation stone and dedicate to the nation various development projects worth around 14,700 crore rupees at Eklavya Stadium at Jind and address the gathering on the occasion. The launch of the first hydrogen-powered train marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector. From Jind, the Prime Minister will travel to Chandigarh, where at around 1:45 p.m. he will lay the foundation stone and inaugurate various development projects worth over 4,700 crore rupees. He will also address the gathering on the occasion. Subsequently, Prime Minister will visit Jalandhar in Punjab, where he will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth over 5,470 crore rupees. Prime Minister Modi held a conversation with the Amir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, and conveyed his condolences on

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना।
1: जी राम स्वरूप जयपुर बोल रहे हैं, ग्राम भगौता जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से।
0: राम स्वरूप जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं राम स्वरूप जी?
1: बढ़िया है आपकी कृपा से। आप कैसी हैं मैडम जी?
0: हम भी अच्छे हैं। और बताइए क्या चल रहा है इन दिनों?
1: हमारे यहाँ तो बारिश हो चुकी है मैडम जी, झमाझम बारिश हो गई। अभी 2-3 दिन से पानी बस नहीं गिरा है।
0: अरे वाह, बहुत
1: बादल हो रहे हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है ना
1: जी। गाना सुना दीजिए, फेरी मूवी का है और ओम नमः शिवाय ऐसे गाना है।
0: अच्छा चलिए, अच्छी बात है, तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्ते बहन जी।
0: नमस्ते।
1: मैं आपका शुभ चिंतक बाहुबली फुरसुले छत्रपति संभाजी नगर से संवाद कर रहा हूँ, मंदाकिनी जी।
0: जी जी
1: विविध भारती तो मैं करीबन है।

0: इस साल से मैं जुड़ा हूँ। विविध कागज अनेक कार्यक्रम का प्रचलन होता था बहन जी, और जो एक मंथन कार्यक्रम रहता था उसमें तो हमारे विचारों को चालना और आपस में मेलजोल होता था बहन जी।
1: जी जी
0: मेरी उम्र 84 चालू है, अभी तो मैं घर में ही बैठा हूँ आराम से, और आपसे गुफ्तगू करने का इंतजार कर रहा था। सौभाग्य से मेरी बात भी आपसे चालू है, इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है।
1: जी बहुत अच्छा लगता है जब हमारे इतने पुराने श्रोता या यूं कहें इतने सीनियर श्रोता हमसे बात करते हैं।
0: ये मेरा जो शौक है ये करीबन 30 साल पूर्व से मैं इस आकाशवाणी से जुड़ा हूँ, और आकाशवाणी ऐसी एक माध्यम है जिसके जरिए मनोरंजन तो होता ही है, मगर अपने जीवन में कुछ नया सीखने का, कुछ नई बातें, स्वास्थ्यवर्धक, विज्ञान, कला, यह सब बातें हमको प्रदान की है, और उससे सभी हमारे श्रोता बंधु पुलकित होकर तृप्त हो गए बहन जी।
1: बहुत अच्छी बात है। तो बताइए बाहुबली जी, आज कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं?
0: फिल्म प्यासा का एक गीत में नगमा निगार ने समाज में फैली हुई दुराचारी, दुष्कर्मी, फरेबी, धोखाधड़ी पर अपने अंतस की वेदना, दुख, पीड़ा को बड़े हृदय स्पर्शी शब्दों में बयां किया है। वो गीत के बोल है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया। इसमें कवि ने समाज में जो एक अवडंबर और समाज के प्रति जो विद्रोह और उसके प्रति जो शोषण होता है, सच्चाई को उसके ऊपर झूठ का आरोप करके जीतना चाहते हैं, तो इसके ऊपर कवि ने अपने दुख वेदनाओं को बड़ी सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है भाई।
1: जी बिल्कुल, एक कालजयी गीत आप सुनना चाहते हैं फिल्म प्यासा से, जिसे आवाज मोहम्मद रफी साहब ने दी है, और ये गीत जो है हमें झकझोर देता है, और मेरी पसंद का भी ये गीत है। चलिए आप सबके साथ मिलकर हम भी इस गीत को सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मैं पप्पू चंदन बोल रहा हूँ भोपाल से।
0: भोपाल से पप्पू जी बोल रहे हैं, स्वागत है आपका। कैसे हैं पप्पू जी?
1: बढ़िया हूँ मैम।
0: क्या कर रहे हैं इस समय?
1: ड्यूटी पर आ गए, बेकरी में है।
0: अच्छा, बेकरी में काम करते हैं।
1: जी जी जी।
0: क्या समय है आपके आने का?
1: हमारा वही मतलब 11 से 11:30 तक बीच में आ जाते हैं।
0: और रात तक?
1: 9:30 बजे।
0: अच्छा, चलिए, नौकरी आराम की है ना?
1: जी जी।
0: तो बताइए, कैसा लगता है आपको अपने यहाँ काम करने में? बेकरी में क्या क्या आइटम बनते हैं?
1: सभी बनते हैं, मतलब केक है, पेस्ट्री है, अपना बिस्किट है, कुकीज है, सब मतलब ब्रेड है, सभी आइटम मतलब बेकरी आइटम जो है।
0: आप भी कुक का काम करते हैं?
1: जी जी, मैं केक बनाता
0: हूँ। अरे वाह, कौन से केक ज्यादा चलता है आपके यहाँ?
1: नॉर्मली चलता है पाइन एपल ब्लैक फॉरेस्ट चलते हैं, मतलब वही ज्यादा। हाँ, लेकिन पाइन एपल जो है वो मतलब हमेशा ये
0: हर व्यक्ति को पसंद आ सकता है पाइन एपल का, है ना? एक दिन में कितने केक बना लेते हो आप?
1: बन जाते हैं, मतलब जैसा अपना ऑर्डर हो, मतलब जैसा डिमांड रहता है, मतलब 60-70 के जैसे निकल, मतलब अपने मार्केट के ऊपर ही है जैसा चल रहा है।
0: कितना समय हो गया इस काम में आपको लगे हुए?
1: 20 साल हो गए, 2002 से लगा था।
0: 20 साल का अनुभव बोल रहा है आपका। चलिए, बहुत अच्छा लगा। तो बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप?
1: विधाता पिक्चर का मैम, हाथों की चंद लकड़ियों का, विधाता पिक्चर का।
0: गाने के बोल बताइए।
1: हाथों की चंद लकड़ियों का, ऐसा कुछ।
0: चलिए, आपकी पसंद का ही गीत

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: मैडम जी, राम राम।
0: नमस्कार। राम राम, कैसे हैं?
1: दीदी बहुत बढ़िया है। मजाकिनी जी बोल रहे हो?
0: हाँ जी, हाँ जी, अपना नाम तो बताइए आप।
1: हम बोल रहे हैं मैडम जी, श्रवण कुमार रणवा, गांव हीरावाली, जिला फाजिलका, पंजाब से।
0: कैसे हैं श्रवण जी?
1: बहुत बढ़िया।
0: चलिए, अच्छी बात है। और कैसा चल रहा है आपके शहर का मौसम?
1: शहर नहीं, हमारा तो गांव है जी, फाजिलका के 10 किलोमीटर के साथ ही। गांव के अंदर अच्छा माहौल है, खेत में मकान बनाया, अच्छा ठंडा हवा का मौसम है, थोड़ा बरसात हो जाता है थोड़ा थोड़ा, और बढ़िया है। अच्छा धान जोन में लग चुका है अभी।
0: क्या धान लगाया?
1: चावल।
0: चावल की खेती हो रही है आपके यहाँ?
1: हाँ जी, हाँ जी, वो चावल जैसे पहले सन्ना पोत बीजा था, अब उसको उखाड़ कर दोबारा 30 दिन हो गया लगाए को।
0: अच्छा अच्छा तो अभी खेती के अनुकूल है मौसम?
1: मैडम जी बरसात चाहिए, कोई परमात्मा से अरदास कर रहे हैं, और वैसे मौसम अच्छा है।
0: मतलब और बारिश की आपको जरूरत है ना?
1: बिल्कुल जी, अब हमारे बरसात की बहुत ज्यादा आवश्यकता है यहाँ चावल के खेती के अंदर।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: तकरीबन चावल की, गन्ने की खेती है हमारे यहाँ।
0: तो चावल की खेती में क्या ध्यान रखना होता है, ज्यादा से ज्यादा किस बात की सावधानी रखनी पड़ती है?
1: जैसे एक माँ आपके बच्चे का ध्यान रखती है ना, इस तरह हमें जमींदार को इसका ख्याल रखना पड़ता है।
0: ये बात तो खैर सही है।
1: दिन में 3 दफा घेरा लगाना, सुबह शाम दोपहर। क्या कोई कीट लग रहा है, कोई रोग लग रहा है, कैसा पानी पूरा हुआ कि नहीं, कहाँ खाद डालना है, कहाँ कम गिरा है, ध्यान रखना पड़ता है बच्चे की तरह।
0: बिल्कुल सही कहा आप। तो 3-4 महीने तक उसको पानी में रखते हैं लगभग, है ना?
1: नहीं जी, 4-5 दिन तक। उसके बाद में फिर एक दिन में पानी पूरा हो गया, दूसरे दिन कम पड़ गया तो कोई बात नहीं, अगले दिन फिर उसमें पानी घुमा दिया, ऐसे मतलब चलता रहता। 4-5 महीने पानी भरा नहीं रहना चाहिए।
0: अच्छा, भरा नहीं रहना चाहिए, लेकिन आपको लगभग ध्यान रखना पड़ता है 4-5 महीने तक कि फसल सूखने न पाए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कि आप एक ऐसे किसान हैं जहां पर लहलहाती फसलों को आप देखते हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप अपने खेत खलियान का ध्यान रखिए और बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको हम।
1: मैडम जी क्रांति फिल्म से सुना दो, चना जोर गरम।
0: चलिए, तो खेती तो आप चावल की कर रहे हैं और गाना सुनना चाहते हैं चना जोर गरम। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत। दुनिया

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार।
1: जय बजरंग सोता संग बस स्टैंड बंदा को चाय वाले बोल रहे हैं। चाय पी दो दीदी।
0: चाय पी रहे हैं आप इस वक्त? चलिए आप पीजिए चाय और हमसे बात करिए।
1: चाय की दुकान है दीदी।
0: अरे चाय की दुकान है आपकी?
1: हाँ दीदी।
0: तो पहले नाम बताइए, फिर आपसे चाय बनाने के तरीके पूछते हैं, किस तरह की आप स्वादिष्ट चाय बनाते हैं।
1: लक्ष्मण रेखवाल।
0: लक्ष्मण जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बंडा वेली जिला सागर मध्य प्रदेश।
0: स्वागत है आपका। अब बताइए आपकी चाय की दुकान कहाँ है, कैसी है, कितनी बड़ी है और कब से खोली आपने?
1: कम से कम 30 वर्ष हो गए हैं चाय की दुकान को।
0: अच्छा, 30 वर्ष से आप ही संभाल रहे हैं अपनी चाय की दुकान?
1: हाँ, हम संभाल रहे हैं और भाइयों को भी करवा जा रहे हैं। 3 दुकान हो गई हैं अब चाय की, और नाश्ता है, और नाश्ता भी आप खाना हो तो केक मलाई की बर्फी है, और समोसा है, जलेबी है, मंगोड़ी है, रसगुल्ला है, ये सब मिलेंगे हमारे पास।
0: हमारे तो मुँह में पानी आ गया ये सब सुन के, तो लग रहा है काश आपकी दुकान के सामने होते तो खा लेते थोड़ा। तो बताइए आपकी चाय की क्या खासियत है, कैसे बनाते हैं चाय और कैसे पसंद आती है लोगों को? आते हैं लोग चाय पीने बहुत?
1: हाँ बहुत आते हैं, और चाय ऐसी रहती है कि अच्छा दूध होगा तो चाय अच्छी बनेगी।
0: हाँ, ऐसे तो नहीं एक ही भगोने में बार बार चाय को उबालते रहते हैं उबालते रहते हैं?
1: ऐसा नहीं होता है, साफ होती रहते हैं, और ये हमारी तो चाय रखते ही रहती है, धरी नहीं रहती है।
0: हाँ, तो किसमें पिला रहे हैं चाय? कुल्लड़ में पिला रहे हैं या प्लास्टिक के गिलास में पिला रहे हैं?
1: गिलास में, कांच की गिलास भी है और कागज के डिस्पोजल भी है।
0: तो क्या डालते हैं चाय में, फटाफट बताइए और फिर अपनी पसंद का गीत सुनिए। कैसे बनाते हैं चाय?
1: हम चाय बिल्कुल अच्छी बने तो अच्छी खोला लेते हैं, उसमें शक्कर पत्ती इलायची भी डालते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। जैसे ठंडों में अदरक डालते हैं
0: और गर्मी में इलायची।
1: हाँ
0: चलिए कौन सा गीत सुनवाए आपको बताइए।
1: आज मोहरा पिक्चर है, ना कजरे की दाल ना मोतियों की आस, तुम कितनी सुंदर हो।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं नॉर्थ ईस्ट साउथ त्रिपुरा से विश्वजीत पाल बोल रहा हूँ।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं बताइए अपने बारे में।
1: मैं तो ठीक हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं त्रिपुरा में रहती हूँ, मैं थोड़ा सा काम वगैरह घर में करता हूँ, मैं ब्लाइंड हूँ तो इसीलिए घर के साथ जो लोग रहते हैं ना, तो उसके साथ थोड़ा सा थोड़ा काम मिलजुल के करता हूँ।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो रेडियो तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आपका कार्यक्रम हेलो फरमाइश है गीत, और जो 3 बजे गतिशैली कार्यक्रम आती है ना, तो उसको बहुत सुनते हूँ, बहुत अच्छा लगती है।
0: अच्छी बात है, आप कार्यक्रम सुनते हैं। तो अपने त्रिपुरा के बारे में बताइए, कैसा है आपका शहर, कैसा है ये जगह, प्राकृतिक रबड़ उत्पादक भी है आपके यहाँ तो त्रिपुरा।
1: हाँ, त्रिपुरा तो रबड़ी खेती है, तो इसका तो ज्यादा लोग रबड़ी खेती करती है, तो हमारा इधर घूमने के लिए बहुत ही जगह है, तो इसके लिए पर्यटक आती है तो घूम के जाती है, बहुत अच्छा लगता है, हरियाली है।
0: कहाँ कहाँ घूमा जाए त्रिपुरा में बताइए।
1: त्रिपुरा में त्रिपुरा माँ सुंदरी टेम्पल है, इसके बाद और बहुत जगह है घूमने के लिए। मैं तो त्रिपुरा माया का मंदिर में गया था, तो बहुत अच्छी है मंदिर घूमने के लिए, बाहर से लोग आती है।
0: अरे वाह क्या बात है। और आपके यहाँ पर क्या बांस और बेंत के भी काम होते हैं, उससे बनी वस्तुएं या फर्नीचर बनाए जाते हैं, सजावटी सामान।
1: त्रिपुरा में तो बांस की खेती में बहुत अच्छी है, बांस का जो
0: काफी अच्छे सजावटी सामान बनते हैं ना, और हथकरघे का, हथकरघा का भी काफी काम होता है त्रिपुरा में।
1: जी जी जी।
0: चलिए अच्छा लगा आपसे बात करके, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप।
1: मैं नाम फिल्म का गाना सुनना चाहता हूँ, दम मरा दम मिटे जाए हम, हरे कृष्ण हरे राम।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश विविध भारती
1: जी। नमस्ते।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना, कौन बोल रहे हैं?
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: स्वागत है आपका प्रेम जी, कैसे हैं?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है।
0: अच्छा, क्या करते हैं आप?
1: जी मैं खेती किसानी का काम करता हूँ, और अभी खेत में ही काम कर रहे हैं हम, खरपतवार निकालने का दौरे चला रहे हैं। और बरसात हो चुकी है तो सोयाबीन की फसल लगाई है हमने।
0: क्या तैयारी करनी पड़ती है?
1: आपको बताता हूँ जी, जैसे पहले तो खेत को गर्मी में कुछ समय के लिए खाली छोड़ना पड़ता है, उसके बाद में ट्रैक्टर द्वारा अच्छी तरह से हंकाई जुताई होती है, और फिर बरसात हो जाती है ना, तो उसमें फिर सोयाबीन की फसल लगाई जाती है।
0: अच्छा, और कितने दिन में फसल बनकर तैयार हो जाती है?
1: जी सोयाबीन की फसल हमारी, मतलब आपको बताऊं, 2.5 से 3 महीने में पक के तैयार होके कटाई भी हो जाती है। उसके बाद में जो फिर बताऊं आपको, जैसे भरपूर पानी हो जाता है ना, हर जगह कुएं नदियां तालाब भर जाते हैं, तो फिर सोयाबीन के बाद में गेहूं लहसुन और मटर की फसल लगाते हैं।
0: अच्छा अच्छा, लगातार?
1: जी हाँ, लगातार होती है 2 फसल, उसके बाद में 3 महीने के लिए खेत को खाली छोड़ना पड़ता है गर्मियों में।
0: अच्छा, फिर उन 3 महीनों में क्या होता है?
1: उस समय खेत को खाली छोड़ दिया जाता है तो जितने भी जीव जंतु होते हैं ना,
0: हाँ?
1: जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, वो गर्मी में खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, फिर से मतलब जमीन की उर्वरकता बढ़ जाती है। और जैसे ज्यादातर मटर की फसल पैदावार होती है ना हमारे यहाँ पे, तो हम मंडियों में बेचते हैं।
0: तो आपको मटर की फसल सबसे अंत में करेंगे आप, है ना, जब सोयाबीन की फसल पक जाएगी, उसके बाद गेहूँ लहसुन और मटर की एक साथ करेंगे तीनों फसलें?
1: तीनों फसल एक साथ होती है।
0: अच्छा, फिर कटाई भी एक साथ ही होगी या इनमें अंतराल रहेगा?
1: हाँ, जैसे कि लहसुन और गेहूं की कटाई साथ में होती है, और मटर तो 2.5 महीने में पक के तैयार हो जाता है।
0: तो फफूंद से बचाने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि जब आपने बीज बोए हैं, फसल आएगी तो फफूंद भी लग जाती होगी कई बार?
1: जी जैसे तो बीज उपचार करके ही लगाया जाता है, और उसके बाद में जब फफूंद होती है कभी कभार, तो इल्लियाँ भी होती है सोयाबीन में, मटर में,
0: हाँ,
1: लहसुन में, तो इसमें स्प्रे करना होता है रासायनिक कीट का, और वो भी मतलब ट्रैक्टर द्वारा होता है सब काम।
0: अच्छा,
1: और ट्रैक्टर के साथ में मजदूर लगाने पड़ते हैं। मोबाइल ऐप्स के आने से हमें, आपको बताऊं, स्पष्ट प्रसारण मिलता है, और मतलब कहीं पर भी जाए ना तो साथ में हमारे विद्यार्थी चलता ही रहता है, उसमें हम सुनते हैं सखी सहेली, हवा महल, सेहतनामा के तहत जो पहले भी चलता था ना कार्यक्रम, वो भी सुनते हैं, और पिटारा के तहत हमने काफी पहले भी पत्रा वाले जो कार्यक्रम आता था ना विद्यार्थी से, जी उसमें काफी लेटर लिखे।
0: बताइए, इतनी सारी बातें हो गई हैं आपसे, अब कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: फिल्म मकान में प्यासा सावन, और गाने के बोले मेघा रे मेघा मत परदेश जा।
0: बिल्कुल सही गाना है, चलिए अभी सुनते हैं आपकी पसंद का ही।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नंदाजनी दीदी नमस्ते, मैं दूसरी बार बात हो रही मैं आपके साथ मेरी।
0: अरे वाह क्या बात है, नाम तो बताइए अपना।
1: मैं विजय कुमार स्वामी, गांव बस्तवा, तहसील शोर, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। दीदी
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: हाँ अच्छे हो, कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं। अच्छा बताइए क्या करते हैं आप विजय जी, बात तो हुई होगी आपसे।
1: मैं अभी सोशल वर्कर हूँ दीदी।
0: अच्छा,
1: उम्र अभी 63 है।
0: अच्छा तो समाज के लिए क्या काम करते हैं, विशेष कोई?
1: दिव्यांग के लिए काम करता हूँ, जो कुछ सरकारी योजनाएं आते हैं वो उनके तक पहुँचने का काम मैं करता हूँ।
0: उनको आप बताते हैं कि कौन कौन सी सरकारी योजनाएं उनके लिए लागू हुई हैं?
1: हाँ, वो बताने का, उनका पेंशन, वो जो कुछ करने का,
0: फिर उनकी मदद करते हैं। हाँ ठीक है।
1: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं विविध भारती के सभी कार्यक्रम बहुत बढ़िया आ रहे हैं दीदी, सभी सखी सहेली, हेलो सहेली, हेलो फरमाइश, गीत माला, सभी सदाबहार नगमे अभी जो शुरू हो गए ना, वो मन क्या है गीत, वो भी बढ़िया कार्यक्रम है।
0: उसके लिए आपने लिखा कोई खत? हमें
1: खत मैं लिखने, मैं ब्लैंड हूँ दीदी,
0: लेकिन कार्यक्रम सारे सुनते हैं ना?
1: हाँ सारे कार्यक्रम सुनता हूँ, दिन भर में रेडियो चालू रहता है, मैं कन्नड़ भी सुनता हूँ और इधर मराठी, हिंदी, इधर कोल्हापुर हमारे सांगली आकाशवाणी यहाँ पास में है, वो भी सुनता हूँ। उसके बाद में 1 बजे से कोल्हापुर आकाशवाणी रिले करते हैं विविध भारती, शाम 6 बजे तक रहता है दीदी
0: वो सभी कार्यक्रम।
1: मैं AM पर सुनता हूँ विविध भारती का कार्यक्रम, जो हमारे राजकोट, अहमदाबाद, वडोदरा, उसके पर सुनता हूँ मैं।
0: क्या बात है, मतलब हर तरफ से आप विविध भारती को सुनते हैं?
1: ओ बिल्कुल,
0: कहीं न कहीं बैंड चेंज कर करके सुनते रहते हैं कि कहाँ से इस समय आने वाला है।
1: जो रेडियो मेरे पास आए, मैं 1970 से रेडियो का शौक है मुझे दीदी, और मैं पहले से मेरे जो ट्रांजिस्टर आते थे ना छोटे छोटे, वो लेके सुनता था।
0: वो अभी भी आपके पास है?
1: अभी भी नहीं, अभी वो नहीं है, अभी बड़े रेडियो, वो अपर्णा के 2 रेडियो है मेरे पास अभी।
0: अच्छा लगा आपसे बात करके, बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: पैसा फेंको तमाशे देखो, ममताज और राजेश खन्ना का एक फिल्म है दुश्मन।
0: चलिए फिल्म दुश्मन का गीत सुनते हैं और हम भी सुनते हैं आपके साथ।

0: बेटा ये तमाशा देखोगे?
1: हाँ।
0: तुम बाद में देखेंगे ना?
1: नहीं, मुझे अभी देखना है। तुम तो बोलते थे कि मैं लाफा मार के दिखाऊंगा।
0: बेटा यहाँ लाफा नहीं चलेगा, तमाशे वाला बदल गया। चलो चलो घर चले।
1: नहीं, मुझे अभी देखना है।
0: देखना?
1: हाँ।
0: चल बेटा।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्ते मंदाकिनी दीदी।
0: नमस्ते नमस्ते, नाम बताइए अपना, कौन जनाब बोल रहे हैं?
1: मैं बडनेरा अमरावती महाराष्ट्र से हिम्मतराव शृंगारे बात कर रहा हूँ दीदी आपसे।
0: हिम्मत जी स्वागत है आपका।
1: कैसे दीदी आप?
0: अच्छे हैं, आप बताइए।
1: मैं भी अच्छा हूँ दीदी।
0: क्या बात है, अच्छी बात है। क्या कर रहे हैं इन दिनों?
1: मजदूरी का काम करता हूँ दीदी मैं।
0: अच्छा, जैसे
1: बिल्डिंग का काम होता है ना, वहाँ पर काम करता हूँ दीदी मजदूरी।
0: तो क्या टाइमिंग्स रहते हैं? सुबह 7:30 से पहुँच जाते हैं आप वहाँ पर और शाम के 7 बजे तक काम करते हैं?
1: शाम के 5 बजे छुट्टी हो जाती है, 10 बजे जाता हूँ मैं।
0: अच्छा, बहुत मेहनत होती होगी गर्मी में तो और भी।
1: हाँ दीदी, बारिश नहीं हो रही ना अभी इधर अमरावती में, कुछ कुछ जगह हो रही दीदी बारिश।
0: तो बताइए आप वहाँ काम करते हैं, फिर ये प्रोग्राम कब सुनते हैं जैसे आप अभी हमें कॉल कर रहे हैं?
1: अमरावती स्टेशन पे FM लगा रहता है, वो साइड पर सब मजदूर लोग सुनते हैं दीदी बडनेरा अमरावती में। तो अमरावती स्टेशन है हमारा 101.5 पर आता है, तो वहाँ विविध भारती हमको क्लियर सुनाई देता है।
0: और बीच में कॉल करने की इजाजत है आपको जैसे अभी आप हमें कॉल कर रहे हैं?
1: हाँ, हम 11 बजे ड्यूटी से छुट्टी निकाल लेते हैं दीदी, आधा घंटा 1 घंटे के लिए।
0: अच्छा बताइए, आज कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: फिल्म का नाम है धर्मा और गाने के बोले राज की बात कह दू तो की बात राज रहने दो।
0: अच्छा,
1: इशारों को इशारों में।
0: हाँ, ये कव्वाली है।
1: हाँ, मोहम्मद रफी साहब
0: और आशा भोसले की आवाज में।
1: आशा भोसले और बिंदु और प्रांत के ऊपर फिल्म आएगी, फिल्म कव्वाली दीदी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार कव्वाली है।
1: और रेखा नवीन निश्चल इसमें अभिनेता थे, हीरोइन थी।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद की है कव्वाली।

0: आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें, ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222867028888, 0224002462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे HR पाटले, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेकी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग,
0: रंग तरंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का स्नेहिल अभिवादन। इस कार्यक्रम में, इस सभा में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। आइए इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई इस गजल के साथ। ये कलाम मिर्जा गालिब का है।

ढोलक की थाप दूर दराज के महलों तक सुनाई दी। जब उसे खबर मिली तो वो भी पहुंचा। खिड़कियों दरवाजों से झांक झांक कर उसकी नजर पकड़ने की कोशिश करता रहा। मेहंदी सजी दुल्हन तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। एक सहेली दुल्हन के लिए चाय की प्याली लेकर आई। उसने तो मांगी नहीं थी। सहेली की आंख ने झपक कर कहा, पी लो, कप में पैगाम भी है। कप की तह में उसने अंगूठी रखकर भेज दी थी। अंगूठी होंठों से पी ली और उंगली में पहन ली। सहेली की मेहंदी लगी हथेली पर उसने लिखकर भेज दिया, उसी सनसेट पर मिलना जो पुल पर मिला था। लेकिन संदेशा पहुंचा नहीं, वो जा चुका था। पल भर में सब बदल गया और कुछ भी नहीं बदला। जो बदला था वो तो गुजर गया।

ये आवाज है भूपेंद्र सिंह की। आप सुन रहे हैं गुलजार साहब की ये रचना। संगीत दिया है विशाल भारद्वाज ने। इससे पहले आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की।

0: भूपेंद्र सिंह की आवाज में अभी आप सुन रहे थे गुलजार साहब का ये कलाम।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन?

कार्यक्रम में आप सुनिए अभिजीत की आवाज में एक गैर फिल्मी गीत। रचनाकार हैं सुब्रत और संगीतकार सप्तऋषि।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अनूप जलोटा के संगीत निर्देशन में हम आपको हरीश चंद्र का लिखा ये भक्ति पद सुनवा रहे हैं। आवाज पामेला सिंह की है।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग, और आइए आप सुनते हैं मिताली सिंह और भूपेंद्र सिंह की आवाजों में ये गजल।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए, ये शायर जिसका नाम भूपेन हजारिका है, कितनी आसानी से आवाम के दिलों की आहट सुन लेता है। ये रात जो लोगों के दर्द की रात है, आवाम के गम की रात है, जब उसके सीने में गूंजती है तो वो तलाश करने लगता है ये आवाज कहां से आ रही है, इनकलाब किस रास्ते से आ रहा है और दर्द किस रास्ते से आगे बढ़ रहा है। वो कान लगाए सुन रहा है और वक्त से पूछ रहा है ये किसकी सदा है।
6: भूपेन हजारिका की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं गुलजार साहब की ये रचना।

ये आवाज थी भूपेन हजारिका की। और आइए अब सुनते हैं कैलाश खैर की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत।

0: डीवी पलुस्कर की आवाज में अभी आपने संत मीराबाई का ये भक्ति पद सुना। जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। और अब आज का रंग तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
2: रंग तरंग।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। हाइड्रोजन से चलने वाली इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत में ही डिजाइन की गई ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है।
1: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ दो या तीन डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। जिंद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
0: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहेम ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के शुभारंभ का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोलहेम ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौकी स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे जहां वे प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे, वृक्षारोपण में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास

0: करेंगे। श्री शाह का बीएसएफ कर्मियों से बातचीत का भी कार्यक्रम है। गृहमंत्री सिलीगुड़ी के उत्तरकन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक मामलों, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वे कोलकाता के लिए रवाना होंगे। भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक लागू रहेगी। संसद का मॉनसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू हो रहा है। इससे पहले भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक हुर्मुस जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। महानिदेशालय ने यह सलाह खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी की है। समुद्री प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के साथ साथ भारतीय जहाजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपातकालीन स्थिति में महानिदेशालय ने सभी नाविकों और जहाजों से महानिदेशालय संचार केंद्र या भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं कुछ खास गीत। जी हाँ, आज जानी मानी अभिनेत्री जरीना वहाब का जन्मदिन है, तो विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें देते हैं ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और आज इस कार्यक्रम में हमने जरीना वहाब की फिल्मों से ही कुछ गीत चुने हैं, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

सावन को आने दो, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आप सुन रहे थे जसपाल सिंह, कल्याणी मित्रा और साथियों की आवाजों में। गीत को लिखा था गौहर कानपुरी ने और धुन बनाई थी राजकमल ने। और ये आवाज है रूना लैला की, फिल्म का नाम घरोंदा, नक्श लायलपुरी की रचना और जयदेव की धुन।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
6: कार्यक्रम का अगला गीत यशुदास की आवाज में फिल्म चित्तचोर से हमने लिया है। गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन हैं।

यशोदास की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म चितचोर का ये गीत। और लीजिए अब सुनिए एन दत्ता का संगीत, पंडित भरत व्यास की बोल, आवाज सुमन कल्याणपुर की और फिल्म का नाम गोपाल कृष्ण।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अब सुनिए गुलजार साहब की लिखी रचना राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में। इसे आवाज दी है आशा भोंसले ने और ये फिल्म है सितारा।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और आज आप सुन रहे हैं अभिनेत्री ज़रीना वहाब की फिल्मों से कुछ गीत। आइए सुनते हैं फिल्म नैया का गीत। इसे आवाज दी है हिमलता ने। गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन हैं।

0: तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: फिल्म दहलीज का दो गाना सुनिए। स्वर आशा भोंसले और महेंद्र कपूर के हैं, गीतकार हैं हसन कमाल और संगीत रवि का है।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गीत हमने नक्श लायलपुरी का लिखा हुआ चुना है। इसे संगीत में डाला है जयदेव ने, आवाज लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है तुम्हारे लिए।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
0: जी।
1: जो कभी भी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक और एक 11। जी हाँ, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत अब आप सुनने वाले हैं। गाने वाले कलाकार मोहम्मद रफी और आशा भोसले। शब्दकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

इसी कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं सुलक्षणा पंडित और साथियों का गाया हुआ फिल्म जज्बात का गीत, शब्द महेंद्र देहलवी के और धुन राजकमल की।

इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में आपने मशहूर अभिनेत्री जरीना वहाब की फिल्मों से कुछ गीत सुने थे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूरी तरह से स्वदेश में बनाई गई ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर एक जनसभा में उन्होंने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया।
1: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
0: जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौकी स्थित सीमा सुरक्षा बल BSF की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे, जहां वे प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे, वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह का BSF कर्मियों से बातचीत का भी कार्यक्रम है। गृहमंत्री सिलीगुड़ी के उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक मामलों, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक लागू रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से

मॉल्डोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये दौरा भारत के इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुस जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। महानिदेशालय ने यह सलाह खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 790 अंक बढ़कर 77,977 जबकि निफ्टी 205 अंक की बढ़त के साथ 24,277 पर कारोबार कर रहा था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: placement service license companies to avoid deploying Indian seafarers on vessels undertaking voyages through the Strait of Hormuz until further orders. The Maritime Administration has issued an advisory on precautionary measures for the safety and security of Indian seafarers in view of the heightened security situation in the Gulf region. The government has convened a meeting with the floor leaders of political parties in the Parliament this Sunday, ahead of the upcoming monsoon session of Parliament. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure the smooth functioning of both houses of Parliament. The monsoon session will commence from the 20th of this month and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. The Gujarat Anti-Terrorist Squad, ATS, has arrested five persons in connection with its probe into a terror module of the Pakistan-based Jaish-e-Mohammed outfit. The arrested persons were identified as Bilal Abid Bhai Shera, Muhammad Ayub Kariwala, Muhammad Palanpuri alias Khali Ayub Sansara, Shafia Rais Mukhti and Muhammad Hassan Kardia. The European Union has expressed serious concern over the human rights situation in Pakistan. It has warned that Pakistan's continued access to trade benefits under the Generalized Scheme of Preferences Plus or GSP Plus will depend on its compliance with international commitments under the revised GSP framework from 2027. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। स्वच्छ और टिकाऊ रेल परिवहन की दिशा में बड़ा कदम। झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा का संचालन अब सदर अस्पतालों से होगा। नई एम्बुलेंस की खरीद तक सिविल सर्जनों की देखरेख में चलेगी व्यवस्था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम किए घोषित। 11 लाख से अधिक अभ्यर्थी सफल। नामकुम भूमि हेरफेर मामले में एसीबी ने शुरू की प्रारंभिक जांच। हाईकोर्ट को दी जानकारी। राज्य सरकार ने दी पीई की मंजूरी। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। हाइड्रोजन से चलने वाली इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट।
2: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। जिंद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
1: स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि 108 एम्बुलेंस सेवा का संचालन अब राज्य के सदर अस्पतालों से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नई एम्बुलेंस की खरीद तक यह सेवा संबंधित जिलों के सिविल सर्जनों की देखरेख में संचालित होगी। नई एम्बुलेंस की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है।
3: वैसे एजेंसी पर हम एफआईआर दर्ज करने जा रहे हैं। आप जब काम नहीं कर सकते तो काम लिए क्यों? तक नई एजेंसी नहीं आ जाती है। जितना भी हमारा एम्बुलेंस है सदर हॉस्पिटल में आप जमा कर दो। हम 21 तारीख को आपात बैठक हम कर रहे हैं। उस बैठक में हम ये निर्णय लेने जा रहे हैं कि 108 की जितनी भी खराब एम्बुलेंस हो या अच्छा एम्बुलेंस हो सदर हॉस्पिटल चलाए।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। एजेंसी ने कहा है कि परिणाम समय पर घोषित कर दिए गए हैं ताकि उम्मीदवारों के लिए प्रवेश और काउंसलिंग कार्यक्रम

0: कथित हेरफेर के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में राज्य सरकार ने अधिकारियों के विरुद्ध प्रारंभिक जांच की अनुमति दे दी है। एसीबी ने आज झारखंड उच्च न्यायालय को इसकी जानकारी दी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजेश शंकर की पीठ में हुई। यह मामला नामकुम अंचल के डुंडुक क्षेत्र में भूमि के दाखिल खारिज से जुड़ी कथित अनियमितताओं से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस आज विश्व भर में मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य न्याय का समर्थन करने, पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देने और विश्व की शांति, सुरक्षा तथा कल्याण को खतरे में डालने वाले अपराधों को रोकने में मदद करने के इच्छुक सभी लोगों को एकजुट करना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। निर्वाचन आयोग आज नई दिल्ली स्थित भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान IIIDEM में अखिल भारतीय मीडिया सम्मेलन 2026 का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन का विषय है हितधारकों को जोड़ना, लोकतंत्र को सशक्त बनाना और चुनावों में मीडिया की भूमिका। सम्मेलन में चुनाव प्रक्रिया में मीडिया की भूमिका, जिम्मेदार रिपोर्टिंग और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ बनाने से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत गढ़वा जिला प्रशासन मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन और त्रुटि रहित बनाने के लिए अभियान चला रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी पशुपति नाथ मिश्रा ने बताया कि अभियान की प्रगति की नियमित समीक्षा की जा रही है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं।
1: SIR की जो प्रक्रिया है वो अच्छे से चल रही है और डिस्ट्रीब्यूशन काम लगभग समाप्त हो गया है। दोनों विधानसभा में, बनापुर में तो 100% डिस्ट्रीब्यूशन भी हो चुका है और अप्रोचिंग गढ़वा का भी 100% हो चुका है। डिजिटाइजेशन में तेजी आई है और हम समझते हैं कि 2 दिनों के अंदर डिजिटाइजेशन का कार्य भी पूर्ण कर लिया जाएगा।
0: इधर लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को गणना प्रपत्रों का वितरण 100% पूरा हो गया है। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी संदीप कुमार मीणा ने बताया कि लगभग 2 लाख मतदाताओं के भरे हुए प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन भी पूरा कर लिया गया है। रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने लोगों से डाक विभाग की स्पीड पोस्ट सेवा के माध्यम से राखी भेजने की अपील की है। उन्होंने कहा कि डाक से भेजी गई राखी का अपना विशेष भावनात्मक महत्व होता है।
2: डाक विभाग के स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपनी राखी स्वयं बनाकर या स्व सहायता बहनों के माध्यम से जो राखी बिकती है उन राखियों को खरीदकर लोकल फॉर वोकल का संदेश देते हुए अपनी भावनाओं से इस रक्षा बंधन के पवित्र त्योहार को जोड़ते हुए हम इसे और मजबूत बनाएं और अपने भाइयों की कलाई को और मजबूत करें।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 766 अंक बढ़कर 77,953 जबकि निफ्टी 196 अंक की बढ़त के साथ 24,269 पर कारोबार कर रहा था। इधर राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,100 रुपए प्रति 10 ग्राम है जबकि चांदी की कीमत 2,28,000 रुपए प्रति किलो है। हजारीबाग के ईचाक प्रखंड में सामान्य से कम वर्षा होने के कारण धान की खेती प्रभावित हो रही है। समय पर पर्याप्त बारिश नहीं होने से धान की नर्सरी सूखने लगी है और खेतों में नमी की कमी से किसानों की चिंता बढ़ गई है। नदियों, तालाबों और आहरों में भी जलस्तर कम होने से सिंचाई व्यवस्था प्रभावित हुई है। क्रिकेट, इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत

0: भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। स्वच्छ और टिकाऊ रेल परिवहन की दिशा में बड़ा कदम। झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा का संचालन अब सदर अस्पतालों से होगा। नई एम्बुलेंस की खरीद तक सिविल सर्जनों की देखरेख में चलेगी व्यवस्था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। 11 लाख से अधिक अभ्यर्थी सफल। नामकुम भूमि हेरफेर मामले में एसीबी ने शुरू की प्रारंभिक जांच। हाईकोर्ट को दी जानकारी। राज्य सरकार ने दी पीई की मंजूरी। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने ये शीर्षक गीत सुना। फिल्म का नाम था जब प्यार किसी से होता है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज पहली बार मंदाकिनी जी की इबारत भी लंबी है। लंबी इबारत हो तो मैं कार्यक्रम नहीं सुनता, पर आज अवश्य सुनूंगा, क्योंकि मंदाकिनी जी की अविरल कलकल बहती नदी जैसी आवाज की वजह से क्या बात है। जैसे अरे लता मंगेशकर जी का हर गाना सुना जा सकता है, उनकी आवाज की वजह से चाहे गीत के बोल और संगीत कैसा भी हो तब कोई भी गाना बुरा नहीं लगता। उसी प्रकार लंबी इबारत को भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन केवल आज तक। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। लेकिन एक बात बताइए, इबारत तो बहुत छोटी सी थी। हम तो कोशिश यही करते हैं कि जितनी कम शब्दों में अपनी बात कही जाए वो ज्यादा बेहतर, और हमारी कोशिश ये भी रहती है कि हमारी इबारत थोड़ा सरल हो, ताकि हमारे श्रोता जो है परेशान नहीं हो और इस सुरीले सफर में हमारे साथ अंत तक बने रहे, है ना। एक श्रोता ने लिखा भी है इसके बारे में, आगे मैं उनके विचार पढ़ने वाली हूँ। बड़ा ही मस्त लिखा है उन्होंने। वहीं एक श्रोता अभी लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम भीगतावासा प्यारा सा है। नमस्कार आपको, हमारा आज की इबारत तो पूरी प्यार से भरी है। आपके साथ दोपहर 1 बजे मजा दोगुना हो जाएगा, और आपने आज के टेक्स्ट से निकलने वाले संभावित शब्दों पर गाने भी लिखे हैं जो लगभग मुझे लगता है सारे ही सही हैं, ऐसा लग रहा है। एक आध गाना शायद नहीं हो सकता, बाकी आप खुद चेक कीजिएगा कि हमारी जो गानों की आज महफिल में हमने चुने हैं गीत, वो आपके गीतों से मेल खा रहे हैं या नहीं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में प्रेम की गहराई का वर्णन खूबसूरती से किया है। फिल्मों के नाम को जोड़कर सुंदर गानों से इस एहसास को और मजबूत किया गया है। आपने भी फिल्मों के बहुत सारे नाम लिखे हैं, लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा तू प्यार का सागर है, तो इस बात को ध्यान रखिए कि ये गाना फिल्म सीमा का है ना। और हमने आज चुना है शीर्षक गीतों का कार्यक्रम, यानी प्यार का सागर जब हमने गीत बजाया था तो उसकी फिल्म का नाम भी था प्यार का सागर, है ना, समझ आए ना आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में प्यार का सागर उमड़ने वाला है, वो भी किसी की आंखों में, और फिर आंखों ही आंखों में बात होगी, तो प्यार की बरसात होना बहुत ही लाजमी है। दिल आशिकाना होकर किसी को याद करेगा तो महबूब की मेहंदी सुंदर हाथों में लग जाती है, क्योंकि यादों की बारात लेकर राजकुमार जी आने वाले हैं। प्यार का सागर देखा है किसी के, ये गीत तो जरूर बजना चाहिए, बज भी गया है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में फिल्मों के नाम और गीतों की पंक्तियां हैं, ये केवल हमारी भावनाओं का आईना ही नहीं बल्कि प्रेम की सच्ची भाषा है। इनमें प्रेम की मिठास, बिछड़ने का दर्द, मिलने की खुशी, यादों की गर्माहट है। जब दिल में प्यार का सागर हो, हाथों में महबूब की मेहंदी का रंग हो, साथ में यादों की बारात हो, तब जिंदगी किसी खूबसूरत फिल्म से कम नहीं होती। कितना सुंदर लिखा है आपने, और मुझे लग रहा है कि जब आज प्रेम उमड़कर आया है इस सफर में, तो लोगों के दिल से प्रेम की बौछारें होने लगी हैं। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रेम हमारी जरूरत है, ये प्यार है ना, ये स्नेह, ये इश्क, अलग अलग तरीके से किया गया जो प्यार है, अलग अलग रिश्तों में किया गया प्यार है, लेकिन मूल भाव उसका है प्यार, जिसकी हर इंसान को, हर प्राणी को बहुत जरूरत है। आप देखिए आपने कितने सुंदर विचार लिख डाले हैं आज प्यार पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्यार का मौसम फिल्म का ये शीर्षक गीत सुनते हैं, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार राहुल देव बर्मन। इससे पहले हम अपने सवालों को एक बार फिर से दोहरा देते हैं। हमने आपसे पूछा था छोटा सा सवाल कि आपको कौन सा शीर्षक गीत पसंद है, किसी एक गीत का जिक्र आपको करना है। और हमारा दूसरा सवाल ये था कि कहते हैं कि हिंदी फिल्मों में सबसे पहला शीर्षक गीत 1949 में आई एक फिल्म से लिखा गया था। आपको बताना है ये फिल्म जो 1949 में आई थी वो कौन सी थी, इसके गीतकार जो कि महान गीतकार कहलाए वो कौन थे, क्योंकि उनकी भी ये पहली ही फिल्म थी। इतना हमने आपको क्लू दे दिया है, हिंट दे दिया है। और हाँ, 1949 में आई इस जो टाइटल ट्रैक की सफलता हुई वो इतनी बड़ी थी दोस्तों कि इसके बाद से ही टाइटल सॉन्ग्स का चलन तेजी के साथ शुरू हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे।

जी हाँ, ये है फिल्म का नाम प्यार का मौसम। आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी हैं, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन।

हमारे श्रोता का लिखना है कि आज कुछ इस प्रकार के गीत बजने वाले हैं जो कि दिल की गहराइयों को छू जाएंगे, जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी गहराई से इस बात को समझा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भारत की पहली सवा दो लाइन में चार फिल्मों के नाम और फिल्मी गीत लिखे गए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो इबारत में ही कई फिल्मों के नाम है, अब देखना है कि गीत कौन से सुनने को मिलते हैं। तो आपने देख लिया, सुन लिया ना कि आज हमने कौन से गीत चुने हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इबारत पसंद आई, कम से कम फिल्मों के नाम तो क्लियर है, दिमाग को मेहनत कम और सुकून ज्यादा मिलेगा। ज्यादा उलझी हुई इबारत देने की कोई जरूरत भी नहीं होती है, ये गीतों के आनंद देने का लेने का कार्यक्रम है, कोई एमए हिंदी का पेपर नहीं जहां अनसीन पैसेज हल कराया जा रहा हो। अरे आपने इतना गंभीरता से ले लिया इस बात को, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे कार्यक्रमों में जब भी कोई इबारत लिखी जाती है तो गानों के आधार पर ही लिखी जाती है। कई बार आपको लगता होगा कि इबारत बहुत कठिन है और इसमें कौन से गाने बज जाएंगे, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब आपको हिंट दी जाती है कुछ इबारतों में कि आज क्या बजने वाला है ना, तो इसे आप हिंदी का पेपर, एमए हिंदी का पेपर नहीं समझे। ये वाकई एक दिलचस्प प्रोग्राम है जहां सिर्फ हमें उस सुरीले सफर का आनंद लेना है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत से हमने जो शब्द चुना वो है प्यार। प्यार के बिना तो पूरी इबारत मानो सुनी। प्यार शब्द ने इस इबारत को बड़ा ही प्यारा बना दिया है। प्यार की सबसे खूबसूरत बात यही है कि जितना इसे बांटा जाए उतना ये दिलों में बढ़ता है। कुछ एहसास शब्दों में नहीं समाते हुए बस मुस्कान बनकर, चेहरों पर अपनत्व बनकर रिश्तों में उतर जाते हैं। कुछ रिश्ते नाम नहीं मांगते, बस अपनापन मांगते हैं। दो मीठे शब्द, एक सच्ची मुस्कान और दिल से निकला एहसास। बहुत गहरी बात आपने लिखी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब दिल में प्यार का सागर उमड़ता है तो आंखों में ही अनकही बातें होने लगती हैं। फिर जीवन में प्यार का मौसम दस्तक देता है और मन बरबस कह उठता है, तुमसे अच्छा कौन है। बिछड़ने और मिलने के बीच भी दिल ने फिर याद किया कि मधुर धुनें दिल में गूंजती रहती हैं। जब रिश्तों की डोर और गहरी होती है तो हाथों में मेहंदी सजती है और खुशियों की यादों की बारात साथ लेकर सपनों का राजकुमार जीवन में प्रवेश करता है। यही तो प्यार की सबसे खूबसूरत कहानी है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर तरीके से आपने इबारत पेश की है। एक श्रोता लिखते हैं कि प्यार कोई बड़ा इजहार नहीं बल्कि छोटी छोटी बरवाहों का नाम है। किसी की मुस्कान की वजह बन जाना, उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेना, हर हाल में उसका साथ निभाने की चाह, यही तो सच्चे प्यार की सबसे खूबसूरत पहचान। एक प्यारी सी बात, सच्चा प्यार फूलों की खुशबू की तरह होता है, उसे जोर से पकड़कर नहीं रखा जा सकता, लेकिन उसका एहसास लंबे समय तक दिल में महकता रहता है। सच मानिए, आपका ये प्यार भी हमारे दिल में महकता है। और देखिए, इसलिए तो हम अब जो गीत लेकर आए हैं उसमें सिर्फ प्यार होगा। हाँ, फिल्म का नाम है प्यार ही प्यार। आवाज मोहम्मद रफी की, शब्दकार हसरत जयपुरी हैं, संगीतकार शंकर जयकिशन हैं।

जी हाँ, हमारे श्रोताओं ने हमारे सवालों का जवाब देना शुरू कर दिया है। एक श्रोता लिखते हैं कि शायद आपका जो सवाल है कि हिंदी फिल्मों में सबसे पहला शीर्षक गीत किस फिल्म के लिए लिखा गया, शायद फिल्म बरसात है और बरसात में हमसे मिले तुम सजन ये गीत हो सकता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मी दुनिया का सबसे पहला शीर्षक गीत फिल्म बरसात से था और इसके गीतकार थे शैलेंद्र। जी हाँ, और वहीं श्रोताओं ने और भी अपने सवालों के जवाब में लिखा है कि संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और सलमान खान की फिल्म साजन जब रिलीज होने वाली थी उसके थोड़े दिन पहले ही साजन फिल्म का टाइटल सॉन्ग लिखा गया और फिल्माया गया और फिल्म में डाला गया था, यानी ये गीत इन्हें बेहद पसंद है फिल्म साजन का। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरा पसंदीदा शीर्षक गाना है फिल्म नजराना का, जिसे मोहम्मद रफी ने गाया, गीतकार राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार रवि हैं। बिल्कुल, आपने बहुत ही प्यारा गीत चुना है। एक प्यासा मुझे मैखाना दिए जाता है, जाते जाते भी ये नजराना दिए जाता है। बहुत सुंदर गीत है रफी साहब की आवाज में। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि शायद 1949 में आई फिल्म बरसात पहली फिल्म थी जिसमें शैलेंद्र जी ने बरसात में जब मिले हमसे तुम सनम तुमने ये गाना लिखा था। बिल्कुल सही जवाब है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सर्वाधिक शीर्षक गीत लिखने का रिकॉर्ड भी शैलेंद्र के नाम पर ही है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपके सवालों के जवाब हैं बूंद जो बन गई मोती, ये शीर्षक गीत सटीक इसलिए बहुत प्यारा लगता है, यानी बूंद जो बन गई मोती इस फिल्म का जो गीत है वो आपको पसंद है शीर्षक गीत। वहीं आप लिखते हैं कि दूसरा बरसात में हमसे मिले तुम सजन 1949 का पहला शीर्षक गीत है और गीतकार थे शैलेंद्र। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि 1949 में सबसे पहली फिल्म बरसात में शैलेंद्र जी ने बरसात में हमसे मिले तुम सजन तुमसे मिले हम इस गीत की रचना की थी, जिसे शंकर जयकिशन ने संगीतबद्ध किया था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत ही सरल और प्यारी है। एक श्रोता ने लिखा है, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात शीर्षक गीत मुझे पसंद है, पर इसके अलावा भी पसंदीदा गीतों की लिस्ट बहुत लंबी है, हम आपके हैं कौन ये गाना भी हमें बहुत पसंद है। एक श्रोता लिखते हैं कि 1949 की प्रथम टाइटल संगीत राज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म बरसात में मिले हमसे तुम सजन ये गीतकार शैलेंद्र की रचना है जो सबसे पहली मानी गई है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा पसंदीदा शीर्षक गीत है दिल मेरा एक आस का पंछी, बहुत सुंदर गीत है ये। एक श्रोता लिखते हैं कि आपने मेरा मनपसंद गीत जब प्यार किसी से होता है बजा ही दिया है, ये गीत मुझे बहुत पसंद है। और एक श्रोता को दीवानो अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूं कौन मैं हूं डॉन डॉन, यानी डॉन फिल्म का गीत इन्हें बेहद पसंद है। एक श्रोता लिखते हैं कि अखियों के झरोखों से आश्चर्य की बात है कि जिनकी आंखों की ज्योति बचपन से बुझी हुई थी ऐसे महान गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन ने इसकी रचना की, ये गाना टॉप गाना था और इन्हें बहुत पसंद है ये गाना। और एक श्रोता को यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, जो हमारी लिस्ट में शामिल है, ये गाना बेहद पसंद है। और एक श्रोता को सफर फिल्म का गीत है जिंदगी का सफर, ये कैसा सफर कोई समझा नहीं, बहुत पसंद आता है। वहीं श्रोताओं को बहुत सारे गीत पसंद आए हैं, किसी को महबूब की मेहंदी फिल्म का टाइटल गीत बहुत पसंद है और किसी श्रोता को दिल एक मंदिर का टाइटल गीत पसंद है। वहीं श्रोता ने लिखा है कि आपके सवालों का उत्तर हमने दे दिया है, फिल्म बरसात और सवाल के उत्तर यानी शैलेंद्र। अरे, हमने कोई

प्रश्न पत्र थोड़ी रखा, ये तो हमारे कार्यक्रम के सवाल हैं जो हम सभी पूछते हैं अलग अलग तरीके से। कभी पूछा जाता है कि इस फिल्म का नायक कौन है, कभी पूछा जाता है नायिका कौन है, इस फिल्म में क्या था, आपने इस फिल्म को क्या देखा। तो हमारा सवाल भी इसी तरह से होता है कि आपकी पसंद का कोई शीर्षक गीत हो तो बताइए, या हमारी फिल्मी दुनिया में पहला शीर्षक गीत कब लिखा गया। तो इस तरह से ये सवाल जवाब ही इस कार्यक्रम को, इस सफर को अच्छा बनाते हैं, ऐसा हम मानते हैं और यकीनन आप भी मानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म तुमसे अच्छा कौन है का शीर्षक गीत, रचनाकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

होगी और जान हमें पर दोगी। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी, पत्थर पिघल जाएगा। देखो तुम मुझसे

प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। कभी हमने नहीं सोचा था।

दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था

0: कौन है।
1: जी तो हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि सुहाना सफर में सबसे शुरू हुआ नियमित सुनता हूँ, इसमें बार बार वही घिसे पीटे गीत और विषय रिपीट हो रहे हैं। 70-80 के दशक गीत बिल्कुल नकार दिया, वही सुनकर बोरियत लगती है, जिसमें रहस्य शिक्षा प्रेरणा हो वर्तमान जीवन को लाभान्वित करे। आपको क्या आज के गीत भी पसंद नहीं आए बताइएगा हमें। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि कुछ ऐसे गीत बजाए जाएं जो आपको अच्छे लगते हैं और कार्यक्रम में रोचकता लेकर आए हैं ना। आज के गीत आपको कैसे लगे इसके बारे में बताइएगा। हो सकता है आपकी पसंद हमारी पसंद से न मिलती हो, लेकिन हमारा उद्देश्य हमेशा बहुत ही सकारात्मक होता है कि हमारे श्रोताओं का हम उद्घोषक कितना अच्छा मनोरंजन कर सकते हैं, वही कोशिश हमेशा यानी हर बार होती है। एक श्रोता लिखते हैं कि जब तक खुद को प्यार का सच्चा मतलब न पता हो तो प्यार महबूब महबूबा मौसम झरना पानी पहाड़ फूल सावन ये सिर्फ शब्द होते हैं, लेकिन जब सच्चा प्यार होता है तो इन शब्दों में पूरा जीवन दर्शन होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज का कार्यक्रम बहुत ही सुरीला है, मैं ट्रेन का सफर कर रही हूँ, ये सफर और साथ में विविध भारती का साथ सफर और भी सुरीला हो गया है। मौसम भी आज बहुत अच्छा है, बादल भी लुका छिपी खेल रहे हैं, बहुत सुंदर। आप कार्यक्रम भी सुन रही हैं और प्रकृति को भी महसूस कर रही हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। एक श्रोता लिखते हैं कि प्यार का सागर जब आंखों में उमड़ता है तो दिल गहरे एहसास से लबालब हो जाता है और तब यहाँ हृदय की भाव विह्वल अवस्था बन जाती है, जहाँ प्रियतम प्रेम में रस की अनुभूति को गहराई से महसूस करने लगता है और उनके आपस में संवाद शब्दों से नहीं होते, क्योंकि इस परिस्थिति में शब्द मौन हो जाते हैं। आंखों आंखों में जो संवाद होता है उसकी अलग भाषा होती है और किसी भी व्याकरण की सीमा से परिभाषा होती है, न कोई अल्प विराम न पूर्ण विराम, बस आंखें बोला करती हैं और आंखें ही सुना करती हैं। क्या बात है, बहुत खूब। यहाँ प्रेम की अवस्था दिव्य रोशनी के साथ उनके प्रेम को एक अलौकिक आनंद से परिपूर्ण कर दिया करती है। यहाँ एक गीत की पंक्तियां साझा कर रहा हूँ, होठ झुके जब होठों पर सांस उलझी हो सांसों में, दो जुड़वा होठों की बात कहो इन आंखों में, मेरी जा मुझे जा न कहो। अरे वाह, फिल्म अनुभव का गीत आपने लिखा है और बहुत ही सुंदर आपने अपनी बात अपनी इबारत लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और महबूब की मेहंदी हाथों में लगा लेते हैं। आवाजें लता मंगेशकर, हेमलता और साथियों की, आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बोल।

जी तो हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज आपके द्वारा प्रस्तुत की गई इबारत और गीतों में प्यारी प्यार से लबालब है और झलक रहा है। मेरी माता रानी से तहे दिल से प्रार्थना है कि सभी की झोली और जीवन में सच्चा प्यार बढ़े, ये मेरी दुआ है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत आपकी मधुर उत्स्फूर्त पेशकश और सभी शीर्षक गीतों को हम शीर्षक दे रहे हैं परिपूर्ति। वाह क्या बात है, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। एक श्रोता लिखते हैं कि कोई एक गीत नहीं अपितु विषय के अनुसार विभिन्न प्रकार के गीत हमें प्रिय हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि से अच्छा कौन है, बल्कि विविध भारती से अच्छा कोई नहीं हो सकता। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज सुरीला सफर अपने पूरी रफ्तार से मुकाम की ओर है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं और उन सभी श्रोताओं से हम थोड़ा सा मुआफी मांगते हैं कि उनकी जो पसंद है उन्होंने लगातार, बहुत सारे श्रोताओं ने अपने शीर्षक गीतों की पसंद हम तक लिखी है, लेकिन कार्यक्रम में समय का अभाव है, अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम उन बातों को शामिल करें। बहरहाल कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, अंतिम पेशकश ये है।

ये आवाजें किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की थी। फिल्म का नाम था यादों की बारात। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे, संगीतकार थे राहुल देव बर्मन।

जी हाँ, हमारे आंगन में भी इसी तरह हम नाचेंगे गाएंगे और नए सुरीले सफर पर फिर निकल पड़ेंगे किसी एक दिन और, है ना। तो तब तक के लिए, यानी उस नए सुरीले सफर में चलने तक के लिए, मंदाकिनी जोशी को दे दी इजाजत, फिर मिलूंगी। नमस्कार।

0: Union expresses serious concern over human rights situation in Pakistan, asks Islamabad to comply with international commitments to access trade benefits. IMD forecasts heavy rainfall over parts of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya and Odisha today. And in badminton, Indian ace shuttler PV Sindhu enters semi-finals of Japan Open in Tokyo. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान। और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया। ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 667 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और कटरा के बीच यात्रा का समय 14 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे हो जाएगा, जबकि दिल्ली अमृतसर की यात्रा का समय लगभग 8 घंटे से घटकर 4 घंटे हो जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने हाल के वर्षों में विकास के एक नए चरण को देखा है और प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है।
2: 2 नए मेडिकल कॉलेज भी हरियाणा की सेवा के लिए समर्पित है। भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज और नारनौल में महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज और राव तुलाराम अस्पताल, इससे हरियाणा की स्वास्थ्य सेवा और सशक्त होगी। साथ ही इस यहाँ के नौजवानों के लिए डॉक्टर और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल बनने के नए रास्ते भी बनेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जींद भाजपा और एनडीए के सुशासन मॉडल का प्रतीक बनकर उभर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ ने जींद को भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया है।
2: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन के शुभारंभ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। श्री वैष्णव ने कहा कि ये उपलब्धि नरेंद्र मोदी सरकार के व्यापक रेलवे आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि स्वदेशी हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प का परिणाम है।
3: जींद में हाइड्रोजन बनाने का प्लांट लगाया गया है। उस हाइड्रोजन से बिजली बनती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं, एकदम साफ स्वच्छ और सिर्फ निकलता है पानी की बूंदे। मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के इंजीनियर्स की टेक्निकल क्षमता को सल्यूट करता हूँ।
1: भारत में डिजाइन और एकीकृत की गई इस ट्रेन को स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। ये उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की

0: बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। जींद सोनीपत खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति के साथ ही ट्रेन न केवल सुरक्षित है बल्कि 89 किलोमीटर के इस खंड पर तेज भी है। एक रिपोर्ट।
1: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। जींद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
0: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहिम ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के शुभारंभ का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोलहिम ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरु मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है।
2: यह परामर्श खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी किया गया है। महानिदेशालय का कहना है कि इन घटनाओं से संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत नाविकों और व्यापारिक जहाजों के लिए जोखिम काफी बढ़ गया है। समुद्री प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के साथ साथ भारतीय जहाजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपातकालीन स्थिति में महानिदेशालय ने सभी नाविकों और जहाजों से महानिदेशालय संचार केंद्र या भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाज के सीमा चौकी स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन से मिलेंगे और प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: केंद्रीय गृह मंत्री सिलीगुड़ी स्थित उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकों का अध्यक्षता करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक विषय, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन तथा जन्म मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वह कलकत्ता के लिए रवाना होंगे। रविवार श्री शाह पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा वह कलकत्ता में राष्ट्रीय पुस्तकालय में नवनिर्मित वर्ल्ड म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। बाद में वह अमूल बंगाल डायरी का आधारशिला रखेंगे। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने इस रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने का कार्यक्रम है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में वस्त्र निर्माण, उनके आदान प्रदान, नवाचार और निवेश के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत किया।

0: गया है। 4 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना तथा संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक मंच पर प्रदर्शित करना था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की इन देशों की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये यात्रा इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोप क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति मुर्मू 20 जुलाई को मोल्दोवा पहुंचेंगी, जहां वे राष्ट्रपति माया सैंडू से द्विपक्षीय वार्ता के अलावा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मुलाकात कर व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति 21 जुलाई को उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी, जहां वे राष्ट्रपति गोर्डोना सिल्जनवोस्का दावकोवा, क्रिस्टिजन मिकोस्की और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया की संसद और भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 23 जुलाई से 2 दिवसीय रोमानिया यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे राष्ट्रपति निकोसोर डैंस सहित वहां के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संघ ने पाकिस्तान से कहा है कि व्यापारिक लाभ पाने के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करना होगा। संघ ने कहा है कि जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस के अंतर्गत पाकिस्तान को व्यापार लाभ 2027 से संशोधित GSP ढांचे के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुपालन पर निर्भर करेगी। ये टिप्पणियां यूरोपीय आयोग और विदेश मामलों तथा सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि द्वारा तैयार की गई 2023-2025 अवधि की नवीनतम संयुक्त निगरानी रिपोर्ट में की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अब भी भेदभाव, व्यक्तिगत हमलों, भीड़ हिंसा और पूजा स्थलों को नुकसान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें पाकिस्तान की संघीय सरकार से पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को अस्थायी प्रांतीय दर्जा और संवैधानिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। दोनों पक्षों के समर्थन से पारित ये प्रस्ताव कल सत्र के दौरान सांसद जलाल अली शाह ने पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस से राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपने संबोधन में चुनाव सुरक्षा से संबंधित खुफिया रिकॉर्ड को तत्काल सार्वजनिक करने की घोषणा की। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 771 अंक बढ़कर 77,957 पर, जबकि निफ्टी 195 अंक की बढ़त के साथ 24,268 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और ओडिशा के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। क्वार्टर फाइनल मैच शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला चीन की विश्व नंबर 4 चेन युफेई से होगा। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पड़ाव पर पहुंच गई। भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के भव्य रथ ग्रैंड रोड पर अपनी औपचारिक यात्रा पूरी करते हुए श्री गुंडीचा मंदिर के निकट स्थित पवित्र स्थल शारदाबली पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को हुर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा

0: व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है।

0: फिल्म काला बाजार का गीत था ये, आवाज आशा भोसले की थी, शब्दकार शैलेंद्र थे और धुन सचिन देव बर्मन की थी। ये आवाज़ें लता मंगेशकर और साथियों की फिल्म का नाम है जिस देश में गंगा बहती है। गीतकार हसरत जयपुरी हैं, संगीतकार शंकर जयकिशन हैं।
1: इन आँखों का रंग हो गया गुलाबी गुलाबी, हाय हाय

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। श्रोताओं, इससे पहले आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म गर्लफ्रेंड का गीत। गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीत दिया था हेमंत कुमार ने। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

फिल्म का नाम है चांद मेरे आजा, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, गीतकार आई एस कपूर हैं और संगीत चित्रगुप्त का है।

0: ये आवाज़ लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था चांद मेरे आचा। जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। कार्यक्रम की अगली पेशकश इकबाल कुरैशी का संगीत, राजेंद्र कृष्ण के बोल, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म बिंदिया।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पे

0: पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
3: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
0: जी।
3: जो कभी भी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
2: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, रोशन का संगीत, प्रेम धवन की रचना, आवाज आशा भोंसले की और फिल्म का नाम वल्लाह क्या बात है।
5: साथ बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मानसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू होकर अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने का कार्यक्रम है। रांची में झामुमो सांसद महुआ मांझी ने परिसीमन पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस समेत कोई भी दल परिसीमन का विरोध नहीं कर रहा है। हालांकि बैठकों के आधार पर उन्होंने कहा कि असली चिंता परिसीमन आयोग को लेकर है और लोगों में इसकी निष्पक्षता को लेकर संदेह बना हुआ है।
6: परिसीमन से दरअसल किसी को विरोध नहीं है, कांग्रेस को भी नहीं है। विरोध इस पर है कि परिसीमन आयोग जो बनेगा, उस आयोग में जो लोग रहेंगे वो कितने फेयर तरीके से परिसीमन करेंगे। जो भी विपक्षी पार्टियां जो अपोजिशन में है केंद्र में, उनके खिलाफ ही हो सकता है परिसीमन जाए। देश में विपक्ष रहेगा ही नहीं फिर, सिर्फ लोकतंत्र में फिर एक ही पार्टी अगर लोकतंत्र को चलाएगी तो आप समझ सकते हैं किस तरह से तानाशाही शुरू हो सकती है।
5: विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट पर है। 30 जुलाई से शुरू होने वाले इस मेले के लिए देवघर और दुमका सहित पूरे 105 किलोमीटर लंबे कांवर पथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक सोमवार को उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए बिहार पुलिस के साथ विशेष समन्वय बनाया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। इसमें झारखंड के सुहर्ष कुमार गुप्ता 99.97% के साथ स्टेट टॉपर बने हैं। वहीं रांची के ज्ञानेंद्र गर्व ने भी बेहतरीन सफलता पाई है। पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द होने पर ज्ञानेंद्र निराश जरूर हुए, लेकिन माता पिता के सहयोग से उन्होंने दोबारा तैयारी की। उनका सपना डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना है।
7: पूरे 2 साल का मेहनत लगता है, मुझे वापस देना पड़ेगा इसी सेम एग्जाम को। डेफिनेटली बहुत बुरा लग रहा था, फिर कोचिंग में एग्जाम्स वापस शुरू हो गया, फिर एग्जाम्स देते देते मेरा वापस लाइक मूड आ गया पढ़ाई का, फिर मैं पढ़ाई कर एकदम में वापस आ गया। मेरे जो दोस्त है, मेरे पेरेंट्स है, वो सब मेरा मोटिवेशन हाई रखते थे। सब लोग बोलते थे कि तुम्हारा वापस भी अच्छा ही जाएगा, वो नहीं पूरा सोचना चाहिए। और दूसरा मैं बोलूंगा, कोचिंग में जो एग्जाम्स होते थे वो मुझे बहुत हेल्प किए वापस पढ़ाई करने में।
5: धनबाद के गोल्फ ग्राउंड स्थित गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इस्कॉन अध्यक्ष प्रेमदास ने बताया कि 19 जुलाई तक चलने वाले इस उत्सव में भव्य मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतिदिन 60,000 लोगों के लिए महाप्रसाद की विशेष व्यवस्था है।
8: गोल्फ ग्राउंड में गुंडीचा मंदिर बनाया गया जो ठीक मेरे पीछे है, और यहाँ पर जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा विराजमान है। अगले 4 दिन तक जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा यही रहेंगे और प्रत्येक दिन सुबह से शाम कभी भी आकर दर्शन ले सकते हैं। यदि किसी को आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है तो उसके लिए बुक स्टॉल्स हैं, कई सारे हमारे ग्रंथ वितरण हो रहे हैं। जहाँ जगन्नाथ जी है उसके बगल में कल्चरल पंडाल, जहाँ 4 बजे से 9 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम से।
5: राज्य में मौसम विभाग ने आज और कल भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण रांची, खूंटी और गुमला सहित 10 से अधिक जिलों में

0: मूसलाधार बारिश और वज्रपात की आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रांची के खेलगांव स्थित बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में आज से 65वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हो गई है। 21 जुलाई तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में राज्य के सभी 5 प्रमंडलों की 15 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसमें अंडर 15 और अंडर 17 बालक बालिका वर्ग के मुकाबले खेले जाएंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: सेवा देश की।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। जब हो अपनों का साथ तो मजबूत रहते हैं हाथ, जीवन की हर कठिन राह आसान लगने लगती है जब परिवार, मित्र और शुभ चिंतकों का साथ मिलता है। अपने केवल सुख के साथी नहीं होते, बल्कि कठिन समय में हमारा सबसे बड़ा संबल बनते हैं। उनका विश्वास, स्नेह और प्रोत्साहन हमें हर चुनौती का सामना करने का साहस देता है। जब मन निराश होता है, तब अपनों का एक भरोसेमंद हाथ हमें फिर से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यही अपनापन रिश्तों को मजबूत बनाता है और जीवन में आत्मविश्वास का संचार करता है। इसलिए हमें अपने रिश्तों को प्रेम, सम्मान और विश्वास से सजो कर रखना चाहिए, क्योंकि अपनों का साथ ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी पूंजी है। चलिए देखें आज कौन से शहर से कौन सी हमारी सखी हमसे अपनी बातें करने वाली है। तो खत्म हुआ इंतजार, देखते हैं कौन और कहां से है आज की हमारी पहली कॉलर। हेलो सहेली।
1: हाँ जी, हेलो सहेली से बोल रहे हैं। मैं मनीतू बोल रही हूँ, जोधपुर से मैडम।
0: अच्छा, आप जोधपुर से बोल रहे हैं, यानी कि राजस्थान से, है ना?
1: हाँ जी मैडम जी।
0: आपने बताया जोधपुर से रहती हैं, तो वहाँ पे क्या बहुत ही प्रसिद्ध चीज है, पहले तो ये बताइए हमें।
1: मैम जोधपुर का तो मिर्ची बड़ा बहुत फेमस है।
0: मिर्ची बड़ा यानी बहुत अच्छी चीज, मुझे बहुत पसंद है।
1: और मैडम बारिश के मौसम में आप खाओगे ना, जब वहाँ पे खड़े तो आप सोचोगे एक नहीं मैं चार खा लूं। हमारे
0: ये तो होता है, ये तो होता है। तो और ये तो चलिए खाने की चीज हो गई, वहाँ पे देखने लायक कौन सी चीज है?
1: मैम आप आइए मंडोर उद्यान देखिए, यहाँ का हमारे
0: अच्छा
1: पैलेस देखिए, उम्मेद भवन जिसको बोलते हैं।
0: अच्छा हाँ, उम्मीद भवन बहुत सुना है उसके बारे में।
1: बहुत से सेलिब्रिटीज की यहाँ पे शादियां ऑर्गेनाइज होती है।
0: तब तो आपके जोधपुर में खूब चहल पहल होती रहती होगी सेलिब्रिटीज की, तो अच्छा लगता होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमारा नया एयरपोर्ट बनवाया गया है, रिनोवेशन हुआ है।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है। तो यानी आने वाली ऐसी जगह है जिसको देखना चाहिए जाके जरूर, है ना?
1: बिल्कुल।

0: बिल्कुल। और बताइए आपके घर में कौन कौन है?
1: घर में मैम मेरे मम्मी है, मेरे पापा है, भाई है, भाभी है और मेरे दो भतीजियां हैं।
0: अरे वाह, तब तो भतीजियों के साथ खूब मस्ती चलती होगी, है ना?
1: बिल्कुल, उनका नाम लेऊं
0: हाँ
1: मैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए।
1: एक बड़ी वाली है हर्षिता और छोटी वाली है पुलकिता।
0: अरे
1: पुलकिता
0: वाह,
1: का आज 7th मंथ का बर्थडे है।
0: अरे वाह, बहुत बहुत बधाइयाँ छोटी सी पुलकिता को। बहुत प्यारा नाम है, बहुत प्यारा नाम है, हर्षिता का भी और पुलकिता का भी। बहुत
1: दादा ने
0: बहुत,
1: नाम रखे हैं, हर्षिता नाम रखा था
0: हाँ जी,
1: तब सेकेंड हुई है, तो
0: अच्छा
1: बोले
0: अच्छा
1: पुलकिता रखेंगे इसका।
0: वही मतलब वही है, हर्ष उत्तर और पुलकित हो ना। अच्छा, बहुत अच्छा नाम रखा है। और बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है, ये बताइए मुझे, आपके शौक क्या है?
1: मैं घर का काम करती हूँ।
0: घर के काम तो हम सभी करते हैं, लेकिन कुछ एक शौक होता है ना कि हम ये करें, इसमें हमें बहुत मन लगता है करने में, वो कौन सा काम है? वो
1: मैं
0: डांस भी हो
1: हॉस्पिटल में
0: सकता है।
1: जॉब करती हूँ, सरकारी
0: अच्छा, आप जॉब करती हैं?
1: नौकर,
0: अरे क्या बात है, आप सरकारी नौकरी में,
1: नर्सिंग ऑफिसर हूं मैं।
0: बहुत बहुत बढ़िया बात है। तो सरकारी नौकरी में भी हमारे कुछ अपने जो शौक होते हैं, जैसे कोई डांस किसी को पसंद होता है, किसी को गाना गाना पसंद होता है, किसी बहुत अलग अलग चीजें होती है, किसी को खेल पसंद होता है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है। तो आपको क्या पसंद है?
1: मैम गाना तो मेरे को देखो इतना आता नहीं, मैं रेडियो जरूर सुनती हूँ, वो साथ साथ वैसे गा लेते हैं, पर वो वाली सिंगिंग नहीं, लेकिन
0: अच्छा
1: डांस का है तो वो शौक होता है, कभी कभी कर लेते हैं घर पे।
0: जब थक के आते हैं आप, है ना, जॉब से
1: बिल्कुल
0: ये अच्छी चीज है, ये इस तरीके की जो चीजें होती है ना, वो हमें थोड़ा तरोताजा कर देती हैं थोड़ी देर के लिए, है
1: बिल्कुल,
0: ना,
1: थोड़ा
0: हम
1: माइंड
0: जो,
1: फ्रेश करते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि थक के आते हैं वहां पे जो जॉब की परेशानियां होती हैं, वो सब चीजों से हम जब जूझ के आते हैं ना, तो एक कुछ थोड़े से जो पल होते हैं ना, वो हमें ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल हम उसमें अपने मन का काम करें, है ना।
1: बिल्कुल मैडम जी,
0: तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: बारिश का मौसम है, मॉनसून सीजन है, तो मेघा रे मेघा रे।
0: अरे वाह, क्या गाना सुना है आपने, बहुत बढ़िया गाना है। तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: तो बताइए, आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं केकता शेख बोल रही हूँ। गुजरात सूरत से बात कर रही हूँ मैं।
0: अच्छा, सूरत से बोल रही हैं आप।
1: जी
0: तो बताइए, आपको क्या करना अच्छा लगता है? पहले तो सूरत के बारे में बताइए कि वहां पे क्या ऐसी चीज है जो हम देखने आ सकते हैं वहां आपके पास।
1: सूरत में कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं,
0: अरे
1: ड्रेस
0: वाह,
1: बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं।
0: अच्छा, यहाँ वहाँ के कपड़े मशहूर हैं बहुत ज़्यादा, है ना?
1: वहां के कपड़े बहुत मशहूर है,
0: अच्छा,
1: सब दूर दूर से हमारे एरिया में कपड़े खरीदने आते हैं।
0: अरे क्या बात बताई आपने, तो बहुत अच्छी चीज़ हमें पता चली है।
1: वो जो सलमा मैडम बेचते हैं ना, नए नए आए, उनकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है।
0: बहुत
1: उन्हों
0: अच्छी
1: की,
0: बात है।
1: फिर नेहा जी की, फिर पूजा जी की, फिर आपकी, ममता दीदी की, इन सबकी आवाज बहुत अच्छी लगती है मुझे। बस सब तक पहुंचा देगा।
0: बिल्कुल, आप पहुंच गई सब तक आपकी आवाज। तो आप ये बताइए कि आपको खाने में क्या अच्छा लगता है सबसे ज्यादा?
1: मैडम मैं तो खाने में बिरयानी है, इतनी चीजें खा लेती हूँ। बिरयानी, दाल पुलाव, खिचड़ा। खिचड़ा हमारे में बहुत बनता है।
0: अच्छा, तो चलिए और बताइए, आपके घर में कौन कौन है?
1: मेरे घर में तो मैं हूँ, मेरी बहन है, मेरी मम्मी है, मेरा अब्बू है,
0: अरे वाह, तो सब लोग साथ
1: मेरी
0: में
1: जो
0: रहते
1: शादी
0: हैं?
1: जी मेरी जो शादी नहीं है, मेरी
0: हाँ,
1: दीदी की हो गई है।
0: अच्छा, आपको कौन सा गीत सुनना है?
1: हेलो सहेली में मैं वो गाना पसंद करती हूँ, बॉडी गार्ड का,
0: अच्छा, आपको बॉडीगार्ड का
1: तेरी
0: गाना
1: मेरी
0: सुनना?
1: कहानी है मुश्किल।
0: अच्छा ठीक है, तो आपके पसंद का हम ये गीत सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। तो देखते हैं कौन और कहां से है हमारी सखी जिनका कॉल लगा है अभी अभी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए आप पहले तो अपना नाम और कौन से शहर से बोल रही हैं ये बताइए।
1: आरती जी, आप तो हमारे ही बेटी का नाम भी आरती ही है और वो आपका प्रोग्राम बहुत ही सुनती रहती है।
0: तो अच्छा लगता है।
1: मैं बहुत अच्छा लगता है, 4 बजे तक सुनती रहती है और बोलती है मेरा नाम आया, से गाना आया, तो बहुत मजा आता है उसको। इसके
0: अच्छा।
1: लिए मुझे बोलती है कॉल लगा।
0: अच्छा तो कितनी बड़ी है आपकी बेटी?
1: मेरी बेटी मंदबुद्धि की है ना, इसके लिए वो चल नहीं पाती।
0: अच्छा,
1: और थोड़ी मंदबुद्धि की, अभी 30 साल की हुई, अभी अभी इसकी बर्थडे हुई गई।
0: अरे वाह, तो उसको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और
1: हाँ
0: बताइए अब आपको मतलब क्या करना अच्छा लगता है अपनी बेटी के साथ, अब जब समय बिताती हैं तो किस तरीके से दिनचर्या रहती है?
1: मैडम, उसको तो क्या है कि नख जो है ना वो रंगोना शायद भी उखड़ जाए ना, तो नख पॉलिश रंगवा लेती। चूड़िया तो 40-50 चूड़िया पहनती है,
0: अच्छा तो
1: और
0: अच्छा लगता है उसे,
1: पाँव
0: तैयार होना अच्छा
1: पाए।
0: लगता है?
1: हाँ, उसको तैयार होना, कपड़ा 2 टाइम नहाना, खाना सब
0: अरे वाह,
1: जो मांगे वो देना,
0: बहुत बहुत अच्छी
1: उसकी
0: बात
1: ही
0: है।
1: शरारत में हमारे पूरा दिन निकल जाता
0: नहीं बहुत अच्छी बात है, बहुत
1: है।
0: अच्छी चीज है अपने अपने आप से प्यार करना, है ना? अपने आप से प्यार
1: हाँ
0: करना
1: हाँ
0: सबसे पहले जरूरी होता है, और बहुत अच्छी चीज
1: हाँ
0: है, वो
1: क्या
0: सजती है, संवरती है, अपने आप को अच्छा महसूस करती है, बहुत जरूरी है ये।
1: क्या है कि मेरा एक लड़का है बड़ा, और वो अभी शादी हुई, लड़की हुई, वो दूर रहता है। और अभी एक मेरी लड़की की शादी हुई प्रियंका,
0: अच्छा,
1: आजीवा रोड पे,
0: अच्छा, बहुत बहुत
1: उससे
0: आपको
1: छोटी
0: बधाइयाँ।
1: थी।
0: और आपकी मतलब बेटी को ये तैयार होना अच्छा लगता है, उसे ड्राइंग करना अच्छा लगता है, कुछ ऐसी बनाना या कुछ इस तरीके की चीजें करना?
1: नहीं, ये सब नहीं, उसको तो क्या है कि वो गाना रेडिया वो सब
0: अच्छा
1: बहुत पहले से सुनती रहती है। वो सलमान खान बहुत अच्छा लगता
0: हाँ
1: है, तो तेरे
0: अच्छा,
1: नाम का गीत सुनती है। वो
0: अरे वाह,
1: रोती है ना, तो तेरे नाम का गीत सुना देते ना, तो चुप हो जाती।
0: अच्छा, यानी उसे
1: हाँ
0: संगीत पसंद है। संगीत पता है आपको, एक बहुत अच्छी
1: वो,
0: थेरेपी भी है।
1: हाँ, और आपका जो प्रोग्राम आता है ना वो सुनते हैं, उसमें से कुछ सीखना मिलता है, कोई खाना बनाना सीख लेते, नए कुछ बातें अच्छी सुनते, तो किसी को बताते तो कोई खुश हो जाती।
0: बहुत अच्छी चीज है ये, बहुत, ये समझ लीजिए बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि आप तक हम पहुंच पाए, आपको अच्छा लगा जो हमारा प्रयास है, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए।
1: हाँ,
0: अब बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं जो आरती को पसंद है?
1: आरती को पसंद है। तुमसे अच्छा कौन है,
0: अच्छा तुमसे अच्छा
1: हाथ
0: कौन?
1: है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात
0: अच्छा,
1: करते
0: तो चलिए आपकी पसंद का ये, यानी कि आरती की पसंद का ये गीत सुनाते हैं आपको, आँख है भरी भरी।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहली
0: तो आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: जी, मैं बोल रही हूँ कश्मीर से, डिस्ट्रिक्ट बारामूला से बोल रही हूँ।
0: अरे
1: सकीना
0: वाह,
1: है मेरा नाम, सकीना जी।
0: अच्छा सकीना जी बोल रही हैं और बारामूला
1: जी
0: कश्मीर से बोल रही हैं, बहुत अच्छी बात है। तो
1: जी
0: बताइए अब
1: मैं
0: अपने बारे में थोड़ा सा, आप क्या करती हैं और आपके घर में कौन कौन है?
1: जी मैं घर में काम कर रही हूँ, पश्मीना का काम कर रही हूँ।
0: अरे वाह, पश्मीना का बहुत मशहूर है कश्मीर का, पश्मीना एकदम नाम
1: जी
0: जुड़ा हुआ है
1: मैम,
0: कश्मीर के साथ में ना, पश्मीना का।
1: जी मैम
0: जी, तो आपके घर में कौन कौन है?
1: जी, मेरे घर में मेरी फैमिली है, मेरे 3 बेटे हैं, तो एक बेटा है, 3 बेटियां हैं।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो बताइए, बच्चे छोटे हैं आपके कि बड़े?
1: नहीं, अभी छोटे हैं
0: छोटे हैं, तो यानी आपको पूरा टाइम उनके साथ में लगना पड़ता होगा, है ना?
1: जी मैम।
0: आपको क्या करना अच्छा लगता है जब आपके बच्चे स्कूल गए होते हैं, मतलब आप जब अकेली होती हैं, आप कुछ कर नहीं रही होती हैं, तो आप क्या करती हैं अपने खाली समय में जब कोई काम सब
1: जब
0: निपट जाता है घर का?
1: खाली में रहती हूँ ना, बस ये रेडियो सुनती हूँ और अपना काम करती हूँ। और क्या, ये पश्मीना से ज्यादा हम रखते हैं ना, घर का काम खत्म करके बस यही
0: हाँ,
1: करते हैं।
0: नहीं क्योंकि इसमें तो बहुत टाइम लगता होगा। अच्छा, आप इसे पश्मीना का क्या मतलब शॉल बनाती हैं कि कोई
1: जी
0: ऊनी
1: मैम,
0: कपड़े?
1: शाल बनाते हैं।
0: शॉल बनाती हैं, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ये पश्मीना का शॉल तो, और वहाँ तो खूब अच्छे अच्छे तरीके के मिलते होंगे। अच्छा, पश्मीना के बहुत किस्में होती हैं कि एक ही मतलब
1: जी जी मैम,
0: होता है?
1: बहुत कस्में होते हैं पश्मीना की।
0: अच्छा, तो आप सब तरह का बना लेती हैं?
1: जी, दो
0: अच्छा
1: तीन
0: अच्छा
1: कस्म के बनाते
0: अच्छा
1: हैं।
0: तो ये आप मतलब अपने घर से ही उसको सेल करती हैं या फिर आप कहीं देती हैं कि इसको?
1: नहीं, हम किसी और के जरिए ये काम करते हैं।
0: अच्छा, तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप
1: जी
0: ये अपने अपने हुनर का इस्तेमाल कर रही हैं जो, है ना, क्योंकि
1: मैम,
0: बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कुछ काम आता है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए ना, उसको आप अपने, जैसे कि हम अपने आप को थोड़ा सा और अच्छा कर सकें, है ना, थोड़ी सी मदद
1: जी
0: कर
1: जी
0: सकें,
1: मैम,
0: तो बहुत अच्छी चीज़ है आप जो कर रही हैं। घर में आप रह के इस तरीके से अपने हुनर का इस्तेमाल कर रही हैं। तो बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनना है?
1: जी मैं दिलवाले फिल्म है ना, उसका का कोई भी गीत मैं सुनना चाहती हूँ।
0: दिल वाले फिल्म का कोई भी गीत सुनवा दें आपको, है ना?
1: जी जी मैम,
0: चलिए, आपसे बात
1: थैंक
0: करके बहुत अच्छा लगा हमें, तो सुनाते हैं आपको
1: यू
0: आपके
1: मैम।
0: पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते।
0: नमस्ते। आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही
1: हम रेखा मुखर्जी, वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद खाटी से बोल रहे हैं।
0: हैं? तो बंगाल में सबसे ज्यादा देखने लायक क्या चीज है जो हम वहां पर आकर देख सकते हैं?
1: यहाँ पर बहुत कुछ मिल सकते हैं जी।
0: जी बताइए।
1: यहाँ पर नवाब पैलेस है,
0: हाँ
1: रसगुल्ला भी है, यहाँ का मुर्शिदाबाद
0: हाँ
1: सिल्क भी विख्यात है,
0: अच्छा।
1: फेमस है। यहाँ का आम भी फेमस है, फेमस
0: अरे हाँ, मुर्शिदाबाद का आम और सिल्क।
1: है।
0: बहुत बहुत, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और ये बताइए कि आपको क्या करना चाहते हैं? आप हाउसवाइफ हैं या आप जॉब करती हैं?
1: हाँ हाँ जी, हम हाउस वाइफ है। हम लोग जो रेडियो में जो सुबह सकाल होता है ना,
0: हाँ
1: उसी
0: हाँ
1: में हम लोग मैसेज भेजते हैं। जब
0: अच्छा
1: हम लोग को लाइव फोन में जब नहीं मिलता है
0: हाँ
1: तो हम लोग मैसेज भेजते हैं, स्टोरी पोएम लिख के भेजते हैं।
0: अरे वाह, आप लिखती भी
1: हाँ,
0: हैं? आपको लिखने का शौक है?
1: लिखती भी है। इस बार
0: अच्छा
1: भी हम भेजे,
0: अच्छा अच्छा
1: घर में मेरा पेड़ पौधे लगाए लगी हुई है,
0: हाँ अरे
1: और मेरा
0: वाह,
1: घर में बहुत सारी चीजें है जो पेड़ ओढ़ है फूल का, उसमें रात को रहते हैं। उन लोग को हम दाना देते हैं,
0: बहुत अच्छी बात
1: तीन
0: है।
1: टाइम सबको दाना देते हैं
0: अच्छा,
1: हम।
0: तो आप इस चीज को बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, आप लिखते रहिए, अच्छी अच्छी कहानियां लिखिए, पोयम लिखिए,
1: हाँ
0: कविताएं
1: हाँ
0: लिखिए,
1: हाँ
0: है
1: हाँ
0: ना? और बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: संजोग फिल्म का जू जू जू, जसोदा का नंदलाला, ब्रिज की उजाला है।
0: ठीक है, तो सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं आरती श्रीवास्तव। जरा ध्यान से सुनिए, ये फोन आपके संदेशों को हम तक पहुँचाने के लिए मीठी सी धुन सुना रहा है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए पहले अपना नाम और फिर अपने शहर का।
1: आओ सुंदर शहर बनाएं, डगर डगर पर वृक्ष लगाएं।
0: अरे वाह, क्या बात है, क्या शुरुआत करी है आपने, बहुत अच्छी बात कही है, एक मैसेज दिया आपने ना।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, फालदाना का इंदौर से।
0: इंदौर से बोल रही हैं आप, हसीना मंसूरी। हाँ
1: जी जी
0: बहुत अच्छा लगा। बताइए कि आपको क्या पसंद है, मुझे लग रहा है ना आपको कई सारी चीजें पसंद होंगी करनी है ना। सबसे पहले तो आपको बातें करनी पसंद होंगी जहां तक मुझे लगता है।
1: जी बातें बहुत अच्छे करते हैं मैडम, और गाना भी सुनने का बहुत शौक है। रेडियो चलता रहता दिन भर, मतलब कम से कम 2002 से तो हम रेडियो रेगुलर सुन रहे हैं, कभी मिस नहीं करते मैडम।
0: अच्छा।
1: और रेडियो मतलब खाना खाना छोड़ देते हैं मगर फोन जरूर लगाते हैं।
0: तो आपको कौन से प्रोग्राम पसंद है सबसे ज्यादा?
1: सबसे ज्यादा तो ये हेलो सहेली है, और पहले तो सच्ची सहेली आता तो उसमें लेटर भी शामिल किया करते थे मैडम, तो अगर वो लेटर जैसा अगर शामिल हो जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि हम लोग समीक्षा भी लिखते थे उसमें, रिसेप्शन भी लिखते थे पहले, तो आप लोग बहुत शामिल भी करते थे, अच्छी अच्छी बातें लिखते थे हम लोग, पता नहीं ऐसा हो जाए तो और अच्छी बात रहेगी, सोने भी सुहागा हो जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सब तक पहुंच रही है। तो बताइए और क्या क्या करती हैं, आपको क्या पसंद है करना ये बताइए।
1: सिलाई करती है मैडम मैं अधिकतर तो ज्यादातर, तो और घर में काम भी, छुट्टी रहती है तो घर में काम करना भी अच्छा लगता है,
0: ये तो बहुत
1: साफ
0: जरूरी
1: सफाई
0: चीज है।
1: करना बहुत अच्छा लगता है।
0: हाँ तो ये बताइए आप क्या क्या सिल लेती हैं?
1: ये घनी पेक का काम करते हैं मैडम, जूट का होता है।
0: अच्छा, तो इसमें आप क्या मतलब क्या करना होता है, क्या बनाती हैं आप?
1: इसमें मशीन से रिपेयरिंग होता है, नहीं होता मशीन से नहीं चलता तो फिर हाथ से रिपेयरिंग करते हैं मैडम,
0: अच्छा, आप हाथ से भी कर लेती
1: रफो
0: हैं?
1: होता है। हाँ इसमें रफो होता है मैडम।
0: अच्छा, तो बहुत ही मतलब आपके अंदर बहुत सारी काबिलियत है। बताइए आपको और क्या करना अच्छा लगता है?
1: रेडियो
0: जी जी
1: सुनना अच्छा लगता है मैडम, आप लोगों से बात करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है।
0: कुछ गाना गाना नहीं अच्छा लगता आपको, आवाज से लग रहा है मुझे
1: गाना
0: आपकी।
1: गाना अच्छा लगता है ना मैडम, गाके बताती हूँ।
0: देखा ना, मैंने आपकी आवाज से पहचान लिया।
1: जी, फिल्म का
0: तो
1: नाम है फूल और अंगार, और मेरी फरमाइश भी यही है, और गाने के बोलने, चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे, धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे। ये सुना दीजिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो सुनाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और किस शहर से बोल रही हैं?
1: हेलो सही, हम बड़ागांव जिले में ना चंचल ढाकर बोल रहे हैं।
0: आप क्या करती हैं?
1: मैं
0: आपके
1: 10th क्लास पढ़ती हूँ।
0: अच्छा 10th में आप पढ़ाई कर रही हैं, तो कौन से विषय से आप पढ़ाई कर रही हैं? आपको कौन सा विषय सबसे ज्यादा अच्छा लगता है?
1: हमको सबसे अच्छा विज्ञान लगता है, मतलब
0: विज्ञान? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा विषय है। और बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है, आपके आपके शौक क्या है? जो आप पढ़ाई के बाद आपका जो समय बचता है, तो उसमें आप क्या करना पसंद करती हैं?
1: मुझको मतलब मेरा शौक ये है कि मैं आगे चल के डॉक्टर बन जाऊं।
0: डॉक्टर बनना है आपको? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है भाई। ये तो कि आप लोगों की सेवा करना चाहती हैं, डॉक्टरी करना चाहती हैं। बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम सुनी सुनी सॉन्ग सुनना चाहते हैं सलमान खान का।
0: तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार। तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं ग्राम प्रति पोस्ट कर रही हूँ, जिला चंदौली से इमरती यादव बोल रही हूँ। आप बोल रही हैं आरती श्रीवास्तव।
0: पहचान लिया आपने। तो सबसे पहले बताइए आप, आपको क्या करना पसंद है?
1: मुझे, मैं घर में रहती हूँ, थोड़ा बहुत घर का काम करती हूँ मैम। रेडियो के प्रोग्राम में सुनती हूँ, मैं ब्लाइंड हूँ।
0: अच्छा, तो प्रोग्राम सुनती हैं, तो आपको कौन सा प्रोग्राम सबसे ज्यादा पसंद है?
1: सभी प्रोग्राम अच्छा लगता है, और खासकर हमें सखी सहेली सुनना बहुत अच्छा लगता है। जब आप लोग बातें करते हैं और हंसते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: हाँ, आपको बहुत अच्छी बात है ये, आपको सखी सहेली अच्छा लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइए आप, जैसे कि आप गाने सुनती हैं, तो आपको कैसे, क्लासिकल गाने ज्यादा पसंद हैं या फिर आज के समय
1: जी
0: के?
1: नहीं, हर तरह के गीत पसंद है, नए हो पुराने हो, भक्ति हो या हिंदी हो, मुझे हर तरह के गीत पसंद है। और रेडियो सुनना मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। रेडियो से बहुत, जो हमें कहीं से
0: हाँ,
1: खुशी नहीं मिलती वो रेडियो से मिलती है।
0: ये तो सही बात है। अगर संगीत जो होता है ना, वो एक दूसरे से बांध देता है ना,
1: जी
0: और
1: मैम,
0: साथ ही हमारे सारी परेशानियों को थोड़ी समय के लिए सही, लेकिन दूर कर देता है। और आप जो ये प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे संगीत पे बेस्ड बहुत सारे प्रोग्राम है जो रागों के ऊपर होते हैं, क्लासिकल
1: जी
0: संगीत
1: मैम,
0: के प्रोग्राम है, वो सब भी आप सुनती हैं?
1: जी मैं हर तरह के गीत पसंद है और गाते भी हैं थोड़ा सा रेडियो के साथ में।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज है। गाना जब हम गाते हैं ना, तो सोचिए अपने
1: जी
0: अंदर के एकदम ऐसा लगता है ना कि हम अपने अंदर का भी जो जो भी चीजें हैं, जो भी हमारे अंदर तनाव था, जो परेशानियां थी, वो खत्म हो रही हैं, धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, रिलैक्स हो जाते हैं ना
1: जी
0: एकदम, ऐसा लगता है ना।
1: जी अच्छा लगता है।
0: तो आपको जो गाना सुनना है ना, वो आप गा के सुना दीजिए। बता दीजिए हमें।
1: मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो वो टूट जाता है, वादा तो वो टूट जाता है।
0: बहुत बहुत अच्छा, बहुत प्यारी आवाज है आपकी। तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही
1: जी, मैं मीनू अग्रवाल बोल रही हूँ, मथुरा से।
0: हैं? अच्छा, तो बताइए मीनू जी, आप क्या करते हैं? आपको क्या करना पसंद है?
1: मैं घर में भी रहती हूँ और मैं घर पे ट्यूशन लेती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ। और बाकी का मेरा मेरा जो इंटरेस्ट है ना, वो जैसे कि पेंटिंग है
0: हाँ
1: ना,
0: हाँ
1: और सबसे ज्यादा कुकिंग में है मुझे इंटरेस्ट।
0: अरे वाह, बहुत
1: तो
0: अच्छी
1: मुझे
0: बात है।
1: हाँ, तरह तरह का खाना बनाना अच्छा लगता है
0: कौन कौन से तरीके के खाना बना लेती हैं आप?
1: जी। मैं वैसे तो अपना यही इंडियन फूड ही ज्यादा बनाती हूँ, और बाकी का हाँ, बाकी का ये है कि और भी चीजें मेरे पे आती हैं, जैसे साउथ इंडियन डोसा, इडली, सांभर वगैरह, ये सब
0: अरे वाह,
1: चीजें।
0: क्या बात कर रहे हैं आप! इतनी तरीके की चीजें आप बना लेती हैं घर में?
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: तब तो आपके फैमिली, आपके जो परिवार हैं, सब लोग आपसे बहुत खुश रहते होंगे, है ना? आप बना बना के
1: हाँ
0: अच्छी अच्छी
1: जी,
0: चीजें
1: कहते
0: खिलाती
1: हैं
0: होंगी।
1: ना, हाँ जी, कहते हैं ना कि इंसान की जो पहली पसंद होती है ना, घर में जो मेंबर्स होते हैं उनकी पहली पसंद होती है खाना। अगर उनको खाना हमने अच्छा दे दिया ना बना के, तो बस। मैंने अभी बताया था पेंटिंग कुकिंग वगैरह है, तो मैं
0: हाँ,
1: पेंटिंग्स वगैरह बनाती हूँ
0: अरे वाह,
1: और सेल भी होती है, ऐसी बात नहीं है मेरी पेंटिंग्स वगैरह।
0: बहुत ही, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप ड्राइंग कर लेती हैं, आप पेंटिंग बनाती हैं, आप खाने तरह तरीके की बना लेती हैं, बहुत अच्छी बात है ये तो। और आप ऐसे ही बढ़िया बढ़िया चीजें बनाइए, और किसी दिन हमें भी आप बुलाइए, ताकि हम भी आए और आपने जो बताई हैं चीजें, उनका हम भी कुछ लुत्फ उठा सके।
1: अरे
0: क्योंकि बहुत
1: बिल्कुल
0: अच्छी चीज है, आपको तरह तरह की चीजें करनी आती हैं। तो बताइए मीनू जी, आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
1: जी, मैं दो कलिया मूवी का गाना सुनना पसंद करूंगी, तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई।
0: अरे वाह, बहुत प्यारा सा गीत है। तो चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय जैसे पंख लगाकर तेजी से निकल गया। आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने तो हमें बांध ही लिया और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी, चलते चलते आपको जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपके कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं जो हैं 4002-4662 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 4002-4662 और एसटीडी कोड है 022। अब दूसरा फोन नंबर भी नोट कर लीजिए जो है 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारी जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई वो बिल्कुल भी निराश नहीं हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और ध्यान रहे, लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी न कभी कामयाब जरूर होते हैं और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीनों तक कॉल ना लगाएं और अपनी सखियों को अवसर दें अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले जी का, साथ ही संपादन में सहयोगी बनी है नम्रता टिकोले और विविध भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जिंद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का हिस्सा

भी राष्ट्र को समर्पित किया, जिससे दिल्ली से कटरा का सफर 6 घंटे का रह जाएगा। कोडरमा के सांसद और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत पर प्रसन्नता जताई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिंद से रवाना की गई यह ट्रेन हरित और आधुनिक रेल भविष्य की नई शुरुआत है। यह तकनीकी प्रगति, पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत को सशक्त करेगी। रांची के नामकुम अंचल में जमीन घोटाले और राजस्व रिकॉर्ड गायब होने के मामले में एसीबी जांच का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट सचिव की अनुमति के बाद झारखंड उच्च न्यायालय ने एसीबी को 4 सप्ताह में प्रारंभिक जांच दर्ज कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र के मधुपुर अखड़ा में हुई रविंद्र मुंडा की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए गठित टीम ने मुख्य आरोपी विकास मुंडा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 1 देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आपसी विवाद के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया था। सरायकेला खरसावां के कपाली में पुलिस ने मवेशी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने पीछा कर 1 4-पहिया वाहन को जब्त किया, जिससे 3 गायें बरामद हुई हैं। पुलिस के अनुसार चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। मौसम विभाग रांची ने 21 जुलाई तक भारी बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। आज और कल रांची, गुमला, लातेहार और रामगढ़ समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

उस दिन विज्जू ने बड़ा खेल कर दिया। स्कूल से एक पत्र मिला था चेतावनी वाला, यदि विजय 6 मासी परीक्षा के किसी भी विषय में फेल हुआ तो फाइनल एग्जाम्स में बैठने नहीं दिया जाएगा। विजय बाबू ने चतुराई से उस चेतावनी पत्र पर पिताजी के हस्ताक्षर खुद कर दिए। 6 मासी परीक्षा हुई और विजय बाबू फेल हो गए। पत्र के आधार पर पिताजी को तलब किया गया। अब पिताजी को कहां से और कैसे ले आए विजय? परीक्षा वरीक्षा तो बात की बात थी, पिताजी तो इस कृत्य पे विजय की पहले ही जान ले लेते। ये बात बड़े भैया अज्जू को बताई गई और वो पहुंचे स्कूल विज्जू के अभिभावक बन के। बड़े भैया के इशारे पर विज्जू प्रिंसिपल मैडम के पैर में लोट गया, लेकिन प्रिंसिपल मैडम टस से मस ना हो। फिर अचानक पता नहीं क्या सूझी भैया को, बड़े ड्रामाटिक अंदाज में खुद पैरों पर गिर पड़े प्रिंसिपल मैडम के और माफी मांगने लगे। प्रिंसिपल मैडम की तो हंसी छूट गई, वो फिर हिदायतें देकर माफ भी कर दिया विज्जू को। विज्जू परीक्षा में फिर पास भी हो गया, लेकिन उस वाक्य को याद करके आज भी आंखें गीली हो जाती है अपने भैया की उदारता।

विजय कुछ 18-19 साल का रहा होगा। बड़े भैया अब दुनिया की आपाधापी में उलझ गए थे, 4-5 तरीके के धंधों में हाथ आजमाया, लेकिन कहीं कुछ बात बनी नहीं। उम्र हो गई थी सो उनकी शादी की बात चल निकली थी, और ऐसे में काम का ना होना और बड़ी दिक्कत दे रहा था। भैया के किए सारे एहसानों का विज्जू को स्मरण हो आया। यही वजह रही होगी शायद, भैया जो बोलते विज्जू कर डालता। मतलब वो दादाजी के खेत संभालने की जिम्मेदारी आई विज्जू पे, तो भैया के कहने पर वो भी कर दिया। वो जो नहीं बोलते विज्जू वो भी कर देता। वो कचरे से बिजली बनाने का काम किया भैया ने, तो विज्जू फैक्ट्रियों में घूम घूम के कचरा भी लाद लाद के इकट्ठा करता रहा। बड़ी बहन हालांकि बड़े भैया से छोटी थी, लेकिन उनकी शादी बड़े भैया की शादी से पहले हो गई। विज्जू शादी में इतना काम कर चुका था कि बहन की विदाई का समय आते आते वो कहीं पसर के सो गया। बड़े भैया ने ही आकर जगाया, बोले दीदी विदा हो रही है, आ जा, उनको बाय बोलकर सो जाना। मम्मी और बड़े भैया खूब रोए दीदी के विदाई पे। विज्जू को दीदी के जाने का रोना तो नहीं आया, लेकिन भैया को इतना रोते देख वो भी रो दिया। बैंड वाले ने वो विदाई वाला गाना बजा के माहौल और भी गमगीन कर दिया था।

लेकिन भैया वहां जाते नहीं थे। पता नहीं पार्टनर्स लोगों से कुछ झगड़ा हुआ था शायद, पता नहीं। बिज्जू कभी भैया से सवाल नहीं करता था, उसे लगता था भैया जो कर रहे हैं वो सही ही है। दादाजी के जाने के बाद पिताजी और बड़े भैया एक दिन बिज्जू के पास आए कुछ प्रॉपर्टी के कागजातों के साथ। उन्होंने बिज्जू से उन कागजातों पर 8-10 जगह साइन करवाए। बिज्जू को याद आया उसे नदी में तैरना सिखाया बड़े भैया ने। वो पानी में थोड़ा दूर जाकर खड़े हो जाते और बिज्जू से कहते, कूद जा मैं खड़ा हूं तुझे संभाल लूंगा, और बिज्जू कूद जाता। बिज्जू हाथ पैर मार के उन तक पहुंचता तो वो और पीछे चले जाते, और बस यही खेल कर करके तैरना सिखा दिया भैया ने उसे। अब तो भैया कहें इस कुएं में कूद जा तो वो कूद जाए। इन कागजातों पर हस्ताक्षर कौन सी बड़ी बात थी? भैया के भावों से बिज्जू को हमेशा यही लगता जैसे कह रहे हो तो चिंता मत कर, मैं हूं ना।

बड़े भैया की शादी की बात चल निकली, उनके लिए लड़की ऐसे ढूंढी जा रही थी कि बस राजकुमारी मिल जाए। भैया ठहरे भी गोरे चिट्टे स्मार्ट, दुल्हन अच्छी मिली, मतलब भैया जितनी गोरी तो नहीं लेकिन शांत स्वभाव की दिखी। हंसने में थोड़ी कंजूस मालूम पड़ती थी, लेकिन विजय अपनी हंसी में उनको शामिल कर ही लेगा। इतना जोर जोर से हंसता है, कहां तक बचेगी भाभी प्यारी। सबसे ज्यादा उछलना विजू को आया भाभी के आने का। अलग अलग पकवान, तरकारी खिलाएगी, गप्पे लड़ाएगी, ताश खेलेंगे घंटों बैठकर, और वो नदी किनारे पानी पूरी खाने जाएंगे और पता नहीं क्या क्या नाच नाच के काम किया विज्जू ने शादी में। विज्जू से बड़ी बहन की शादी, मतलब वो जो तीसरे नंबर की बहन, उसकी शादी भी साथ ही में हो गई। सहेली जैसी बहन गई तो सहेली जैसी भाभी आ गई। विज्जू अलग अलग तरीकों से बार बार बोलता,

मेरी भाभी, ये बोलने में उसे बड़ा मजा आता। कारण तो नहीं पता, लेकिन बेवजह ही इस उद्बोधन को हर बात में ले आता। मेरी भाभी ये, मेरी भाभी वो, मेरी भाभी मेरी भाभी।

0: विभिन्न पत्रिकाओं में अलग अलग तरह की व्यंजन विधियां आती और बिज्जू लाल आकर भाभी को देता। कभी मकई की टिक्की, कभी मखाने की खीर, कभी मेथी मटर के कोफ्ते मलाई वाली सब्जी। लेकिन एक के बाद एक भाभी ने कुछ नहीं बनाया शादी के बाद। बिज्जू उनके चेहरे पर हंसी तो नहीं ला पाया, उल्टा जो एक हल्की सी वो मोनालिसा मुस्कान दिखती थी कभी, वो भी गायब हो गई। उम्र कम थी बिज्जू की, लेकिन समझ में आ रहा था कि उसकी माँ और भाभी की पट्टी नहीं थी। वही वो सास बहू वाला एंगल कह सकते हैं। बिज्जू का दिल टूट गया। सुख बुघाट ये भी थी कि भैया का कुछ काम जम नहीं रहा था। अब वो तेल का धंधा कर रहे थे कुछ, आसपास वाले बताते हैं कि शायद तेल का सट्टा कर रहे थे। बिज्जू के लिए ये सब कुछ समझ से परे था। आदतन कोई सवाल तो बिज्जू करता नहीं था भैया से, लेकिन कुछ शंकाएं जरूर आई उसके मन में। अब घर में चुप्पी सी रहने लगी थी, अशांति वाली चुप्पी। बिज्जू हंसमुख मिजाज का सरल लड़का रहा, ये सब कैसे भाता उसे। घर में टूटे तार बिखरे पसरे दिखने लगे। टिमटिमाती चमक लिए बिज्जू की आंखों में अब सूनापन दिखने लगा।
1: झूठा।

0: गीतों भरी कहानी में आज आप सुन रहे हैं श्याम माहेश्वरी की लिखी कहानी भाई हो तो ऐसा।
1: विज्जू बड़ा हो गया था, फिल्म लाइन में आने का मौका मिला तो बंबई आ गया। आज का मुंबई

कल बंबई ही था। अच्छा काम जमा लिया उसने। कालचक्र का पहिया भी अजीब है। बात कुछ ऐसी बैठी कि बड़े भैया का भी वहां काम जोरदार चल निकला, और उससे भी बड़ी बात, उन्हें हर सप्ताह मुंबई आना पड़ता अपने काम के सिलसिले में। मुंबई में आकर विज्जू के घर ही रहते हर हफ्ते 4-5 दिन। विज्जू को लगा तो यही था कि अपने गांव से दूर इस पराए शहर में भी भैया के आ जाने की वजह से वही अपनापन फिर लौट आएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। भैया तनाव में ही दिखते हमेशा। पैसा आता है तो बरकत आ जाती है, लेकिन भैया के साथ उलट हुआ। भाभी का शांत स्वभाव सुना है अब ज्वालामुखी हो गया है। दोनों दीदियां बताती हैं अब वहां भाभी का ही राज चलता है। मम्मी पलंग पर आ लगी है और पिताजी को भगवान के सामने बैठने पर मजबूर कर दिया है।

सालों साल निकल गए इस आपाधापी में। ये शहर अब बंबई से मुंबई हो गया। कोरोना काल में स्वास्थ्य की दृष्टि से तो विजय सही सलामत रहा, लेकिन कोई पिक्चर बनाई उसने जिसमें कमर टूट गई उसकी। नौबत यहां तक आ गई कि बिज्जू का घर बिक गया। और उधर गांव में सुना बड़े भैया ने बहुत पैसा जमा कर लिया था। मुंबई आने की अब जरूरत भी खत्म हो गई थी, इसलिए वे नहीं के बराबर ही आते, और आते भी तो बिज्जू के घर नहीं रुकते, वो कहीं किसी होटल में रुकते थे। आजकल बिज्जू को उनके हाव भाव व्यवहार से समझ आ रहा था कि उन्होंने इसलिए मुंबई आना बंद नहीं किया था कि उनकी ज़रूरतें पूरी हो गई थी, बल्कि इसलिए बंद किया था कि भैया अब बिज्जू से मिलने से कतरा रहे थे। उन्हें शायद ये डर सता रहा हो कि बिज्जू इतने सालों मुंबई में रखने की कीमत न मांग बैठे। कठिन समय में अपने ही याद आते हैं, और वो अजय भैया जैसे अपने हों तो ज़्यादा याद आते हैं।

विजय अभी भी अपने तो अपने होते हैं कि भावों से निकल नहीं पाया था पूरी तरह, लेकिन भैया ने तयशुदा पूरी तरह भुला दिया था बिज्जू को। चलो उसे भुला देते तो भी ठीक था, लेकिन इस वक्त जरूरत में था वो। यही सोचकर मेहरबानी समझ ही मदद का हाथ बढ़ा देते उसकी तरफ, पर ऐसा हुआ नहीं। तब विजय को याद आई अपने दादाजी की जमीन, वही जो दादाजी ने अजय और विजय के नाम कर दी थी और जिन कागजातों पर तब हस्ताक्षर करवाए थे विजय से, वो इसी जमीन को बेचने के कागजात थे। और उसी जमीन को बेच के भैया ने कपड़े की दुकान ली थी अपनी, जिसने आज यहां तक पहुंचा दिया उन्हें। सुना है कुछ लाखों में बेची वो जमीन आज करोड़ों की हो गई है। नंगे के नवग्रह बलवान, विजय ने सोचा और तय किया कि उस जमीन का अपना हिस्सा भैया से अब मांग लेगा। उनके पास बहुत है ही और इसके पास सब खत्म हो गया है, तो ये सही समय है अपनी हक की गुहार लगाने का।

भैया से बात की विजू ने तो वे साफ मुकर गए। तर्क ये कि उस जमीन को बेचना तो छोटी सी बात थी, मेन बात तो यह थी कि उनकी मेहनत थी जिसकी वजह से आज ये मिल्कियत खड़ी हो पाई। तर्क नहीं कुतर्क था ये, विजय की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इतने सालों उन पैसों को भोगने के बाद वो अपने ही हो जाते हैं। बड़ा कठिन हो जाता है उन पैसों पर से अपना मोह जाने देना। पैसों का चरित्र कुछ ऐसा ही है, नकारात्मकता बहुत जल्दी आ जाती है। रुआब और रुतबा तो बढ़ता है लेकिन घमंड और लालच भी बढ़ जाता है। पैसों के शुद्धिकरण के लिए बड़ा दान धर्म करना पड़ता है, तब पछता है पैसा। भैया छोटे भाई को उसके हक का छोड़ो उसकी जरूरत का नहीं दे पा रहे थे तो दान धर्म कहाँ से करते? कहाँ से चले थे अज्जू भैया, कहाँ पहुँच गए? और कहाँ से चला था रिश्ता, कहाँ पहुँच गए?

विजय ने खूब गुहार लगाई अपने नाते रिश्तेदारों के पास जाकर। अपने हक का गान बखान किया, लेकिन भैया के खिलाफ कौन खड़ा होता। समरथ को नहीं दोष गोसाई, पैसे वालों की कहां कभी कोई गलती होती है। विजय को अपना हक नहीं मिलना उतना नहीं चुभ रहा था जितना उस भरोसे का टूटना जो उसने भैया पे दिखाया था। जान लुटाता था वो बड़े भैया पे। कोई अभी भी कह दे कि ये सब झूठ है, अभी भी बड़े भैया आएंगे सांता बन के उसको सरप्राइज गिफ्ट देने, पर वो नहीं आए। विजय के इतने साल जीवन का अहम हिस्सा झूठा साबित हो गया। अब वो किसी पे भी भरोसा कैसे करेगा, और दूसरों पर तो जाने दीजिए, खुद पर भी भरोसा कैसे करेगा।

विजय बेघर है, दिन भर बैठा रोता रहता है, रातों को सो नहीं पाता। इधर गरीबी की मार और उधर विश्वास का खंजर, शूल सी चुभन हिस्सा बन गई है जीवन का। कलयुग की ये घटना कितनों के ही साथ हुई है। संवेदनशील विजय कई तरीकों से अपने आप को संभालने का प्रयास करता रहा। प्रयास करते रहने की एक विशेषता है, मुश्किलों से जूझने के लिए हिम्मत मिलती रहती है। प्रयासों की खुराक सुबह दोपहर शाम लेना शुरू कर दिया उसने दवाई की तरह, कहीं ज्ञान की बात सुनता तो कहीं ध्यान की कोई क्रिया करता। ऐसे ही एक ज्ञान में ये समझ आया कि पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब बचा रहा होगा बड़े भैया से, जो इस जन्म में पूरा हो रहा है। इस ज्ञान ने उसे हौसला दिया और नतीजा भी तुरंत निकला। विजय का बेटा अंधेरे में रोशनी की किरण लेकर आया, अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी पा गया और सबसे महत्वपूर्ण, विजय के प्रति पूरा समर्पित। कलयुगी भाई गया तो सतयुगी बेटा आ गया। कुछ जाता है तो कुछ आता भी है। अभी रात है तो कल सवेरा होगा ही। जीवन के इस हिसाब किताब को समझने के बाद आज विजय शांत है। एक रिश्ते के सामने जीवन का ज्ञान पा जाना उसे भगवान का दिया उत्तम न्याय लगा। आज विजय भैया के लिए नरम हो चुका है। कल तक ये सोचने वाला विजय कि भाई हो तो ऐसा ना हो कि जगह सोच रहा है, भाई हो तो ऐसा

भाई हो तो ऐसा ये की तो भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखक थे श्याम महेश्वरी, संपादक स्नेहल भिसे, वाचन स्वर श्याम महेश्वरी का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

पेंशन समावेशन और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आज एनपीएस संचय आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति और पीएफआरडीए के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में नाबार्ड और विभिन्न बैंकों के अधिकारियों ने ग्रामीण क्षेत्रों, किसानों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन योजना से जोड़ने पर बल दिया। गढ़वा जिले में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत शत प्रतिशत गणना प्रपत्रों का विवरण पूरा हो गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी पशुपतिनाथ मिश्र ने बताया कि 8,62,000 से अधिक प्रपत्र बांटे जा चुके हैं। प्रशासन का लक्ष्य 5 अगस्त को मतदाता सूची के प्रारूप का अंतिम प्रकाशन करना है। देवघर के उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने राजकीय

0: श्रावणी मेला 2026 के मद्देनजर राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कांवर पथ पर यात्री शेड, जल निकासी और ब्लैक स्पॉट को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने अधिकारियों को सभी कार्य समय पर पूरा करने को कहा है। पाकुड़ पुलिस ने रथ यात्रा के दौरान मोबाइल चोरी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी सोहन सिंह और रेखा देवी पश्चिम बंगाल के बर्दवान के रहने वाले हैं। इनके पास से चोरी के 6 मोबाइल और नकदी बरामद कर इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लोहरदगा के कुड़ू थाना क्षेत्र के फुलसुरी गांव में आज सुबह करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई। 36 वर्षीय छोटू महतो जब अपने खेत में मिर्च तोड़ने गए तब वहां पहले से गिरे बिजली के तार की चपेट में आ गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आजादी और जकड़न के बीच दिल झूलता रहता है। नींद में भी ख्वाब डर कर सिमट जाते हैं। सीने में कोई टूटी हुई खामोशी चुभती रहती है और फिर भी सांसों की डोर किसी उम्मीद से बंधी रहती है।

बिजली की चमक में जैसे आसमान भी कुछ कहना चाहता है, पर बरसात सब शब्द भिगा देती है। भीगी हवाओं में तेरा एहसास यूं उतर आता है जैसे तू पास ही खड़ा मुस्कुरा रहा हो। हर बूंद दिल पर दस्तक देती है और मन बस तुझसे मिलने की जिद कर बैठता है। ये मौसम नहीं, कोई अधूरी चाहत सी लगती है जो बाहों में सिमट जाना चाहती है। कांपती ठंड में भी दिल की गर्मी तुझे पुकारती है, जैसे बस एक आलिंगन बाकी हो। और मैं इस बरसात में बस इतना चाहती हूँ कि तू पास आकर मुझे थाम ले।

पलकें जब भी झुकती हैं तो भीतर एक छवि जगमगा उठती है, जैसे कोई दीपक स्वयं जल उठा हो। लज्जा भी अब श्रृंगार बनकर चेहरे पर ठहर जाती है और हर धड़कन में उसका ही स्पंदन बस जाता है। हवाओं में भी अब उसकी आहट सी महसूस होती है, जैसे प्रकृति भी उसी की बात कर रही हो। हर खामोशी अब कुछ कहने लगी है और हर एहसास में उसका ही रंग घुला हुआ है। मेरे नयन रूपी दर्पण में अब बस साजन बसा हुआ है।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। हाथों में उसका हाथ आते ही जैसे सारी दुनिया थम गई, खुशी इतनी कि शब्द भी अब साथ नहीं दे पा रहे थे। दिल हल्का होकर आसमान में उड़ने लगा, मानो जमीन का सहारा ही छूट गया हो। हर कदम पर एक अजीब सी उलझन है, जैसे चलना भी अब मुस्कुराने लगा हो। आंखों में चमक है, होठों पर खामोशी, और मैं उसे थामे हुए इस खुशी में बहती जा रही हूँ।

फूलों की खुशबू भी आज कुछ और ही रंग लिए हुए है, जैसे प्यार ने उन्हें भी सजा दिया हो। हर कली में छुपा एक नाजुक सा एहसास है जो दिल के बहुत करीब उतरता चला जाता है। गुलाब की पंखुड़ियां भी जैसे किसी मुलाकात की कहानी सुनाती हो। हवाओं में बिखरी ये महक मन को धीरे धीरे उसके नाम से भर देती है। हर फूल अब एक संदेश बन गया है जो बिना कहे भी सब कुछ कह जाता है, और मैं उन फूलों में भी सिर्फ तुम्हारे प्यार की ही छाया देखती हूँ।

जीवन की धूप जब तपती है तो तू ही वो ठंडी छांव बन जाता है। हर मुश्किल रास्ते पर तेरा साथ जैसे थके पांव को सहारा मिल जाता है। तेरी मौजूदगी में हर दर्द हल्का सा लगने लगता है, जैसे अंधेरा भी रोशनी से डरने लगे। मैं जब भी बिखरने लगती हूँ तो मुझे फिर से समेट लेता है। तेरी मुस्कान मेरी दुनिया का सुकून बन जाती है, जैसे सब कुछ ठहर गया हो और मैं समझ जाती हूँ कि मेरी जिंदगी की धूप में सिर्फ तू ही मेरी छाया है।

0: आज के छाया गीत में बस इतना ही। दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को, नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम तराने नए पुराने आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

हमारे श्रोता सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। आइए सुनते हैं चंद फिल्मी नगमे।

0: गाने के बाद आइए सुनते हैं वार्ता घर आंगन के तहत। श्रोता बहनों आइए सुनते हैं वार्ता। आज की वार्ता का विषय है बरसात के मौसम में त्वचा की देखभाल। वार्ताकार हैं अरुणा भसीन।
1: नमस्कार बहनों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि हम लोग समय समय पर अपनी बहनों को कई तरह की नई जानकारियां देते हैं। आज हम बात करेंगे मनुष्य

0: नमस्कार बहनों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि हम लोग समय समय पर अपनी बहनों को कई तरह की नई जानकारियां देते हैं। आज हम बात करेंगे मनुष्य की त्वचा अर्थात स्किन पर उसकी देखभाल कैसे की जाए और मनुष्य की त्वचा कैसी होती है, उसकी बनावट कैसी होती है, उम्र के हिसाब से और त्वचा के प्रकार के हिसाब से त्वचा की देखभाल कैसे की जाए, इस पर हम आपको आज कुछ जानकारियां देंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई हैं श्रीमती अरुणा भसीन। नमस्कार अरुणा जी।
1: नमस्कार, मेरी सारी बहनों को नमस्कार।
0: हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने अपनी श्रोताओं को बताया कि आज हम स्किन पर बात करेंगे, मतलब हमारी त्वचा जो है उसकी देखभाल कैसे करनी है, इस पर हम बात करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि सबसे बड़ा अंग है, क्योंकि पूरा शरीर हमारा त्वचा से ही ढका हुआ है।
1: बिल्कुल।
0: और ये जो त्वचा है ये हम लोगों को बाहरी संक्रमण से, विषाणुओं के संक्रमण से और कई तरह के बढ़ते घटते तापमान से भी हमारी रक्षा करता है। शरीर के जो स्किन का अंदरूनी हिस्सा है उसकी रक्षा करता है ये हमारी त्वचा, शरीर का सबसे बाहरी अंग और सबसे बड़ा अंग। तो अरुणा जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि हमारी जो त्वचा है उसको हम कितने प्रकार में बांट सकते
1: हैं? हमारी स्किन तीन प्रकार की होती है।
0: जी हाँ।
1: और कई लोगों की स्किन कई तरह की होती है, पर तीन प्रकार से हम लोग उसको देखते हैं। एक नॉर्मल और तेली त्वचा और एक ड्राई, हमारा जो सूखी त्वचा होती है।
0: जी।
1: और इसकी देखभाल भी अलग अलग तरह से होती है।
0: जैसे आपने बताया अरुणा जी कि मनुष्य की त्वचा तीन तरह की होती है,
1: कई बार मैडम मैं इस बात पे आपको बोलूंगी, कई बार चार तरह की भी होती है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि पूरे फेस पे हमारा जैसे टी जोन होता है, माथा और नोज, नाक का हिस्सा, ये ऑयली होता है और गाल हमारे ड्राई होते हैं।
0: अच्छा।
1: सूखे होते हैं
0: जी।
1: और कई बार क्या होता है कि हमारे गाल जो होते हैं ऑयली होते हैं और माथा का जो पोर्शन होता है और टी जोन जिसको हम लोग बोलते हैं नोज से लेकर फॉरहेड तक, ये हमारा ड्राई रहता है।
0: अच्छा।
1: तो इसकी देखभाल भी अलग अलग तरह से हम लोग करते
0: हैं। ये जो चौथा कैटेगरी है इसको हम मिश्रित त्वचा कह सकते हैं।
1: हाँ जी, मिश्रित त्वचा कहते हैं इसको।
0: तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अरुणा जी नॉर्मल स्किन की। नॉर्मल स्किन की पहचान क्या है?
1: नॉर्मल स्किन की पहचान ये है कि आपको उस स्किन पर कोई भी दाग धब्बा नजर नहीं आएगा
0: जी,
1: और जल्दी झुर्रियां भी नहीं पड़ती हैं और वो नॉर्मल रहती है। उसको कोई भी क्रीम आप यूज कर सकते हैं, किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं होता है
0: जी।
1: और फिर भी उसकी देखभाल तो हमें करनी ही है
0: जी। हाँ।
1: तो इसके लिए क्या है कि हमारे खाने पीने का जो तरीका होता है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है
0: जी। हाँ।
1: और इसलिए उसके खाने पीने के तरीके को भी हम लोग सही तरीके से अगर खान पीन रखते हैं तो हमारी स्किन बहुत अच्छी रहती है। पर नॉर्मल जो स्किन होती है हमारी सबसे बेस्ट कहलाती है और उसकी देखभाल बहुत ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं होती।
0: मतलब एक सामान्य देखभाल के बाद भी वो त्वचा हमेशा
1: हमेशा सही
0: सुंदर लगे।
1: हाँ जी
0: जी।
1: और शाइनिंग भी रहती है, झुर्रियां भी नहीं पड़ती हैं।
0: अगला जो प्रकार है ड्राई स्किन, ड्राई स्किन को कैसे पहचानेंगे और इसको कैसे हम लोग इसकी देखभाल करेंगे?
1: हाँ, ड्राई स्किन को सबसे पहले तो हम ड्राई स्किन को पहचान हमारी ये है कि जब हम लोग फेस वॉश कर लेते हैं
0: जी,
1: पूरा फेस धो लिए या आप कोई फेस वॉश यूज करते हैं या सादे पानी से भी धोते हैं
0: जी। हाँ।
1: तो 5-10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि वो स्किन खिंचने लगती है, तो उससे हमको पता चलता है कि हमारी स्किन ड्राई है
0: जी। हाँ।
1: तो उसकी देखभाल भी हम लोगों को उसी तरह से करनी पड़ती है, क्योंकि ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन पर झुर्रियां भी बहुत जल्दी पड़ती हैं और बुढ़ापा भी कम एज में जल्दी नजर आने
0: अच्छा,
1: लगता
0: अच्छा।
1: है। तो इसलिए हमको उनको विशेष तरह से हम लोगों को देखभाल करनी है। जैसे कई लोग तो क्रीमें भी आजकल बहुत सी मैडम निकली हुई हैं कि आप ड्राई स्किन के लिए अलग, नॉर्मल स्किन के लिए अलग, तो आप यूज कर सकते हैं अगर आपको सूट करती है। पर मैं चाहती हूँ कि हमारी बहनें जो हमारे पार्लर में नहीं जा सकती हैं, गांव वगैरह में रहती हैं या पार्लर उनके घर से बहुत दूर है, उन्हें टाइम भी नहीं मिल पाता है, तो अपनी स्किन की देखभाल अपने घर पर भी रह के कर सकती हैं।
0: तो ड्राई स्किन
1: और ड्राई स्किन की देखभाल के लिए उनको मॉइस्चराइजर बहुत जरूरी होता है,
0: मतलब त्वचा को नम,
1: त्वचा को नम बनाने के लिए मॉइस्चराइजर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मॉइस्चराइजर उनको डेली पर डे नहाने के बाद, मुंह धोने के बाद लगाना चाहिए। और अगर आपके पास मॉइस्चराइजर नहीं है, मेरी बहनों घबराने की बात नहीं है, घर में हमारी मलाई तो है ना, हम लोग उसको थोड़ा सा फेंट लेते हैं और अपने चेहरे पर लगा लेते हैं, बस 10-15 मिनट उसको लगा रहने दीजिए, फिर वॉश कर लीजिए। अच्छा। तो तब देखिए आपकी ड्राई स्किन भी बहुत ही खूबसूरत लगेगी।
0: हमने दो प्रकार की त्वचा की बातचीत की अरुणा जी, अब हम तीसरे तरफ जाते हैं, ऑयली फेस, ऑयली स्किन।
1: जी
0: तो इसकी पहचान क्या है और इसको कैसे हम लोग इसकी देखभाल करेंगे?
1: ऑयली स्किन की देखभाल तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है इसकी।
0: अच्छा।
1: और क्योंकि ऑयली स्किन जो हमारी होती है, पिंपल्स वगैरह भी उस पर निकल आते हैं, और इसलिए उसकी केयर बहुत ही ज़रूरी है
0: जी।
1: और उसके लिए हमें क्या करना है कि बहुत ज़्यादा पानी पीना है और मॉइस्चराइजर ज़्यादा नहीं लगाना है, कोई भी ऑयली खाना नहीं खाना है। जैसे हमारी बहनें बहुत ज़्यादा पूड़ी पकौड़ा ये सब खाती हैं, तो और मसालेदार भोजन नहीं करना है, इससे भी बचना है। कुछ खान पान से भी हमारी ऑयली स्किन जो है बहुत जल्दी खराब होती है और पिंपल्स निकल आते हैं। और जब हमारी स्किन पर पिंपल्स निकलते हैं, उन्हें छूना नहीं है। कई बहनों को मैंने देखा है कि वो हाथ से दबाकर उसको फोड़ देती हैं, उसका जो पस होता है वो निकलता है, तो वो साइड साइड पर जो लगता है तो फिर और पिंपल्स निकल आते हैं,
0: मतलब संक्रमण बढ़ जाता है।
1: इसलिए उसको थोड़ा सा बचना है, हाथ नहीं लगाना है। और उसकी पहचान आप कैसे करेंगे, ये भी एक मुद्दा है हमारा
0: जी।
1: तो उसकी पहचान ये है कि जब आप सुबह मॉर्निंग में आप उठते हो, तो आप देखिएगा आपकी स्किन पूरी तेल तेल छोड़ के रखती है। अगर आपको मान लिया कि ये चीजें नहीं पता चल रही, तो आप टिश्यू पेपर ले लीजिए
0: जी। हाँ।
1: और टिश्यू पेपर आप सुबह उठते ही अपने चेहरे पर लगाइए, और आपको अपनी स्किन के बारे में पता चल जाएगा, वो टिश्यू पेपर पिंक हो जाएगा, उस पर तेल लग जाएगा, तो समझिए आपकी ऑयली स्किन है। अगर नहीं हुआ तो वो ड्राई है। और कई बार जो जैसे मैंने पहले भी बताया है कि टी जोन हमारा ड्राई रहता है या नॉर्मल रहता है, जैसे भी, वो भी आपको टिश्यू पेपर लगाने से पता चल जाता है।
0: मतलब टिश्यू पेपर को आप यूज करके एक तो ऑयली स्किन वाला तो क्लियर पता चलेगा।
1: जी बिल्कुल।
0: लेकिन जो आप हमने बात किया था मिश्रित त्वचा, जिसमें एक पोर्शन
1: ऑयली रहता है,
0: तो उसको कैसे चेक करेंगे?
1: हाँ, वो भी उसी पेपर से आ जाता है
0: जी।
1: आपका जितना पोर्शन ऑयली रहेगा उस पर तेल हो जाएगा, और जो पोर्शन आपका ड्राई रहेगा या नॉर्मल रहेगा उसमें कुछ भी नहीं होगा।
0: मतलब इसका मतलब कि टिश्यू पेपर को हम पूरी तरह से चेहरे पे,
1: जी पूरे चेहरे को ढक लेना है टिश्यू पेपर से, 5 मिनट कम से कम आप टिश्यू पेपर उसको छोड़ दीजिए, और उसके बाद देखिएगा आपका टिश्यू पेपर ही आपको आपकी स्किन के बारे में बता देगा।
0: मतलब जहाँ ऑयली है वहाँ तेल का दाग लग जाएगा, दिखा
1: है जी। अगर आप मेरी बहनों, ये अगर टिश्यू पेपर भी नहीं है, तो वैसे भी आपको मैंने बताया ही है कि फेस वॉश करने के बाद आपकी स्किन खींचने लगेगी, तो ड्राई है। अगर सुबह आप उठते हैं और तेल तेल लग रहा है, तो आपकी स्किन ऑयली है।
0: तो जैसे सबसे सरल है सामान्य त्वचा, जो नॉर्मल स्किन है, उसकी देखभाल करना।
1: जी
0: है ना,
1: बिल्कुल।
0: और जैसे अभी बरसात के मौसम में, ऐसे तो हम लोग साल भर अपनी त्वचा की देखभाल करते हैं, लेकिन बरसात का मौसम थोड़ा सा इन्फेक्शन का मौसम रहता है,
1: बिल्कुल,
0: और हवा में नमी भी रहती है,
1: जी,
0: और थोड़ा सा उमस है, तो इन सब का असर चेहरे पर
1: आता है,
0: तो इन सब का असर तो चेहरे पर पड़ता ही है।
1: बहुत ज्यादा पड़ता है, इस समय हमारी स्किन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, वो चाहे वो किसी तरह की भी स्किन हो, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो ड्राई हो, चाहे तेली त्वचा हो, जो भी स्किन होती है इस मौसम में, देखिएगा भी बहुत गोरे भी हैं लोग, तो उनकी स्किन भी काली पड़ने लगती है, क्योंकि इस समय इन्फेक्शन का डर बहुत बढ़ जाता है। और इसलिए मैं अपनी बहनों को ये सलाह दूंगी कि इस मौसम में थोड़ा अपने आप को बचाएं, और बाहर जब भी वो निकलती हैं और सनस्क्रीन लोशन का इस्तेमाल करें।
0: अच्छा।
1: और जब घर पर वो आती हैं, तो आते ही अपना मुंह धो लें, और कोई भी प्रोडक्ट जो बाहर की धूल जो भी है वो आपकी निकल जाती है और आपकी स्किन ठीक रहती है। अगर क्लींजिंग मिल्क है आपके घर में, तो उससे आप पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो घबराना नहीं है, घर में सादे पानी से भी आप मुंह धो सकते हैं। और जब भी आप बाहर से आते हैं, आपको अगर पसीना है, तो पसीने पर जल्दी मुंह ना धोएं, पसीना पोंछ लें अच्छी तरह।
0: अच्छा।
1: उसको थोड़ा सा ड्राई होने दें,
0: मतलब पसीना सूखने दें। अच्छा।
1: उसको जब पसीना सूख जाए तब आप उसको धोएं, नहीं तो पसीने पर अगर आप धो लेते हैं तो देखिएगा छोटे छोटे दाने आपके चेहरे पर निकल जाते हैं।
0: मतलब बरसात में चेहरे को धोने के लिए भी एक सावधानी ये है कि अगर आप बाहर से आ रही हैं और आपके चेहरे में पसीना है तो पहले उसको सूखने दें,
1: सूखने दें,
0: उसके बाद धोएं।
1: जी जी जी
0: मतलब बहुत बार होता है ना कि हम लोग हड़बड़ी में
1: हड़बड़ी में आते हैं,
0: चेहरा
1: धो लेते हैं तो उससे भी छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं।
0: गर्मी लग रही होती है, परेशानी
1: होती है, तो इसलिए हम लोग जल्दी
0: पानी लगा लेते हैं। ये नहीं करना,
1: ये नहीं करना है। इस समय इन सब चीजों से बचना है और खान पीन पर भी बचना है, और पानी जितना ज्यादा हो सके आप पीजिए। हाँ, और जैसे कई बहनें हमारी हैं,
0: जैसे अरुणा जी अभी आपने कहा कि खान पान और पानी पीने पर ज्यादा ध्यान दें, तो स्किन को हमेशा डिहाइड्रेटेड रखने के लिए खाना पीना और पानी पीना किस तरह से जरूरी है, कितनी मात्रा में पानी चाहिए, और फल सब्जी या फिर जो हमारा जो खान पान है उस पर कैसे ध्यान देना चाहिए?
1: पहले पानी पर ध्यान देना चाहिए, पानी बहुत ज्यादा पिएं और ऑयली फूड से बचें।
0: तलाब
1: जो हम लोग तला भुना समोसे वगैरह बाहर का भी बहुत ज्यादा खाते हैं हम लोग, बर्गर खा लिए, चाउमीन, पनीर चिल्ली खा लिए, ये सब चीजों से भी बचना पड़ता है। और अपना भोजन जो आप घर पे भी बना रहे हैं तो कम मसालों में बनाएं। कई घरों में देखते हैं कि बहुत ज्यादा मसाले डाले जाते हैं और उससे भी हमारी स्किन पर बहुत बुरा असर पड़ता
0: है,
1: और शरीर तो खराब होता ही है और हमारी स्किन जो ऊपर दिखती है, हमारा चेहरा, उससे उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। इसलिए इन सब चीजों से बचना चाहिए।
0: तो श्रोता बहनों, आप लोगों ने सुना कि हम तो सामान्य रूप से बाहर से देखभाल करते हैं अपनी त्वचा की, सफाई किया, मॉइस्चराइजर लगाया, थोड़ा मेकअप किया, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए। विशेषकर घर का बना खाएं, सादा खाएं और पानी उचित मात्रा में पिए, ये हमारी त्वचा को एक तरह से डिहाइड्रेटेड रखने में मदद करती है।
1: जी जी। और मैं कुछ अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि जो बहनें पार्लर नहीं जाती हैं,
0: जी,
1: तो अपनी किचन में ही रहकर अपनी खूबसूरती को निखार सकती हैं।
0: किचन में जो भी हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं,
1: हाँ,
0: कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के विषय में आप बताइए जिनसे महिलाएं अपनी त्वचा की देखभाल कर सकें।
1: हाँ, देखिए, सबसे पहले तो हम जब टमाटर ही काटते हैं, सब्जी काटते हैं, तो टमाटर का ऊपरा हिस्सा हम छोड़ देते हैं।
0: जी।
1: तो मैं अपनी बहनों से ये बोलना चाहूंगी, उसे वेस्ट मत करो। आप उसी एक पीस को लेकर अपने पूरे चेहरे पर, गर्दन पर, जितना भी पोर्शन आपका खाली है वहाँ आप उसे रब कर लीजिए, उसका रस लगेगा। 10 मिनट उसको छोड़ के आप सादे पानी से धो लीजिए, फिर आप देखिएगा पार्लर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: अच्छा।
1: और मैडम, मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि पहले के लोग थे पार्लर नहीं जाते थे।
0: जी।
1: घर में मैंने अपनी मदर इन लॉ को ही देखा है कि वो जब दूध का पतीला खाली होता था तो उसी में चोकर डाल के पूरी मलाई साइडों से निकाल के और पूरे चेहरे पर लगाती, अपने हाथों पैरों पर लगाती, और सही बात है, उनकी स्किन इतनी सॉफ्ट और इतनी अच्छी थी कि मुझे देख अब मैं भी करने लगी हूँ वही।
0: जैसे आपने बताया कि वो एक तरह से उपटन हुआ,
1: उपटन हुआ।
0: तो जब उपटन की बात चली है तो कितने तरह के उपटन होते हैं, कैसे उनको बनाया जा सकता है और उनका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, ये भी हमारी बहनों को आप बता दीजिए।
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो सबसे पहले तो यही बोलूंगी कि मेरी आप मदर इन लॉ का नुस्खा आजमाई है क्योंकि वो बहुत अच्छा है। बड़े लोग जो चीज सिखा के जाते हैं कुछ अच्छा ही सिखा के जाते हैं। और बाकी घर पे आप रहते हुए जैसे बेसन है उसमें थोड़ी सी आप हल्दी मिला लीजिए, 2-4 बूंद आप नींबू के मिला लीजिए और मलाई या दूध डाल लीजिए, उसका एक पेस्ट तैयार करके आप अपनी पूरी बॉडी पर लगा सकते हैं। पर 10-15 मिनट के बाद उसे धीरे धीरे रब करके उसे हटाइए। उससे आपकी स्किन तो अच्छी होती है और स्किन पर जब छोटे छोटे रोएं भी होते हैं वो भी धीरे धीरे वो खत्म हो जाते हैं। आपकी स्किन नीट एंड क्लीन हो जाती है, हमारी त्वचा,
0: मतलब जो अनवांटेड बाल है वो निकल जाते
1: वो
0: हैं,
1: वो भी निकल जाते
0: हैं। इससे तो मतलब जो माने जो स्किन है वो और थोड़ा सा
1: निखर जाती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बाल रहने पर हमारी स्किन काली लगती है तो उससे और साफ हो जाती है। धीरे धीरे आप देखिएगा कि बिल्कुल वो बाल साफ हो गए। तो इसलिए मैं अपनी बहनों को ये भी कहूंगी कि दही तो आपकी किचन में रहती है, और उसको थोड़ा सा उसमें शहद मिलाएं, 1 चम्मच दही, 1/2 चम्मच आप शहद मिला के उसका पैक बनाएं और अपने पूरे चेहरे पर लगाएं, गर्दन पर भी। इससे क्या होगा, आपकी स्किन तो ठीक होगी, आपको जल्दी झुर्रियां भी नहीं पड़ेंगी। बहुत अच्छा हमारी स्किन के लिए वो पैक है जो हम घर पर बना सकते हैं।
0: हमने बात किया उपटन और पैक, तो किस सिक्वेंस में इसका प्रयोग करना चाहिए? सबसे पहले त्वचा में क्या लगाना चाहिए, उसके बाद क्या लगाना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए। क्योंकि हम लोग जैसे पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं कि
1: जी जी
0: सफाई करने के बाद स्किन के पोर्स थोड़ा खुल जाते हैं।
1: हाँ जी हाँ जी, पोर्स खुल जाते हैं।
0: तो इसको थोड़ा सिलसिलेवार ढंग से बता दीजिए कि पहले स्किन को साफ करें, फिर क्या करें।
1: नहीं, सबसे पहले आप अपने चेहरे को साफ कर लें, किसी तरह की धूल मिट्टी ना रहे,
0: मतलब नॉर्मल वाटर,
1: नॉर्मल वाटर से
0: जी,
1: नॉर्मल पानी से आप अपनी त्वचा को धो लें। धोने के बाद आपको जो भी,
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर आंगन के तहत भेंट वार्ता। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। खुशी पलों में श्रोताओं सुनेंगे आकाशवाणी रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार शाम के 6 बजे।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। इनमें झारखंड के पिस्का और मुरी रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा और अन्य गणमान्य लोगों ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पिस्का रेलवे स्टेशन के लोकार्पण समारोह में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जिसमें मानसून की स्थिति, सिंचाई परियोजनाओं और किसान समृद्धि योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। धनबाद के निरसा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में 10वीं के छात्र के साथ रैगिंग और बेरहमी से मारपीट के बाद आज परिजनों ने स्कूल गेट पर जोरदार हंगामा किया। सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाते हुए लोग धरने पर बैठ गए। बीडीओ इंद्रलाल ओहदार ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। खूंटी में आपराधिक और नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि पिछले 2 महीनों में हत्या, लूट और रंगदारी के मामलों में 20 अपराधियों को जेल भेजा गया है। इस दौरान 15 पिस्टल, 48 कारतूस और नक्सली संगठन पीएलएफआई के पर्चे बरामद किए गए हैं। सिमडेगा जिले के विभिन्न थानों में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ विशेष छापेमारी अभियान चलाया है। पिछले एक सप्ताह में 281 किलो जावा महुआ और महुआ शराब नष्ट की गई। पुलिस ने अवैध शराब बनाने वाली भट्टियों को भी ध्वस्त कर इसे अवैध कारोबार पर कड़ा अंकुश लगाया है। रांची के दीपाटोली मिलिट्री स्टेशन स्थित क्रिकेटा ऑडिटोरियम में कल पूर्वाहन 10 बजे 135वें दुरंद कप 2026 के ट्रॉफी शोकेस का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर खेल मंत्री सुदिव्य कुमार मुख्य अतिथि और मेजर जनरल सज्जन सिंह मान विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:03 हो चुके हैं। हम कुछ ही पलों में लेकर हाजिर हैं ग्रामीणों और कृषकों को संबोधित कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: वो मिट्टी की जांच कराना उचित नहीं मानते। वो समझते हैं कि पिछले वर्ष जो हमने हुआ था, इस बार इतना पैदा हुआ था, इस वर्ष कुछ कम हुआ, अगले साल थोड़ा सा बढ़ा तो अच्छा है। तो यह ख्याल दिल से निकाल दें। आप अपने खेतों से और भी बेहतर उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि आपको जानकारी का अभाव है। आपको जब तक से यह पता नहीं होगा कि आपकी भूमि किस फसल के लिए उपयुक्त है, तब तक आप बेहतर पैदावार कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए बेहतर पैदावार जो चूँकि आप मेहनत करते हैं, आपका श्रम लगता है, आपकी पूंजी लगती है, आपका समय लगता है, तो उसका लाभ आप लें, इसके लिए आवश्यक है कि आप सर्वप्रथम मिट्टी की जांच कराएं। पोषक तत्वों का अधिकांश भाग पौधे मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं, और जब इन तत्वों की कमी हो जाती है तो उसे खाद एवं उर्वरक डालकर पूरा करते हैं। सभी मिट्टियां एक जैसी नहीं होती हैं, उनकी उर्वरता का अपना स्तर होता है तथा उनके गुण दोष अलग होते हैं। इसलिए फसल के साथ मिट्टी के अनुसार भी उर्वरक का उपयोग और उनकी मात्रा बदल सकती है। इसलिए किसान भाई, फसल लेने से पहले मिट्टी की जांच आवश्यक है।
1: किसान भाइयों, मिट्टी की जांच दो समस्याओं के समाधान के लिए की जाती है। प्रथम तो ये है कि फसल एवं वृक्षों के खाद की सिफारिश को देखते हुए, दूसरा आम्लिक या क्षारीय मिट्टी में सुधार के लिए। और मिट्टी की जांच से यह पता चल जाता है कि भूमि में कौन सा तत्व उचित अधिक मात्रा में है या कम मात्रा में है। यदि आप बिना मिट्टी जांच कराए खाद डालते हैं तो संभव है कि खेत में आवश्यकता से अधिक या कम खाद डाल दी जाए, और आवश्यकता से कम खाद डालने पर कम उपज मिलेगी तथा अधिक खाद डालने पर खाद का गलत उपयोग होगा और पैसा भी बेकार जाएगा। यह भी हो सकता है कि आप उन पोषक तत्वों को कम मात्रा में दे रहे हैं जिसकी आवश्यकता अधिक है, और ऐसे तत्वों जिनकी आवश्यकता कम है तो आप अधिक मात्रा में उसे उपयोग कर दे रहे हैं। तो खाद व्यवहार के संतुलित एवं उचित मात्रा क्या हो, इसकी जानकारी भी नहीं होने से आपकी उत्पादन क्षमता में गिरावट आ जाएगी।
0: और इसके सही जानकारी के लिए मिट्टी जांच जरूरी है। फलदार पौधों की जड़ मिट्टी में बहुत नीचे तक जाती है, यह जानने के लिए जिस खेत में आप फल के पेड़ लगाना चाहते हैं उसमें पेड़ों की जड़ों को बढ़ने एवं पूर्ण रूप से भोजन पहुंचाने की क्षमता है या नहीं, मिट्टी की जांच जरूरी है।
1: और कार्यक्रम में हम बातें करते हैं, बकरी पालन बहुत उत्तम माध्यम है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। प्रदीप जी,
0: ग्रामीणों का ये ATM भी है।
1: हाँ,
0: इसलिए बकरी पालन जो व्यवसाय है इसको अपना करके किसान भाई अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सकते हैं। इसके लिए कम पूंजी में, कम जगह में इसे आसानी से किया जा सकता है। पहले शुरुआत छोटे पैमाने पर करें, और जब आप इसकी खामियों को अच्छी तरह जान जाएं, उसके बाद आप इसे बड़े स्तर पर भी कर सकते हैं, काफ़ी व्यावसायिक स्तर पर कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे युवा किसान भी हैं हमारे जो प्रारंभ में स्टार्ट किए थे, एक दो बकरी से स्टार्ट किए थे, लेकिन आज बहुत अच्छा बिजनेस उनका चल रहा है और बहुत अच्छा लाभ कमा रहे हैं, और अपने मेहनत के दम पर उन्होंने अपनी तकदीर बदली है।
1: आपकी खेती अगर टूट रही है, आप बहुत बुरी हालत में हैं, तो उस समय भी बकरियां काम दे जाती हैं। बकरियों के लिए आपको ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता अलग से नहीं पड़ती है,
0: क्योंकि छोटे बकरी भी आसानी से बाजार में उपलब्ध होते हैं, आसपास गांव घर में भी उपलब्ध होते हैं, आप उससे भी शुरुआत कर सकते हैं। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी बकरी खरीदें, बहुत ज़्यादा पैसा लगाएं, आप 1,000-2,000 से भी अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
1: निश्चित।
0: तो उसके लिए घर का जूठन भी उनको काम आएगा, आपके खेत खलिहानों में वो चर करके भी बड़ी हो जाएंगी। तो कहने का मतलब है कि कम खर्च में ज़्यादा मुनाफा अगर देने वाली अगर कोई है तो वो बकरी ही है।
1: बिल्कुल सही।
0: और एक बकरी अपने जीवन काल में, कोई हालांकि उसकी निर्धारित सीमा नहीं है, लेकिन ऐसा अक्सर देखा गया है कि 8-10 बार वह
1: गाभिन होती है,
0: गर्भवती होती है, तो 8-10 बार वो बच्चों को जन्म देती है। और खासकर जो हमारा लोकल यहाँ का जो ब्रीड है, जो काफी मशहूर भी है, ब्लैक बंगाल की बकरी कम से कम 10-12 ब्यांत तक देती है बच्चे। और हर बार में देखिएगा, शुरू में एक बार में एक बच्चा कभी कभी दो

0: दो बच्चे, कभी कभी तीन तीन बच्चे, यहाँ तक कि चार चार बच्चे एक एक बार में देती है, लेकिन दो का तो औसत अधिकतर बना रहता है।
1: अधिकतर बना है, मतलब एक बार में दो बच्चा तो देना,
0: एक बार में दो बच्चा देना है। और इन लोगों का जो कार्यकाल होता है वो 6.5 महीने का होता है, ऐसे हम लोग 1 साल बोलते हैं, लेकिन अगर आप टाइम देखिएगा तो 13 महीने का समय लगता है। तो 13 महीने में आप दो बार, 1 साल 1 महीने में आप दो बार इससे बच्चे प्राप्त करते हैं। इसमें होता क्या है कि मृत्यु दर जो है बकरी पालन में, छोटे बच्चों में मृत्यु दर अधिक, कारण है कि जो ब्लैक बंगाल हमारी बकरी है उसमें दूध की मात्रा जो है, दूध जो देने की जो क्षमता है वो अन्य बकरियों से कम होती है। तो उसके लिए जो है कि जब आपका बच्चा छोटा है तो उस समय आपको 1 महीने जो है, जब तक से वो अपने ये पर चरने फिरने के काबिल नहीं बनता तब तक 1 महीने आपको देख रेख की आवश्यकता होती है। अगर उसको 15 दिन तक अगर आप माँ के दूध से अगर उसका पेट नहीं भर रहा है तो आप गाय का दूध भी उसके पिला के पाल सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं।
1: और कम पूंजी में ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसकी शुरुआत की जा सकती है किसान भाइयों। और रही बात रोग व्याधियों की, तो उसके लिए हमारे किसान भाई अपने पशु प्रखंड पदाधिकारी जो हैं पशुपालन, उनसे संपर्क कर सकते हैं।
0: और गांव में जो पहले से बकरी पाल रहे हैं तो उनको खुद पता होता है कि बकरी में कौन सी बीमारी हो रही है, तो उसका उपचार वो लोग करते हैं।
1: किसान भाइयों, इसी के साथ अब अपने भाई संतोष कुमार
0: और प्रदीप कुमार सिंह को दें इजाजत, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

0: तमाम किसान भाई बहनों को प्रदीप का नमस्कार।
1: आपको भी संतोष कुमार की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार प्रदीप जी।
0: अपने पर्यावरण को हमको बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, अपने आप को स्वस्थ भी रखना है, तो जितना भी आप केमिकल चीजों से दूर रहेंगे उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे
1: जी।
0: बुजुर्ग हुआ करते थे 100 साल जीते थे, उससे भी अधिक जीते थे, उसके पीछे कारण क्या था? यही कारण था कि वो मिलावट के चीज़ों से परहेज करते थे, शुद्ध चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। अभी धीरे धीरे चूँकि आधुनिक दौर आते गया, जमाना बदलते गया, लोगों के रहन सहन खान पान जो दिनचर्या है उसमें भी काफ़ी बदलाव
1: आ चुका,
0: तो इसी का जो दुष्परिणाम है कई तरह की समय से पहले बीमारियां, बच्चों का आँख खराब हो जाना
1: जी,
0: कई तरह के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आदमी
1: घिरा
0: हुआ है, तो उसके जिम्मेवार हम स्वयं हैं। इसका दोष किसी अन्य को न दें तो ज्यादा बेहतर है। तो सबसे
1: और
0: पहले
1: जब बात हो रही है प्राकृतिक की, तो आज जीवामृत की बात हम करेंगे।
0: आपने बहुत अच्छा आज विषय चुना है कि जब अगर हम बात कर रहे हैं तो जीवामृत, आपने अच्छा विषय को चुना है। तो यह जो है जीवामृत बनाने की विधि क्या है और उसका उपयोग हमारे किसान भाई कैसे उसे अपने खेतों में करें?
1: जी बिल्कुल, तो हमारे किसान भाई को हम यह भी बताते चलें कि हरित क्रांति के बाद ही भारतीय खेती में जिस प्रकार रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग हुआ है उसने हमारी भूमि की संरचना ही बदल करके रख दी है और आज बहुत ही तेजी से खेती योग्य भूमि बंजर भूमि में बदलती जा रही है और खेतों में लगातार रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसल की पैदावार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो हमारे किसान भाई हम यह बताते चलें कि अगर हम जीवामृत वगैरह का प्रयोग करते हैं, पारंपरिक रूप से खेती करते हैं, तो हम फसल को भी गुणवत्तापूर्ण उत्पादित कर सकते हैं और मृदा को भी सुधार सकते हैं।
0: संतोष जी, एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो आपने बात बताई, इन जो सभी समस्याओं का समाधान के लिए हमारे किसान भाइयों के पास एकमात्र विकल्प है जैविक खेती को बढ़ावा देना, और यह समय की मांग भी है।
1: मांग भी है बिल्कुल,
0: और जीवामृत एक अत्यधिक प्रभावशाली जैविक खाद है जिसे गोबर के साथ पानी में कई और पदार्थ मिलाकर तैयार किया जाता है जो पौधों की वृद्धि और विकास में सहायक है। यह पौधों की विभिन्न रोगाणुओं से तो सुरक्षा करता ही है और साथ ही साथ जो पौधे स्वस्थ बने रहें इसका भी वह इसमें मदद करता है। जीवामृत दो प्रकार के होते हैं, पहला तरल जीवामृत और दूसरा घन जीवामृत। तरल जो जीवामृत है वह उसके बनाने की जो विधि है उसके लिए जो है आपको देसी गाय का 10 किलो गोबर और 10 लीटर गोमूत्र, पुराना सड़ा हुआ गुड़ 1 किलोग्राम और किसी भी प्रकार की दाल का 1 किलो बेसन, जैसे मूंग हो, उड़द हो, अरहर हो, चना हो, कोई भी बेसन हो, आप उसका 1 किलो उसका प्रयोग कर सकते हैं, और बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी 1 किलोग्राम, जिसे सजीव मिट्टी भी कहते हैं। अगर पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी न मिले तो खेत की मिट्टी प्रयोग की जा सकती है जिसमें कीटनाशक न डाले गए हों, इसका बात का भी ध्यान रखना है। और एक जो बड़ा सा पात्र जिसे हम ड्रम कहते हैं, लगभग 200 लीटर
1: जी।
0: सभी को इकट्ठा करके सबसे पहले 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 10 लीटर देसी गोमूत्र, 1 किलोग्राम पुराना सड़ा हुआ गुड़, 4 लीटर गन्ने का रस, 1 किलोग्राम किसी भी दाल का बेसन, 1 किलोग्राम सजीव मिट्टी एवं 200 लीटर पानी को एक मिट्टी के मटके या प्लास्टिक के ड्रम में डालकर किसी डंडे की सहायता से इस मिश्रण को अच्छी तरह हिलाएं, जिससे यह पूरी तरह से आपस में मिल जाए। अब इस मटके या ड्रम को ढककर छांव में रख दें। इस मिश्रण पर सीधी धूप नहीं पड़नी चाहिए, इसका आप विशेष ख्याल रखें।
1: जी हाँ किसान भाइयों, और अगले दिन इस मिश्रण को फिर से किसी लकड़ी की सहायता से हिलाएं, 6 से 7 दिनों तक इसी कार्य को आप करते रहें, लगभग 7 दिन के बाद जीवामृत उपयोग के लिए बनकर तैयार हो जाता है और यह 200 लीटर जीवामृत 1 एकड़ भूमि के लिए पर्याप्त माना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार देशी गाय कि 1 ग्राम गोबर में लगभग 500 करोड़ जीवाणु होते हैं। जब हम जीवामृत बनाने के लिए 200 लीटर पानी में डालते हैं, 200 लीटर पानी में 10 किलो गोबर डालते हैं तो लगभग 50 लाख करोड़ जीवाणु इस पानी में डालते हैं, और जीवामृत बनते समय हर 20 मिनट में इनकी संख्या दुगुनी हो जाती है। और जीवामृत हम 7 दिन तक किण्वन के लिए रखते हैं तो उनकी संख्या अरबों खरबों में हो जाती है। और जब हम जीवामृत भूमि में पानी के साथ डालते हैं तब भूमि में ये सूक्ष्म जीव अपने कार्य में लग जाते हैं तथा पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं।
0: अब हम बात करेंगे तरल जीवामृत को कैसे प्रयोग हम लोग करें।
1: जी,
0: तो तरल जो जीवामृत को कई प्रकार से अपने खेतों में किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है फसल में पानी के साथ जीवामृत देना। जिस खेत में आप सिंचाई कर रहे हैं उस खेत के लिए पानी ले जाने वाली नाली के ऊपर ड्रम को रखकर बल्ब की सहायता से जीवामृत पानी में डालें। धार इतनी रखें कि खेत में पानी लगने के साथ ही ड्रम खाली हो जाए। जीवामृत पानी में मिलाकर अपने आप फसलों की जड़ों तक पहुंचेगा। इस प्रकार जीवामृत 21 दिनों के अंतराल पर आप फसलों को दे सकते हैं। इसके अलावा खेत की जुताई के समय भी जीवामृत को मिट्टी पर भी छिड़का जा सकता है। किसान भाई इस तरल जीवामृत का फसलों पर छिड़काव भी कर सकते हैं। फलदार पेड़ों के लिए दोपहर 12 बजे के समय पेड़ों की जो छाया पड़ती है उस छाया के बाहर की कक्षा के पास 1 से 1.5 फुट पर चारों तरफ से नाली बनाकर प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत महीने में 2 बार पानी के साथ दें। जीवामृत छिड़कते समय भूमि में नमी होनी चाहिए, इसका आप खास ख्याल रखें। जीवामृत का प्रयोग किसान भाई गेहूं, मक्का, बाजरा, धान, मूंग, उड़द, कपास, सरसों, मिर्च, टमाटर, बैंगन, प्याज, मूली, गाजर आदि फसलों के साथ अन्य सभी प्रकार के फलदार पेड़ों में भी कर सकते हैं।
1: वाह। और घन जीवामृत की अगर हम बातें करें किसान भाइयों, तो घन जीवामृत बनाने के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है हम आपको बताते चले। 100 किलोग्राम देशी गाय का गोबर, 5 लीटर देशी गोमूत्र, 2 किलो गुड़, 2 किलोग्राम दाल का बेसन, 1 किलोग्राम सजीव मिट्टी, ये सब सामग्री एकत्रित करके सबसे पहले 100 किलोग्राम देशी गाय का गोबर लें आप और उसमें 2 किलोग्राम गुड़ तथा 2 किलोग्राम दाल का बेसन और

0: एक किलोग्राम सजीव मिट्टी डालकर अच्छी तरह मिश्रण तैयार कर लें और इस मिश्रण में थोड़ा थोड़ा गौमूत्र डालकर उसे अच्छी तरह मिलाकर गूंथ लें ताकि उसका घन जीवामृत बन जाए। अब इस गीले घन जीवामृत को छांव में अच्छी तरह फैलाकर सुखा लें और सूखने के बाद इसको लकड़ी से ठोक कर बारीक कर लें और इसे बोरों से फिर इसे बोरों में भरकर छांव में रख दें। इस प्रकार बने घन जीवामृत को आप 6 महीने तक भंडारण भी कर सकते हैं।
1: तो घन जीवामृत का प्रयोग कैसे करना है इसकी भी जानकारी आपको जरूरी है। तो घन जीवामृत को हम किसी भी समय भूमि में डाल सकते हैं। खेत की जुताई के बाद इसका प्रयोग सबसे अच्छा होता है। अगर आप खेत की जुताई कर रहे हैं उस समय आप इसका प्रयोग करें। जब हम भूमि में इसे डालते हैं तो नमी मिलते ही घन जीवामृत में मौजूद सूक्ष्म जीवाणु कोष तोड़कर पुनः अपने कार्य में लग जाते हैं। किसी भी फसल की बुआई के समय प्रति एकड़ 100 किलोग्राम जैविक खाद और 20 किलोग्राम घन जीवामृत का प्रयोग करें। इससे बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके प्रयोग से आप रासायनिक खादों से भी ज़्यादा उपज ले सकते हैं। बीज बोते समय बोने का जो औजार है उसमें 2 नालियों का बाउल लगाएं, एक बाउल से बीज बोएं और दूसरे बाउल से यह जैविक खाद और घन जीवामृत का मिश्रण डालें। आपके इलाके में बीज बोने की जो भी विधि हो उससे ही इन दोनों की बुआई करें।
0: जी बिल्कुल किसान भाइयों, और ये तो बातें हुई प्रदीप जी आज हमारे किसान भाइयों के साथ जीवामृत की। और किसान भाइयों, आज हमारे साथ हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश कुमार जी, जिनसे आज विस्तृत बातें होगी गर्मा सब्जियों की खेती में देख रेख की। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: नमस्कार किसान बंधुओं।
0: सर्वप्रथम तो हमारे किसान भाई को बताया जाए कि गर्मा सब्जियां अभी जो जो लगा रहे हैं वो कौन कौन सी सब्जियां हैं।
2: जैसा कि हमारे पलामू क्षेत्र में देखा गया है कि गर्मा के समय में किसान जो है मैक्सिमम किसान बृहद पैमाने पर लतरवर्गीय फसलों की खेती सब्जी के रूप में करते हैं और बहुत विगत वर्षों से और करते आ भी रहे हैं और अच्छे अच्छे प्रभेद का उत्पादन भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ इन सब्जियों के उत्पादन में किन किन तकनीकी पहलुओं पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए उस पर मैं कुछ किसानों को अवगत कराना चाहूँगा। किसान बंधुओं, जैसा जानते हैं कि हम सभी लोग जो लतरवर्गीय फसल की खेती करते हैं तो उनमें विशेष तौर पर हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने जो प्रभेद का चुनाव है, जैसे यहाँ खीरा भी है, लौकी है, आपका झिंगी है, नेनुआ है, करेला है
0: जी,
2: बहुत सारा जो लतरवर्गीय जो है हमारे किसान कर रहे हैं। तो इसमें किसान को मैं बोलूँगा कि ये जो आप जो प्रभेद का चुनाव जो है अच्छे मतलब अच्छा करें और साथ साथ बीज उपचार करने के पश्चात ही तैयार खेत पर लगाएं। तो इस संबंध में मैं किसानों को ये कहना चाहूँगा कि सर्वप्रथम जहाँ पर भी आप खेती के लिए सोचे हैं तो जो किसान तो जनवरी के अंतिम सप्ताह में जो बिजरा गिरा चुके होंगे जो पोली बैग उग में, तो लोग तो कुछ है 15-20 दिन 1 महीना आघात फसल जो पाएंगे तो उनको उत्पादन कम मिलने के पश्चात भी ज़्यादा उनको मुनाफा होगा
0: जी।
2: तो और वैसे किसान जो अभी लगाने के लिए सोच रहे हैं तो उनको जो है किसान जो है जो प्रभेद उन्हें उचित लगे चाहे बाजार में और जो लगाते आ रहे हैं तो उसमें मेन ये है कि जो आप बीज ले आ रहे हैं तो बीज को पहले उपचारित करें
0: जी।
2: उपचारित करने के लिए जो दवा आप लोग सामान्य तौर पर कार्बेंडाजिम बेविस्टिन के नाम से जो जानते हैं हम लोग, उसका 2 ग्राम प्रति किलो बीज इसको ले और उसको पहले 1 किलो अगर बीज रहता है तो उसमें 2 ग्राम पाउडर डालना है। आप पाउडर से उसको उपचारित करने के बाद उसको ठंडे जगह पर 15-20 मिनट के लिए छोड़ देना है। तत्पश्चात उसको जो है तैयार प्लॉट में जो आप प्लॉट जहाँ तैयार किए हैं उसको छोटा छोटा पिट बनाकर उसमें 4 से 5 बीज जो है एक पिट पर लगाएं। और ये जो बीज जो आप लगा रहे हैं तो बीज को लगाने के पश्चात उसको जो है और आपको विशेष ध्यान देनी है कि अगर आप उस बीज को जरा भुरभुरे गोबर के खाद से ही उसको ढके तो ज़्यादा अच्छा होगा, जर्मिनेशन अच्छा होगा। ये वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग करें, अन्य खादों के रूप में जैसे कि हम लोग फसल के रूप में 100-50 का जो हम लोग उपयोग करते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, मतलब 100 kg नाइट्रोजन, 50 kg फास्फोरस, 50 kg पोटास प्रति हेक्टेयर। तो इसमें अगर हम लोग बात करें कि एकड़ के दर से देखा जाए तो हमारा जो है 40 kg आपका ये आ जाता है नाइट्रोजन, जिसको हिंदी में आप लोग हम लोग नाइट्रोजन यूरिया के रूप में हम लोग डालते हैं, DAP के रूप में डालते हैं। उसके पश्चात जो है हमारा ये जो है आपका 15 kg जो है आपका 20 kg फास्फोरस 20 केजी, पोटास जो है प्रति एकड़ के दर से डालते हैं। इसको डालने के लिए भी आपका एक सावधानी ये बरतना है कि किसान बंधु जो है यूरिया खाद जो है जो नित्रजन है उसकी पूरी मात्रा, जैसे हमने 100 केजी बोला तो 100 केजी को पूरी मात्रा को प्रति हेक्टेयर के दर से जो करते हैं, तो इसको कम खेत में पहले डाल के अच्छा से मिलाने के पश्चात पीट बनाए। अगर थोड़ा चाहते हैं कि नहीं क्वांटिटी हमारे पास कम है तो उसको पीट में ही उपयोग करें। प्रति पीट जो है आप जो है उसका उपयोग करेंगे तो इससे आपका खाद का मात्रा भी कम लगेगा और किसान को वहाँ भी जो आप इनपुट के रूप में जो लागत लगाते हैं उसमें बचाव आएगा। उसके बाद है जैसे खाद को अच्छा डालने के बाद, ये करने के बाद पौधे को जो है दूरी मेंटेन करना जरूरी है। दूरी मेंटेन करने के लिए मैं प्रायः किसानों को बोलता हूँ कि अगर आपका दूरी अच्छा रहेगा, जैसे कि अब लतर वर्गीय में अब कद्दू है, नेनुआ है, झिंगी है, तो लतर के बढ़ाव के अनुसार, जैसे ज़्यादा बढ़ने वाला लतर है तो उसको 2 से 2.5 मीटर रखिए, कम बढ़ने वाला है तो 1 से 1.25 मीटर रखिए। तो लतर के बढ़ोतरी के अनुसार ही अपना जो है आप दूरी को निर्धारित करें। तो जैसे लौकी लगाते हैं तो लौकी में किसान बंधु भी क्या करते हैं कि बहुत नज़दीक नज़दीक लगाने से क्या होता है कि पौधे का बढ़वार अच्छा नहीं होता है और बहुत ज़्यादा घना भी हो जाता है, जिसके चलते रोग व्याधि का आक्रमण ज़्यादा होने लगता है। तो उस परिप्रेक्ष्य में मैं कहूँगा कि लतर का बढ़ते हुए देखते हो, जैसे कि अब कोहड़ा है, लौकी है, तो इसको आपको लगाना है तो 2 से 2.5 मीटर पर लगाइए। नेनुआ है, करेला है, खीरा है, तो इस सबको 1 मीटर से 1.25 मीटर की दूरी पर लगाइए। तो इस तरह आप लगाएंगे तो एक निर्धारित दूरी पर होने से पौधे का बढ़वार अच्छा होगा और कम बीज में ज़्यादा एरिया कवरेज होगा और आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बाद है कि जैसे लगाने के पश्चात बीमारी है और गर्मीकरण में खास तौर पर ये देखा गया कि पानी की समस्या बहुत अहम हमारे पलामू क्षेत्र में है, तो वैसे केस में किसानों को बोलूँगा कि जगह का चयन जो आप करते हैं उसको ऐसे जगह पर करें जो कि नहर नादी चाहे नाला उला के बगल में हो, जिसका कि पटवन आप सही ढंग से सही समय पर कर सकें। अन्यथा ज़्यादा एरिया लगा दिए और लगाने के पश्चात पानी नहीं है तो उसका बढ़ोत पौधे का कोई महत्व नहीं, ग्रोथ में नहीं मिलता है और अच्छा उत्पादन नहीं होता है। तो किसान जो है इन सब पहलुओं पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएंगे। और साथ साथ में अगर किसी तरह का फफूंद आ जाता है, अगर कीड़ा का आक्रमण होता है, तो इसमें इमिडाक्लोरोपीड दवा जो है 1 ml दवा 3 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगर फफूंद नासी है तो जो कार्बिंडाजिम आपने जो उपचार करने में लगाया था उसका जो है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर उसका छिड़काव करेंगे तो उससे आप निजात पा सकते हैं। हाँ, अगर पाउडरी मिल्ड है, देखेंगे कि उजला उजला पाउडर लग जाता है चाहे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो है हम सल्फेक्स दवा का उपयोग करते हैं, उसका जो है 2 ग्राम प्रति लीटर के पानी से डालेंगे तो वो जो है उसका छिड़काव करें तो आपका फसल अच्छा रहेगा और ज़्यादा इनकम होगा।
0: जी अच्छा, बात आती है चूंकि लतर वर्गीय सब्जियों की हो रही है तो मचान की बात आती है।
2: जी जी,
0: तो वो कितना कारगर साबित होता है?
2: हाँ, मचान अति आवश्यक है। होता क्या है कि लतर वर्गीय फसल का बढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है, जिससे पौधे में हवा का संचार और लोगों को आने जाने में लतर जो है टूटने का बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो वैसे में अगर किसान जो किसान एक ओपन फील्ड में लगाए हुए हैं और एक जो है कि मचान के रूप में लगाए हैं, तो मचान वाले पर अगर वो चढ़ाते हैं तो उनका पौधे का विकास उचित होता है और फल तोड़ने के भी प्रक्रिया में उनको बहुत सहूलियत होती है, जिससे कि अच्छा फल का जो है प्रॉपर वे में वो तोड़कर और बाजार भेज सकते हैं। और ये जो जमीन समतली समतल जमीन पर ओपन कंडीशन में ऐसी लगा हुआ है तो उसमें घुसने और आने जाने से लतर बर्बाद ज़्यादा होता है और फसल का जो विकास में बाधा आने से पौधा उपज जो है थोड़ा कम मिलता है।
0: इन सभी पहलुओं पर आपने विस्तृत जानकारियाँ साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, आज हमारे साथ हैं एक सफल किसान जो पलामू जिला के पाटन प्रखंड के हिसरा बरवाडी गांव से आते हैं और ये किसान भाई ने गर्मा सब्जियों की खेती कर रखी है, गर्मा अन्य जो फसलें हैं अनाज फसलें उसकी भी खेती कर रखी है। इसके साथ ही साथ ये बागवानी पर इनका विशेष बल रहता है। और आप हैं अजय कुमार मेहता, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
3: नमस्कार।
0: अभी आप गर्मा में किन किन सब्जियों की खेती कर रहे हैं?
3: नमस्कार, मैं अजय कुमार मेहता ग्राम हिसरा बरवाडी पाटन से हैं। अभी गर्मा फसल में हम लोग का है कद्दू है, करेली, झींगी, नेनुआ, खीरा, मिर्चा, सभी तरह का गर्मा फसल अभी लगा हुआ है।
0: अच्छा।
3: प्याज अभी और बरसाती फसल का भी तैयारी हो रहा है।
0: अच्छा, बरसाती की तैयारी अभी से शुरू कर दी?
3: जी जी, अब तैयारी हो गया।
0: उसके लिए क्या क्या तैयारियाँ की जा रही हैं?
3: जिससे खेत को जुताई हो गया, खेत एकदम सूख के तैयार है, उसके बाद हम लोग मेड़ बना देंगे, मेड़ में पानी डालेंगे, इसके बाद बीज को रोपाई करेंगे।
0: मेरा खेत किस प्रकार होना चाहिए बरसात की खेती के लिए?
3: खेत हमारे ढालू नुमा होना चाहिए, जिसमें पानी की जल जमाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि बरसात में जब अधिक बारिश होने के बाद जल जमाव हो जाता है जिसके पौधा का नुकसान हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ ढालू जमीन की ज़रूरत है, गर्मा बरसाती साग सब्जी लगाने के लिए।
0: और बरसाती साग सब्जियाँ में किसके किसके

0: विचार आपने किए हैं सब्जियों की?
1: जिसे बरसाती में भी हो गया, कद्दू हो गया, करेली हो गया, नेनुआ हो गया, खीरा हो गया, ये सब अभी बरसाती लगेंगे। जो अब वो हम लोग ई पर लगाते हैं, किसी भी पौधा को काट करके उसको झाल बना देते हैं, उसी पर उचड़ करके ऊपर फलेगा। गर्मा फसल में जो भी हम लोग उत्पादन होता है तो ज़मीन में भी फला रहता है, इसलिए कि वो ऊपर में जाएगा तो गर्मी बहुत ज़्यादा हीट होता है, इसके कारण वो फल में नुकसान होने लगता है। लेकिन बरसाती फसल में वो नहीं है, सब जो भी होगा उसको हम लोग बांस का, चाहे बांस तार में बांध कर उस पर हम लोग लतर को चढ़ा करके बरसाती फल को हम लोग लेते हैं।
0: अच्छा, और अब हम बागवानी की ओर लौटते हैं।
1: जी,
0: बागवानी में अभी आपने क्या क्या लगा रखा है?
1: जिसे अभी आम हम लोग लगाए हैं, अमरूद है, और अभी फल भी आ चुका है, आम में बहुत अच्छा फल है।
0: अच्छा,
1: और
0: आम की देख रेख कैसे कर रहे हैं अभी?
1: आम जैसे हम लोग का मंजर आया, उसके बाद हम लोग छिड़काव किए कीटनाशक का, और इसके बाद में हम लोग उसको दो बार किए, इसके बाद फल आना स्टार्ट हो गया तो उसको हम लोग छोड़ दिए, ज़्यादा दवा का यूज हम लोग नहीं किए।
0: कौन कौन से किस्म के आम हैं?
1: वो हम लोग इधर तो लोकल में हम लोग लंगड़ा और दशहरी के नाम से ही जाने जाते हैं, और मैंने ज़्यादा लंगड़ा का फल है।
0: और उसी को आपने लगाया है?
1: जी।
0: और खासकर खाद उर्वरक का व्यवहार क्या कर रहे हैं अभी आप?
1: खाद में हम लोग गोबर खाद का यूज कर रहे हैं पेड़ के नज़दीक भी, चाहे हम लोग साग सब्जी भी लगाते हैं तो बीज जहाँ लगाते हैं वहाँ हम लोग खाद पहले डाल देते हैं, गोबर खाद मिला कर के मिट्टी और गोबर खाद मिला करके इसके बाद बीज को डालेंगे वहाँ, और इससे पौधा भी जर्मिनेशन होने में भी बहुत जल्दी जर्मिनेशन होता है, क्योंकि मिट्टी वहाँ एकदम भुरभुरा हो जाता है, हार्ड मिट्टी नहीं रहता है, और जर्मिनेशन होने में पौधा का किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। इसलिए हम लोग वर्मी कंपोस्ट कहिए, चाहे केचुआ खाद कहिए, चाहे घरेलू खाद, उसी का यूज कर रहे हैं।
0: और आम के अतिरिक्त और कौन से पौधे हैं?
1: आम के अतिरिक्त तो ऐसे फिर तो काम के पौधे हैं, यही हैं, नींबू है, फिर अनार का भी कुछ पौधे हैं, और आम है ही, और केला था, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया इसके चलते नहीं हो पा रहा है।
0: केला की देखरेख कैसे कर रहे हैं अभी आप?
1: केला जैसे हम लोग लगा देते हैं, इसके बाद में फिर पानी उसके मेड़ के बना करके नज़दीक से पानी उसको दिया जा देते हैं, और 8 दिन 10 दिन पर पानी, बरसात में तो खैर पानी नहीं लेता है, लेकिन गर्मी में 8 से 10 दिन के अंदर पानी 2 बार देना ही पड़ता है।
0: और अभी गर्मी के दिन में?
1: गर्मी के दिन में 8 दिन में 2 बार पानी देते हैं उसमें। गर्मी के दिन में जैसे हम लोग जिस नींबू का पौधा लगाए, अमरूद का लगाए, केला है, आम का है, उसमें हम लोग पानी मेढ़ बना देते हैं, और मेढ़ से पानी उसके अंदर हम लोग डालते रहते हैं, 8 दिन में 2 बार हम लोग पानी का देना पड़ता है, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी पलामू में पड़ रहा है, जिसके चलते फसल का नुकसान होने लगता है।
0: केले के हम अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करें, इसके लिए हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए?
1: केला का उत्पादन अधिक से अधिक करना है तो 10 फीट के अंदर दूरी 10-10 फीट पर लगाएं, उसमें कोड़ाई उड़ाई करके बर्मी कंपोस्ट खाद जहाँ से अभी है, कहीं से भी उपलब्ध, जो अपने घर में है हम लोग उपलब्ध करके बीच में डाल करके उसको हम लोग करें, और अच्छा उत्पादन होता है। सबसे अधिक केला पलामू में हम लोग का लोकल केला का मांग होता है सब्जी के लिए, जो कि बहुत अच्छा तरह से पैसा हम लोग को मिलता है, और इसमें किसान लगाते हैं और बहुत अच्छा तरह से लाभ भी ले रहे हैं।
0: आपने जो भी लगाया है सब सब्जी फसल की?
1: हाँ, हम जो भी लगाए हैं सब सब्जी फसल की।
0: कितने थान होगा केला
1: अभी? कम से कम 25 से 30 थान केला मेरा है।
0: अच्छा अच्छा, तो अभी उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं?
1: हाँ, अभी गर्मी में तो कुछ कम है, लेकिन ये गर्मी के पहले ज़्यादा था, और अभी 5 से 7 पौधा तैयार है मेरा।
0: अच्छा
1: जी,
0: जो मैंने फल दे रहा है?
1: फल दे रहा है।
0: अच्छा अच्छा, और अनाज वाली फसलों पर हम आते हैं, गर्मा अनाज की फसलें, उसमें अभी कौन कौन सी मुख्य फसलें लगी हुई हैं खेतों में?
1: अभी गर्मा में तो हम लोग को मूंग लगा हुआ है, सबसे पहला चीज मूंग लग गया है। मूंग हम लोग के कम से कम 1 माह के अंदर फल आना स्टार्ट हो जाएगा। और गेहूं था तो गेहूं अब तो गर्मा फसल में कट चुका, और इसके बाद में मूंग ही मुख्य अभी हम लोग का। खेती हुआ है।
0: अच्छा, मूंग की खेती किस प्रकार हमारे ग्रामीण

0: शुरू करें कि जिससे कि मतलब अधिक मुनाफा हो, और कीड़ों की देख रेख किस प्रकार करें?
1: हाँ, हम लोग जिसे गेहूं की कटाई होता है, चाहे खेत खाली जो खेत है उसको अच्छी तरह से जुताई हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद सबसे पहले पटवन करते हैं, पटाने के बाद उसमें जुताई कर लेते हैं, और जुताई करने के बाद हम लोग मूंग लगा देते हैं। मूंग लगा जिसे पटाई हम लोग किए, तो पटाने के बाद जो है से 10 से 15 दिन के 20 दिन के बाद फिर पानी हम उसको देंगे। जब पौधा 2 पत्ता 3 पत्ता का हो जाता है तो 15 से 20 दिन का कि में हम लोग पानी उसमें फिर डालेंगे। और अच्छे उत्पादन के लिए उसमें हम लोग अब तो बाद में हम लोग के जो भी खेत रहता है से सब गोबर खाद से भरा हुआ रहता है, किसी तरह खाद का यूज हम लोग नहीं करते हैं मूंग में। और
0: मतलब कुल मिलाकर जैविक खेती की ओर,
1: हाँ जैविक खेती
0: ध्यान दिया जा रहा है।
1: जी
0: जी, और अब इसकी मांग भी है, चूँकि जैविक खेती एक ऐसी खेती है जिससे हमारी मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, जल धारण क्षमता बनी रहती है, गुणवत्तापूर्ण फसल आप उत्पादन प्राप्त करते हैं।
1: जी,
0: और मूंग के अलावा और कौन से दलहनी फसल है?
1: मूंग के अलावा अभी राहर कट चुका है।
0: अच्छा,
1: राहर था,
0: कैसा उत्पादन हो रहा
1: था? ठीक ही था, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान हो जा रहा है मेरे यहाँ नील गाय, सबसे ज़्यादा बहुत परेशानी है। फल आता है, सबसे अधिक फल को नुकसान कर देता है, सब चर जा रहा है।
0: मसूर,
1: मसूर का उत्पादन ठीक था, मसूर में उतना नुकसान नहीं करता है, मसूर अच्छा था।
0: आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारियां आपने साझा की, इसके लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: घड़ी इशारा कर रही है, समय समाप्त होने को है,
0: तो चलने से पहले
2: हम लोग लेते हैं इजाजत।
0: नमस्कार।

0: सब जो भी होगा उसको हम लोग बांस का, चाहे बांस तार में बांध कर उस पर हम लोग लतर को चढ़ा करके बरसाती फल को हम लोग लेते हैं।
1: अच्छा, और अब हम बागवानी की ओर लौटते हैं। बागवानी में अभी आपने क्या क्या लगा रखा है?
0: जैसे अभी आम हम लोग लगाए हैं, अमरूद है, और अभी फल भी आ चुका है आम में, बहुत अच्छा फल है।
1: अच्छा, आम की देखरेख कैसे कर रहे हैं अभी?
0: आम जैसे हम लोग का मंजर आया, उसके बाद हम लोग छिड़काव किए कीटनाशक का, और इसके बाद में हम लोग उसका दो बार किए, इसके बाद फल आना स्टार्ट हो गया तो उसको हम लोग छोड़ दिए, ज़्यादा दवा का यूज हम लोग नहीं किए।
1: कौन कौन से किस्म के आम है?
0: वो हम लोग इधर तो लोकल में हम लोग लंगड़ा और दशहरी के नाम से ही जाने जाते हैं, और मैंने ज़्यादा लंगड़ा का फल है।
1: और उसी को आपने लगाया है?
0: जी जी।
1: और खासकर खाद उर्वरक का व्यवहार क्या कर रहे हैं आप?
0: खाद में हम लोग गोबर खाद का यूज कर रहे हैं पेड़ के नज़दीक भी, चाहे हम लोग साग सब्जी भी लगाते हैं तो बीज जहाँ लगाते हैं वहाँ हम लोग खाद पहले डाल देते हैं, गोबर खाद मिला कर मिट्टी और गोबर खाद मिला करके इसके बाद बीज को डालेंगे वहाँ, और इससे पौधा भी जर्मिनेशन होने में भी बहुत जल्दी जर्मिनेशन होता है, क्योंकि मिट्टी वहाँ एकदम भुरभुरा हो जाता है, हार्ड मिट्टी नहीं रहता है, और जर्मिनेशन होने में पौधा का किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। इसलिए हम लोग वर्मी कंपोस्ट कहिए, चाहे केचुआ खाद कहिए, चाहे घरेलू खाद, उसी का यूज कर रहे हैं।
1: और आम के अतिरिक्त और कौन से पौधे हैं?
0: आम के अतिरिक्त तो ऐसे फिर तो काम के पौधे हैं, यही हैं, नींबू है, फिर अनार का भी कुछ पौधे हैं, और आम है ही, और केला था, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया इसके चलते नहीं हो पा रहा है।
1: केला की देखरेख कैसे कर रहे हैं अभी आप?
0: केला जैसे हम लोग लगा देते हैं, इसके बाद में फिर पानी उसके मेड़ के बना करके नज़दीक से पानी उसको दिया जा देते हैं, और 8-10 दिन पर पानी, बरसात में तो खैर पानी नहीं लेता है, लेकिन गर्मी में 8-10 दिन के अंदर पानी दो बार देना ही पड़ता है।
1: और अभी गर्मी के दिन में?
0: गर्मी के दिन में 8 दिन में दो बार पानी देते हैं उसमें। गर्मी के दिन में जैसे हम लोग जैसे नींबू का पौधा लगाए, अमरूद का लगाए, केला है, आम का है, उसमें हम लोग पानी मेढ़ बना देते हैं, और मेढ़ से पानी उसके अंदर हम लोग डालते रहते हैं, 8 दिन में दो बार हम लोग पानी का देना पड़ता है, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी पलामू में पड़ रहा है, जिसके चलते फसल का नुकसान होने लगता है।
1: केले के हम अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करें, इसके लिए हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए?
0: केला का उत्पादन अधिक से अधिक करना है तो 10 फीट के अंदर दूरी 10-10 फीट पर लगाएं, उसमें कोड़ाई उड़ाई करके बर्मी कंपोस्ट खाद जहाँ से भी है, कहीं से भी उपलब्ध है, अपने घर में है, हम लोग उपलब्ध करके बीच में डाल करके उसको हम लोग करें, और अच्छा उत्पादन होता है। सबसे अधिक केला पलामू में हम लोग का लोकल केला का मांग होता है सब्जी के लिए, जो कि बहुत अच्छा तरह से पैसा हम लोग को मिलता है, और इसमें किसान लगाते हैं और बहुत अच्छे तरह से लाभ भी ले रहे हैं।
1: आपने जो भी लगाया है सब सब्जी फसल की?
0: हाँ, हम जो भी लगाए हैं सब सब्जी फसल के लिए।
1: कितना होगा केला
0: अभी? कम से कम 25-30 थान केला मेरा है।
1: अच्छा अच्छा, तो अभी उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं?
0: हाँ, अभी गर्मी में तो कुछ कम है, लेकिन ये गर्मी के पहले ज़्यादा था, और अभी 5-7 पौधा तैयार है मेरा।
1: अच्छा
0: जी,
1: जो मैंने फल दे रहा है?
0: फल दे रहा है।
1: अच्छा अच्छा, और अनाज वाली फसलों पर हम आते हैं, गर्मा अनाज की फसलें, उसमें अभी कौन कौन सी मुख्य फसलें लगी हुई हैं खेतों में?
0: अभी गर्मा में तो हम लोग को मूंग लगा हुआ है, सबसे पहला चीज मूंग लग गया है। मूंग हम लोग के कम से कम 1 माह के अंदर फल आना स्टार्ट हो जाएगा। और गेहूं था तो गेहूं अब तो गर्मा फसल में कट चुका, और इसके बाद में मूंग ही मुख्य अभी हम लोग का खेती हुआ है।
1: अच्छा, मूंग की खेती किस प्रकार हमारे ग्रामीण बंधु करें कि जिससे कि मतलब अधिक मुनाफा हो, और कीड़ों की देखरेख किस प्रकार करें?
0: हाँ, हम लोग जिसे गेहूं की कटाई होता है, चाहे खेत खाली जो खेत है उसको अच्छी तरह से जुताई हम लोग कर लेते हैं, इसके बाद सबसे पहले पटवन करते हैं, पटाने के बाद उसमें जुताई कर लेते हैं, और जुताई करने के बाद हम लोग मूंग लगा देते हैं। मूंग लगा जिसे पटाई हम लोग किए तो पटाने के बाद जो है से 10-15 दिन के 20 दिन के बाद फिर पानी हम उसको देंगे, जब पौधा 2 पत्ता 3 पत्ता का हो जाता है तो 15 से 20 दिन का कि में हम लोग पानी उसमें फिर डालेंगे। और अच्छे उत्पादन के लिए उसमें हम लोग अब तो बाद में हम लोग के जो भी खेत रहता है से सब गोबर खाद से भरा हुआ रहता है, किसी तरह खाद का यूज हम लोग नहीं करते हैं मूंग में। और
1: मतलब कुल मिलाकर जैविक खेती की ओर
0: हाँ जैविक खेती
1: ध्यान दिया जा रहा है।
0: जी
1: जी, और अब इसकी मांग भी है क्योंकि जैविक खेती एक ऐसी खेती है जिससे हमारी मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, जल धारण और क्षमता बनी रहती है, गुणवत्तापूर्ण फसल आप उत्पादन प्राप्त करते हैं।
0: जी,
1: और मूंग के अलावा और कौन से दलहनी फसल है?
0: मूंग के अलावा अभी राहर कट चुका है।
1: अच्छा,
0: राहर था,
1: कैसा उत्पादन हो रहा
0: था? ठीक ही था, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान हो जा रहा है मेरे यहाँ नील गाय, सबसे ज़्यादा बहुत परेशानी है। फल आता है, सबसे अधिक फल को नुकसान कर देता है, काट सब चर जा रहा है।
1: मसूर
0: मसूर का उत्पादन ठीक था।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी ग्रामीण सभा, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार शाम के 7 बजे 7:10 पर जिले में आजकल।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माई गॉड पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब, मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं, बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डालें। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई ना कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के मुरी और पिस्का समेत देशभर के 75 रेलवे स्टेशनों का किया वर्चुअल लोकार्पण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की कृषि विभाग की उच्च स्तरीय बैठक, आधुनिक कृषि का लाभ राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का निर्देश। राज्य के उद्योग सचिव ने नई दिल्ली में आयोजित भारत टेक्स में झारखंड पवेलियन का किया दौरा। पारंपरिक उत्पादों और तसर सिल्क को वैश्विक बाजार से जोड़ने पर बल। रांची में पेंशन समावेशन के लिए एनपीएस संचय आउटरीच कार्यक्रम आयोजित। किसानों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने पर बल। और हॉकी इंडिया ने महिला विश्व कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा की। झारखंड की 4 खिलाड़ियों का चयन, सलीमा टेटे संभालेंगी टीम की कमान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जलंधर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। इनमें झारखंड के पिस्का और मुरी रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
1: नए भारत की आधुनिक अवसंरचना में आज एक और नया अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के 75 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का लोकार्पण किया है। इनमें झारखंड के मोरी और पिस्का स्टेशनों को लगभग 10-10 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय बनाया गया है। अब यहाँ यात्रियों को लिफ्ट, एस्केलेटर, भव्य वेटिंग रूम और दिव्यांगों के अनुकूल विशेष सुविधाएं मिलेंगी। बदलते स्टेशन और बेहतर सफर की यह तस्वीर विकसित भारत की ओर एक मजबूत कदम है। आकाशवाणी रांची के समाचार कक्ष से मैं पूनम करकेटा।
0: मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार भारत के प्रत्येक नागरिक की सेवा को प्राथमिकता देती है, उनके जीवन को सुगम बनाती है और उन्हें प्रगति के नए अवसर प्रदान करती है।
2: जो भारतीय रेल है, एक गरीब परिवारों की, मिडिल क्लास परिवारों की सवारी है। केंद्र की भाजपा सरकार की भी प्राथमिकता है भारत के हर नागरिक की सेवा, भारत के हर नागरिक का जीवन आसान बनाना।

0: और उसे आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराना। और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं।
1: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, परिवहन मंत्री दीपक बिरवा और अन्य गणमान्य लोगों ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पिस्का रेलवे स्टेशन के लोकार्पण समारोह में हिस्सा लिया। राज्यपाल ने इस पुनर्विकास को राज्य के विकास में एक मील का पत्थर बताया।
2: अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत ये पुनर्विकसित पिस्का एवं मुरी रेलवे स्टेशन का उद्घाटन झारखंड के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये योजना केवल रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा सांस्कृतिक विरासत जोड़ने का एक दूरदर्शी प्रयास है।
1: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम पर राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिवसीय कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सुरक्षित और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक महिला को गरिमा और बिना किसी भय के काम करने का अधिकार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जिसमें मानसून की स्थिति, सिंचाई परियोजनाओं और किसान समृद्धि योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री ने आधुनिक तकनीकी आधारित कृषि का लाभ राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के निर्देश दिए। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कौशल विकास मिशन सोसाइटी में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कथित फर्जी बैंक गारंटी मामले की न्यायिक जांच और दोषी अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करते हुए सरकार को घेरा है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 के समापन पर उद्योग सचिव अरवा राजकमल ने झारखंड पवेलियन का दौरा किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार तसर सिल्क और जनजातीय हस्तशिल्प को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए प्रयासरत है। इस आयोजन से स्थानीय बुनकरों और महिला उद्यमियों को नए व्यापारिक अवसर मिलेंगे। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 19 जुलाई को आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए विभिन्न जिलों के उपायुक्तों के उच्च स्तरीय बैठक की है। लोहरदगा और साहिबगंज जिला प्रशासनों ने स्पष्ट किया है कि परीक्षाओं की विश्वसनीयता उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारियों और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। रांची में पेंशन समावेशन और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आज NPS संचय आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति और PFRDA के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में नाबार्ड और विभिन्न बैंकों के अधिकारियों ने ग्रामीण क्षेत्रों, किसानों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन योजना से जोड़ने पर बल दिया।
3: हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है। उसमें पेंशन सोसाइटी का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है और वो पेंशन सोसाइटी तब तक नहीं बनेगी जब तक इनफॉर्मल सेक्टर से जुड़े हुए लोग सबके पास उनके पास पेंशन ना। उसी को इंश्योर करने के लिए हम कार्यक्रम कर रहे हैं NPS संचय। NPS संचय एक ऐसी योजना है जिसमें 18 से 85 वर्ष का कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है, मिनिमम 250 रुपए से खाता खुल सकता है।
1: गढ़वा जिले में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत शत प्रतिशत गणना प्रपत्रों का वितरण पूरा हो गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी पशुपतिनाथ मिश्र ने बताया कि 8,62,000 से अधिक प्रपत्र बांटे जा चुके हैं। प्रशासन का लक्ष्य 5 अगस्त को मतदाता सूची के प्रारूप का अंतिम प्रकाशन करना है। पलामू के उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने आज जिला स्तरीय तकनीकी पदाधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने काम में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए लापरवाह संवेदकों को डिबार करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने जमीन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए 20 जुलाई को विशेष बैठक बुलाई है। रांची के गैलेक्सी मॉल स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को आज ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूचना मिलते ही सुखदेव नगर थाना पुलिस और झारखंड जगुआ की बीडीडीएस टीम मौके पर पहुंची और पूरे भवन की सघन तलाशी ली। बीडीडीएस के अधिकारी ने बताया कि तलाशी में कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है।
4: थेट जहाँ के लिए मिले रहता है, हम लोग बारीकी से सारा चीज हम लोग जांच करते हुए आगे बढ़ते हैं। ऊपर नीचे आउटर इनर सब कोई भी जगह नहीं छोड़ते हैं हम लोग। गैलेक्सी मॉल में पासपोर्ट ऑफिस का जांच किए जहाँ धमकी आया था, इसके बाद बाहर फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर सभी जगह जांच किए, वैसा कुछ नहीं मिला।
1: मौसम विभाग रांची ने 21 जुलाई तक भारी बारिश मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। आज और कल रांची गुमला लातेहार और रामगढ़ समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। हॉकी इंडिया ने अगस्त में होने वाली महिला हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। इस टीम में झारखंड की 4 खिलाड़ियों को जगह मिली है, जबकि सिमडेगा की सलीमा टेटे टीम की कप्तान चुनी गई हैं। टीम में निक्की प्रधान, ब्यूटी डुंगडुंग और दीपिका सोरेंग भी शामिल है। रांची के दीपाटोली मिलिट्री स्टेशन स्थित केरकेट्टा ऑडिटोरियम में कल पूर्वाहन 10 बजे 135वें दुरंड कप 2026 के ट्रॉफी शोकेस का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर खेल मंत्री सुदिव्य कुमार मुख्य अतिथि और मेजर जनरल सज्जन सिंह मान विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के मुरी और पिस्का समेत देशभर के 75 रेलवे स्टेशनों का किया वर्चुअल लोकार्पण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की कृषि विभाग की उच्च स्तरीय बैठक, आधुनिक कृषि का लाभ राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का निर्देश। राज्य के उद्योग सचिव ने नई दिल्ली में आयोजित भारत टेक्स में झारखंड पवेलियन का किया दौरा। पारंपरिक उत्पादों और तसर सिल्क को वैश्विक बाजार से जोड़ने पर बल। रांची में पेंशन समावेशन के लिए एनपीएस संचय आउटरीच कार्यक्रम आयोजित। किसानों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने पर बल। और हॉकी इंडिया ने महिला विश्व कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा की। झारखंड की 4 खिलाड़ियों का चयन, सलीमा टेट्टे संभालेंगी टीम की कमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉड पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब, मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है कि हम कूड़ा कचरा उसमें डालें। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं।
1: आइए सुनते हैं जिले में आजकल।
2: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे सिमडेगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे सिमडेगा संवाददाता।
1: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सिमडेगा जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य जारी है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कंचन सिंह और पदाधिकारी मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मतदाता गणना प्रपत्रों के वितरण, संग्रहण और डिजिटाइजेशन के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दे रहे हैं। उपायुक्त ने बताया कि
2: सिमडेगा जिले में काफी जोर शोर से तैयार का काम प्रगति पर है और जिले के लगभग 62% मतदाताओं का जो इनोमिनेशन फॉर्म है वो डिजिटाइज भी किया जा चुका है। बाकी मतदाताओं से भी अपील है कि वो जल्दी जल्दी अपना फॉर्म भर करके अपने बीएलओ को दे दें और यथाशीघ्र अपना फॉर्म डिजिटाइज करा दें। इस कार्य को गति देने के लिए हमारे जितने भी बीएलओ हैं वो आपके घर घर जाएंगे और जिनका भी इनोमिनेशन फॉर्म नहीं अभी तक कलेक्ट हो पाया भरा हुआ उनसे वो फॉर्म लेकर के डिजिटाइज करने का काम करेंगे। तो सभी लोग अपने घरों में रहें और जो बीएलओ जाएं तो उन्हें कृपा करके इनोमिनेशन फॉर्म अपने हस्ताक्षर के साथ लौटा दें ताकि जो बाकी बच्चे मतदाता है उनका भी डिजिटाइजेशन हो सके और जो ड्राफ्ट इलेक्ट्रोल रोल है उस पर उनका नाम दर्ज किया जाना सुनिश्चित।
1: भाई और बहन के पवित्र प्रेम के पर्व रक्षाबंधन के अवसर पर अपनी भागीदारी निभाते हुए डाक विभाग ने राखी भेजने के लिए एक विशेष लिफाफा उपलब्ध कराया है। सिमडेगा के मुख्य डाकघर में सजाए गए काउंटर में 10 रुपए में इस लिफाफे की बिक्री की जा रही है। मुख्य डाकघर के पोस्टमास्टर विजय चौधरी ने बताया कि
3: डाक विभाग सिमडेगा मुख्य डाकघर की ओर से राखी के शुभ अवसर पर सभी बहनों को संदेश दिया जा रहा है कि प्रत्येक डाकघर में राखी के लिए लिफाफा बेचा जा रहा है जो वाटर प्रूफ लिफाफा है। लिफाफे की कीमत लगभग 10 रुपया है और इसके रजिस्ट्री चार्ज 55 रुपया है। कुल मिलाकर 65 से 70 रुपयों में आपके भाइयों की कलाइयों तक डाक विभाग के द्वारा राखी पहुँचा दी जाएगी। दूसरी बात है कि इसके राखी के अवसर पर एक डाक विभाग प्रतियोगिता रखा गया है प्रत्येक स्कूल में। जो प्रतिभागी अच्छे राखी का प्रदर्शन करेंगे उसे डाक विभाग द्वारा दिया जाएगा।
1: सिमडेगा जिले में कई उत्साही युवा श्री हनुमान वाटिका युवा संगठन और बजरंग दल के बैनर तले गौ सेवा का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। सड़क दुर्घटना में घायल गोवंश की सेवा कर ये युवा समाज के सामने प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री हनुमान वाटिका के मुख्य पुजारी सोमनाथ मिश्रा ने बताया कि
4: मेरा नाम सोमनाथ मिश्रा है, मैं इस हनुमान वाटिका मंदिर का पुजारी हूँ। इस मंदिर से बजरंग दल के युवा कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। सिमडेगा में कहीं पर भी अगर किसी गौ माता गौ वंशी पशुओं का किसी सड़क दुर्घटना में मतलब कोई चोट लग जाता है, कोई घायल हो जाती है या फिर कोई बीमार पशु होते हैं तो उन गौ माता को गौ वंशी पशुओं को इस मंदिर परिसर में लाकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा और मंदिर के पुरोहित श्री जगदीश मिश्रा श्री मणि मिश्रा और हम लोगों के सहयोग से उनका उचित उपचार इलाज किया जाता है। अब तक इस परिसर में करीब 60-70 गौ वंशीय पशुओं गौ माताओं का सफलतापूर्वक इलाज हुआ है और आगे भी हम लोग जो है इस क्रम को बनाए रखेंगे और गौ माता के संरक्षण के लिए और उनके साथ जो हो रही दुर्घटनाएं उन पे लगाम लगे इसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे।
1: सिमडेगा जिले में रथ यात्रा धूमधाम से मनाई गई। जिले भर में 18 स्थानों में रथ यात्रा का आयोजन कर भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के विग्रहों को मौसीवाड़ी तक ले जाया गया। मनोज कुमार सिन्हा मनु आकाशवाणी समाचार सिमडेगा।
0: अभी आप सुन रहे थे सिमडेगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

अभी आप आकाशवाणी रांची केंद्र से सुन रहे थे प्रायोजित कमर जिले में आजकल और प्रादेशिक समाचार। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:17 हो चुके हैं। श्रोताओं, हम लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग।

आपने सुना फिल्म दहलीज के इस गाने को आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ में, हसन कमाल के बोल थे, रविशंकर के संगीत। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक रंग। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, फेमिक 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं अब कार्यक्रम हम उड़ान, रोजगार से जुड़ी बातें, संकलन निर्वाचन मीनाक्षी कर्ण के।

कार्यक्रम उड़ान में स्वागत है आप तमाम श्रोताओं का। श्रोताओं, आज के इस अंक में हम आपसे बातें करेंगे मेडिकल क्षेत्र में कैसे बनाएं अपना करियर, इस विषय पर। श्रोताओं, हमारे जो छात्र हैं जिन्होंने 12वीं पास की है और जिनका उद्देश्य मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाना है, तो वो सबसे पहले नीट का एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है श्रोताओं कि उन्हें सफलता हासिल नहीं होती है। लेकिन मंजिलें और भी हैं। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में ही करियर बनाना चाहते हैं तो MBBS के अलावे बहुत से ऐसे कोर्सेज उपलब्ध हैं जिनको करके आप इस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे जो युवा छात्र हैं, इन कोर्सेज को करने के बाद सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में आसानी से जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं। श्रोताओं, हमारे देश में मेडिकल क्षेत्र को बेहतरीन पेशा माना जाता है और डॉक्टर्स को प्रसिद्धि की नज़र से तो देखा ही जाता है। लाखों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हर वर्ष डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए नीट की परीक्षा देते हैं, लेकिन कुछ छात्र को मन चाहे सफलता नहीं मिल पाती है। तो हम आपको बता दें श्रोताओं कि नीट की परीक्षा ही डॉक्टर बनने का एकमात्र तरीका नहीं है। उससे भी अलग मेडिकल क्षेत्र में विभिन्न तरह के कोर्स मौजूद हैं जिसे करके आप इस क्षेत्र में करियर बना सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप 12th के बाद एडमिशन ले सकते हैं और ग्रेजुएशन कोर्स कर उच्च शिक्षा के लिए परास्नातक डिग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मेडिकल के क्षेत्र में आप BSc नर्सिंग, BSc बायोटेक्नोलॉजी, BSc बायोलॉजी, बैचलर ऑफ वेटरिनरी साइंस, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियक, बैचलर ऑफ साइंस इन माइक्रोबायोलॉजी, इस तरह के कोर्स करके आप रोजगार के कई अवसर प्राप्त कर सकते हैं। हमारे देश में मेडिकल क्षेत्र में रोजगार की कमी नहीं है। इन कोर्सेज को करने के बाद किसी प्राइवेट अस्पताल से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं और समय समय पर सरकार की ओर से भी नौकरियां निकाली जाती हैं जिनमें भाग लेकर सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते तो शिक्षा ग्रहण करने के बाद खुद की संस्था या दवा कंपनी भी खोल सकते हैं। श्रोताओं, इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए मेहनती होना होगा, साथ ही साथ आपके अंदर जुनून भी होना चाहिए। कुछ कॉलेज NEET के स्कोर के माध्यम से BSc नर्सिंग और दूसरे पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश आयोजित करते हैं और कई अन्य पैरामेडिकल पाठ्यक्रम हैं जिनमें छात्र प्रवेश ले सकते हैं। लेकिन इन पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए विज्ञान की पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है। श्रोताओं, पैरामेडिकल विज्ञान पाठ्यक्रम नैदानिक प्रयोगशालाओं में नैदानिक उपकरणों, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और परीक्षणों की सहायता से विभिन्न चिकित्सा स्थितियों और बीमारियों के आपातकालीन चिकित्सा, उपचार, निदान और उपचार को प्रबंधित करने और संभालने के लिए प्रशिक्षण और शिक्षा से संबंध रखते हैं। भारत में पैरामेडिक्स की कमी हर समय देखी जाती है और ये शाखा चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सबसे अधिक मांग वाली शाखाओं में से एक बनती है। भारत में MBBS के अलावा उच्च वेतन वाले करियर विकल्पों में से ये एक है। इसके अलावा अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन जैसे पाठ्यक्रम को अपनाकर

0: रोजगार के अवसर ढूंढे जा सकते हैं। बीएससी नर्सिंग जैसा कार्यक्रम जो 4 साल का है, चिकित्सा क्षेत्र में करियर बनाने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा कोई भी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट में मास्टर्स या हेल्थ केयर में एमबीए जैसे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर अपना करियर संवार सकता है। इन पाठ्यक्रमों में से स्नातक उपचार में योगदान नहीं देते हैं, लेकिन बड़े चिकित्सा संगठनों और अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल प्रक्रिया की देखरेख और प्रबंधन से सक्रिय रूप से जुड़े होते हैं। वे आमतौर पर अस्पतालों में विभिन्न विभागों में संचार में बेहतर समन्वय और दक्षता सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा दूसरे चिकित्सा विज्ञान के कार्यक्रम हैं, जैसे कि बी फार्मा यानी कि बैचलर इन फार्मेसी। ये 4 साल का डिग्री कोर्स है जो कई तरह की बीमारियों के उपचार और इलाज के लिए दवाओं और दवाओं के अनुसंधान और विकास पर जोर देता है। फार्मास्यूटिकल उद्योग इन दिनों तेजी से बढ़ते उद्योगों में से एक है और इनमें कोई भी आकर्षक करियर बना सकता है। बी फार्मा स्नातक एक विशेष स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के लिए एम फार्मा कर सकते हैं। इसके अलावा 6 साल का फार्म डी पाठ्यक्रम अब पेश किया जाता है और इसे एक पेशेवर पाठ्यक्रम के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा कोई मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में 4 साल की डिग्री का विकल्प भी चुन सकता है और ये पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग तकनीकों के कार्यान्वयन और अनुप्रयोग के साथ निदान और चिकित्सा के लिए जैविक और चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल उद्देश्यों के लिए उपकरण डिजाइन करने की अवधारणाओं पर आधारित है। पारंपरिक बीए, एमए, बीएससी, एमएससी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में रुचि रखने वाले उम्मीदवार अपने स्नातक या परास्नातक में मनोविज्ञान को भी प्रमुख विषय के रूप में चुन सकते हैं। योग्यता प्राप्त करके नैदानिक मनोविज्ञान में 2 वर्षीय एमफिल एक योग्य नैदानिक मनोवैज्ञानिक भी बन सकता है। स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित मांग हर दिन बढ़ रही है, तो एमबीबीएस के अलावा बहुत सारे पाठ्यक्रम और करियर विकल्प हैं जिन्हें छात्र चुन सकते हैं। इन दिनों कॉरपोरेट क्षेत्र, स्कूलों और संस्थानों में स्वास्थ्य देखभाल एक आवश्यकता है। जीवन शैली प्रबंधन, खेल प्रबंधन, वृद्धावस्था देखभाल और स्कूलों में बच्चे और कल्याण प्रबंधन जैसे विकल्प कुछ उत्कृष्ट करियर विकल्प हैं। स्वास्थ्य देखभाल लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपचार और दवाओं, अनुसंधान और नई चिकित्सा तकनीक का विकास संबंध स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए सबसे दिलचस्प करियर विकल्प हैं। साथ ही इसमें चुनौतियां भी हैं, इसलिए जो भी उम्मीदवार एमबीबीएस नहीं करने के इच्छुक हैं या योग्य नहीं हैं, उनके पास चुनने के लिए कई विकल्प हैं जिन्हें विस्तार से सूचीबद्ध कर उचित मार्गदर्शन और समर्पण के साथ उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओं, इसके अलावा कई मेडिकल पाठ्यक्रम हैं, जैसे कि संबंध चिकित्सा विज्ञान, पैरा मेडिकल विज्ञान और पसंद जो भी शाखाएं पसंद हैं उनमें कुछ अच्छे विकल्प हैं जिन्हें 12वीं कक्षा में भौतिकी रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान विषयों के साथ इच्छुक उम्मीदवार चुन सकते हैं। इसके अलावा BDS, BAMS, BUMS, BHMS, BSMS और BVSC और AH पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है नीट के माध्यम से, और इन पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश लिया जा सकता है। कुछ कॉलेज नीट के स्कोर के माध्यम से प्रवेश ले लेते हैं और कुछ ऐसे पैरामेडिकल पाठ्यक्रम भी हैं जिनमें प्रवेश नीट के माध्यम से नहीं, एडमिशन नहीं होता है, लेकिन इन पाठ्यक्रमों को पढ़ने के लिए विज्ञान पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है। तो समय समय पर इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा की जानकारी आप लेते रहें और इसमें अपनी योग्यता दर्शाएं। और इन पाठ्यक्रमों में अगर आपको प्रवेश मिल जाता है तो आपका देखभाल पेशेवरों के लिए सबसे दिलचस्प करियर विकल्प है। साथ ही इसमें चुनौतियां भी हैं, इसलिए जो भी उम्मीदवार MBBS नहीं करने के इच्छुक हैं या योग्य नहीं हैं, उनके पास चुनने के लिए कई विकल्प हैं जिन्हें विस्तार से सूचीबद्ध कर उचित मार्गदर्शन और समर्पण के साथ उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओं, इसके अलावा कई मेडिकल पाठ्यक्रम हैं, जैसे कि संबंध चिकित्सा विज्ञान, पैरामेडिकल विज्ञान और पसंद, जो भी शाखाएं पसंद हैं उनमें कुछ अच्छे विकल्प हैं जिन्हें 12वीं कक्षा में भौतिकी रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान विषयों के साथ इच्छुक उम्मीदवार चुन सकते हैं। इसके अलावा BDS, BAMS, BUMS, BHMS, BSMS और BVSC और AH पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है नीट के माध्यम से, और इन पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश लिया जा सकता है। कुछ कॉलेज नीट के स्कोर के माध्यम से प्रवेश ले लेते हैं और कुछ ऐसे पैरामेडिकल पाठ्यक्रम भी हैं जिनमें प्रवेश नीट के माध्यम से नहीं, एडमिशन नहीं होता है, लेकिन इन पाठ्यक्रमों को पढ़ने के लिए विज्ञान पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है। तो समय समय पर
1: अब आइए सुनते हैं फिल्म संहिता कार्यक्रम चित्रपट से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बज चुके हैं। हम लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम ए चित्रपट से।

0: अरुण, मेरी पार्टी में रंग कैसे जमेगा जब तक तुम शेर नहीं सुनाओगे?
1: हाँ, कमान अरुण,
2: कमान कमान कमान यार, कमान यार,
3: क्या करूँ यार, आज कोई शेर ही नहीं बन रहा।
1: अरे ये क्या हुआ,
4: ये तो शम्माई बुझ गई।
1: अरे अब तो इसे खुदा ही रोशन कर सकता है भाई। अरे चेक करो यार, फिस तो नहीं गया
0: क्या मालूम?
1: अरे भाई किसी के पास माचिस वाचिस है कि नहीं?
3: हाँ हाँ मेरे पास है। ये आंखें, ये चेहरा, ये नूर, इंसान हो या परी हो तुम, कितनी फुर्सत से बनाया होगा तुम्हें बनाने वाले ने।

0: कमान अरुण, मेरी पार्टी में रंग कैसे जमेगा जब तक तुम शेर नहीं सुनाओगे।
1: हाँ कमान अरुण, कमान कमान यार,
2: क्या करूँ यार, आज कोई शेर ही नहीं बन रहा।
3: अरे

0: ऑन अरुण, मेरी पार्टी में रंग कैसे जमेगा जब तक तुम शेर नहीं सुनाओगे।
1: हाँ, come on अरुण, come on, come on, come on यार, come on यार।
2: क्या करूँ यार, आज कोई शेर ही नहीं बन रहा।
3: अरे ये क्या हुआ, ये तो शम्माई बुझ गई। अरे अब तो इसे खुदा ही रोशन कर सकता है भाई। अरे चेक करो यार, फिस तो नहीं गया
0: क्या मालूम।
3: अरे भाई किसी के पास माचिस वाचिस है कि नहीं?
2: हाँ हाँ मेरे पास है। ये आंखें, ये चेहरा, ये नूर, इंसान हो या परी हो तुम, कितनी फुर्सत से बनाया होगा तुम्हें बनाने वाले ने।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे हैं महफिल कवाली नगमों का कार्यक्रम। कुछ ही पलों में रात्रि 8:42 पर हम शामिल होंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र की प्रसारण सेवा में। आप सुनेंगे रात्रि 9 बजे अंग्रेजी में समाचार, 9:15 में उर्दू में समाचार, 9:30 में विविध भारती की प्रसारण सेवा में हम शामिल होंगे आज के फनकार कार्यक्रम में। रात्रि 10 बजे अपने स्टूडियो से लेकर हाजिर होंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीकंथा। 11 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, 11:05 में अंग्रेजी में समाचार, और अपने सभा का समापन हम करेंगे रात्रि 11:10 पर। तो आइए कुछ ही पलों में हम शामिल होंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र की प्रसारण सेवा में हिंदी

0: वाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना होंगी। नीति आयोग ने निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। गुजरात शीर्ष पर, इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत ये रेलवे स्टेशन सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और

0: केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है।
1: साथियों, केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि पंजाब की जनता को केंद्र की हर स्कीम का लाभ मिले, लेकिन कट्टर बेईमान पार्टी की सरकार में यहाँ लूट का खुला खेल चल रहा है। बीते 12 वर्षों में केंद्र से पंजाब को लाखों करोड़ रुपए भेजे गए। इस पैसे से गांव के रास्ते बनते, नहरें बनती, मंडियां बनती, लेकिन पंजाब सरकार ने उस पैसे को सही जगह खर्च नहीं किया।
0: श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
1: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आज स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार पंजाब में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है।
2: आज पंजाब में करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए के रेलवे के काम चल रहे हैं। 1800 करोड़ रुपए की लागत से 30 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। अब तक जालंधर कैंट, आनंदपुर साहिब, मुक्तसर और मोहाली स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है। 12 वंदे भारत सर्विसेज चल रही है, 4 अमृत भारत सर्विसेज चल रही है और पंजाब में पूरा 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया है रेलवे के नेटवर्क को।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ को नियोजित शहरी विकास का एक मानक बताया।
1: चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहाँ एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। बहुत कम शहरों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है। आने वाले समय में यही संस्थान नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप्स और इनोवेशन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। आज एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस यात्रा को नई गति दे रही।
0: हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले आज मंत्रियों के समूह की बैठक नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राममोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।
3: ये राजकीय यात्राएं मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर की जा रही हैं। तीन देशों की ये यात्रा ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। रोमानिया की यात्रा तीन दशकों

0: से भी ज्यादा समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा होगी।
1: इन ओवर थ्री डेकेड्स
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसाराव पेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सफर संगठित स्वैच्छिक कार्यों की शक्ति और निस्वार्थ सेवा के चिरस्थायी मूल्यों का प्रमाण है। नई दिल्ली में श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी की पुस्तक आरएसएस 800 सेवा एकता और बलिदान की एक शताब्दी का विमोचन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण के माध्यम से एकता और राष्ट्रीय चेतना के आदर्शों को मजबूत किया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आरएसएस ने हर प्रतिकूल परिस्थिति में राष्ट्रीय हितों, सेवा और लोकतंत्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। इस योजना के अंतर्गत देश भर में 1,90,000 करोड़ रुपए से अधिक के कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पश्चिम बंगाल के कर्ण सुबर्ण रेलवे स्टेशन के पास आज स्कूल वैन और यात्री रेलगाड़ी की टक्कर में 2 स्कूली बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पूर्वी रेलवे ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने का आदेश दिया है। कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और ओडिशा भी शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। इसमें वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से सबसे अच्छी स्थिति वाले राज्यों का उल्लेख है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज 1% से अधिक की बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 965 अंक ऊपर चढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 262 अंक के उछाल के साथ 24,334 पर पहुंच गया और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे ऊपर आकर 96.28 रुपए पर बंद हुआ।
2: सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। ये अधिनियम खेलों में डोपिंग को रोकने, खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत डोपिंग रोधी मानकों के अनुसार खेल प्रतियोगिताओं की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक व्यापक वैधानिक आधार प्रदान करता है। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट ऑलराउंडर गैरी सोबार्स का आज निधन हो गया। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने 1 ओवर में 6 छक्के लगाने का भी कारनामा अपने नाम किया।

0: सर गारफील्ड सोबर्स ने वेस्टइंडीज के लिए 93 टेस्ट मैच में 8,032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला विश्व की चौथे नंबर की चीन की खिलाड़ी चेन युफई से होगा। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में रविवार तक तेज बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की तीन देशों की यात्रा पर होंगी। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट गैरी सोबर्स का निधन। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9।

0: in Test cricket. India announced its 20-member squad for the FIH Women's Hockey World Cup 2026 today. Midfielder Salima Tete will lead the Indian side at the prestigious tournament to be held in Belgium and the Netherlands from August 15 to 30th. Goalkeepers Savita and Bichu Devi Karibam have retained their places in the squad. India have been drawn in Pool D alongside China, England and South Africa. The team will begin its campaign against China on August 16 at the Wagenaar Hockey Stadium in Amstelveen before taking on South Africa on August 18 and England on August 20. In badminton, two-time Olympic medalist P.V. Sindhu has advanced to the semi-finals of the Japan Open 2026. Sindhu progressed after Japan's former world champion Nozomi Okuhara withdrew from the women's singles quarterfinal, giving the Indian shuttler a walkover. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi launches development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh. Flags off India's first hydrogen-powered train from Jind. Prime Minister said Centre is committed to ease of living and new opportunities for every citizen with the spirit of Nagrik Deva Bhava. Government convenes all-party meeting on Sunday ahead of the monsoon session of Parliament. President Draupadi Murmu to embark on three-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania from Sunday. Legendary West Indian cricketer Gary Sobers passes away. And Indian team announced for FIH Women's Hockey World Cup to be held in Belgium and Netherlands next month. Salima Tete named the captain. And that is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वजीराजम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। वजीराजम ने जिंद से भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। वजीराजम ने कहा कि मरकज नागरिक देवो भव के जज्बे के साथ हर शहरी के लिए जिंदगी गुजारने में आसानी और नए मौके फराहम करने के तई अहदबंद है। हुकूमत ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल इतवार के रोज कुल पार्टी मीटिंग तलब की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इतवार से मोल्दोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया के तीन रोजा दौरे पर रहेंगी। नीति आयोग ने सरमायाकारी फ्रेंडलीनेस का इशारिया 2026 जारी किया है। गुजरात आला तरीन कारकर्दगी करने वाली रियासत के तौर पर उभरी है। इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु आते हैं। मायानाज वेस्ट इंडीज क्रिकेट खिलाड़ी गैरी सोबर्स का इंतकाल हो गया है। और भारत ने अगले महीने बेल्जियम और नीदरलैंड में मुनक्द होने वाले FIH खवातीन के हॉकी आलमी कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। अब खबरें तफसील से। वजीराजम नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। इन प्रोजेक्टों का मकसद कनेक्टिविटी को मुस्तहकम करना, मुसाफिर सहूलतों में इजाफा करना और खित्ते में माशी तरक्की को फरोग देना है। वजीराजम ने आज शाम जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के मुख्तलिफ रेल और सड़क बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। जनाब मोदी ने तजीन नौ किए गए 75 रेलवे स्टेशनों का इफ्तिताह किया, जिनमें अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत जालंधर कैंट स्टेशन भी शामिल है। जालंधर में आवामी जलसे से खिताब करते हुए वजीराजम मोदी ने कहा कि भारत के हर शहरी की खिदमत करना, उनकी जिंदगियों को आसान बनाना और उन्हें तरक्की के नए मौके फराहम करना मरकज की NDA हुकूमत की तरजीह है। उन्होंने कहा कि ये NDA हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि हर कुंबा, चाहे वो गरीब हो या मुतवसित तबके से ताल्लुक रखता हो, उसे बेहतर से बेहतर सहूलतें मिलें और हुकूमत के कामकाज में नागरिक देवो भव के जज्बे की अक्कासी हो।
2: हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
1: वजीराजम ने कहा कि ये रेलवे स्टेशन सभी जदीद सहूलतों से लैस हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इन स्टेशनों की कायापलट का प्रोग्राम, दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन तजीनेनो प्रोग्राम, अमृत

0: भारत स्टेशन स्कीम का हिस्सा है।
1: बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया। आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन

0: एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
1: वजीर आजम ने जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर रेलवे और इत्तेलात और नशरियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव और दीगर सरकर्दा शख्सियात भी मौजूद थीं। वजीर आजम मोदी ने दिल्ली अमृतसर कटरा चार लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे और छह लेन वाले जुनूबी लुधियाना ग्रीन फील्ड बाईपास की तरक्की का संग बुनियाद रखने जैसे कौमी शाहराहों के प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह किया। हुकूमत ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल इतवार के रोज पार्लियामेंट की सभी सियासी जमातों के ऐवान के रहनुमाओं की मीटिंग तलब की है। मीटिंग के दौरान हुकूमत सभी सियासी जमातों से ताउन चाहेगी ताकि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का कामकाज खुश असलूबी से चलाया जा सके। पार्लियामेंट का मानसून इजलास 20 जुलाई से शुरू होगा जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। मानसून इजलास के दौरान कई अहम बिलों को बहस और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इस दौरान आज नई दिल्ली में वुजरा के ग्रुप की एक मीटिंग हुई। मीटिंग में मरकजी वुजरा अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजू रंजन सिंह, किंजरापू राम मोहन नायडू और किरण रिजिजू मौजूद थे। मीटिंग के दौरान लीडरों ने आइंदा पार्लियामानी इजलास की हिकमत अमली तरतीब दी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 19 से 25 तारीख तक मोल्दोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया के सरकारी दौरे पर रहेंगी। नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी सीबी जॉर्ज ने बताया कि ये सरकारी दौरे जमहूरिया मोल्दोवा, जमहूरिया शुमाली मकदूनिया और रोमानिया के सुदूर की दावत पर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दौरा तारीखी अहमियत का हामिल है क्योंकि किसी भी भारतीय सदर जमहूरिया के जरिए जमहूरिया मोल्दोवा और शुमाली मकदूनिया के अव्वलीन बाहमी दौरे होंगे। उन्होंने कहा कि रोमानिया का दौरा 3 से ज्यादा दहाइयों में किसी भारतीय सदर जमहूरिया का पहला सरकारी दौरा होगा। जनाब जॉर्ज ने मजीद कहा कि रोमानिया का आखिरी दौरा साल 1994 में हुआ था। जनाब जॉर्ज ने उजागर किया कि ये दौरा वस्ती और मशरकी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती हुई मसरूफियात की अक्कासी करता है। नीज खित्ते के ममालिक के साथ शराकतदारी को मुस्तहकम करने के भारत के अहद का इयादा करता है। जनाब जॉर्ज ने कहा कि ये दौरा यूरोप के साथ भारत के वसी तर ताल्लुकात और यूरोपीय यूनियन के साथ इसकी जामे शराकतदारी को भी उजागर करता है। सरमायाकारी फ्रेंडलीनेस के इशारिये 2026 में भारत की रियासतों और मरकज के जिरंतजाम इलाकों के दरमियान गुजरात सबसे बेहतर कारकर्दगी करने वाली रियासत के तौर पर उभरी है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और उड़ीसा भी आला कारकर्दगी करने वाले के तौर पर उभरे हैं। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में सरमायाकारी फ्रेंडलीनेस का इशारिया 2026 जारी किया जिसमें उन रियासतों को उजागर किया गया है जो सरमायाकारी को रागिब करने में बेहतरीन मकाम पर आए हैं। ये साल 2047 तक विकसित भारत के मकसद की जानिब भारत के सफर को उजागर करता है। इशारिये में तमाम 28 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 8 इलाकों का 8 सुतूनों का इस्तेमाल करते हुए तजजिया किया गया जिनमें बुनियादी ढांचा, कारोबारी माहौल, वसाइल, सरकारी पॉलिसी, जाब्ता जाति सहलकारी, इदारा जाति माहौल, मालियाती बेहतरी और माहौलियाती लचक शामिल हैं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आंध्र प्रदेश के वजीर आला एम चंद्रबाबू नायडू के साथ 1,03,246 मुस्तफदीन को 3,216 करोड़ रुपये मालियत के कर्जे तकसीम किए। ये कर्जे आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में मुनक़िद क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम में मरकजी हुकूमत के मुख्तलिफ स्कीमों के तहत तकसीम किए गए। जिन शोबों के लिए ये इमदाद फराहम की गई है उनमें ज़राअत, MSMEs और हाउसिंग, तालीम, गाड़ियाँ और शमसी तवानाई के शोबे शामिल हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजारत खारजा ने आज कहा कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के बारे में भारत जापान के दरमियान बातचीत इत्मीनान बख्श तरीके से आगे बढ़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक सवाल का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये पोस्ट एक फर्द के राय की अक्कासी करती है और ये हकीकत से मुख्तलिफ है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जापान E20 ट्रेन सीरीज मुहैया कराएगा लेकिन ये साल 2030 के अवाइल में ही होगा क्योंकि ट्रेन अभी तैयारी के मरहले में है। हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के बारे में हुई पेशरफ्त को उजागर करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि तामीराती काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और साल 2027 में पहला सेक्शन ऑपरेशनल हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि फरीकैन ने एक भारतीय हाई स्पीड ट्रेन से ऑपरेशन शुरू करने से इत्तेफाक किया।

नायब सदर सीपी राधा कृष्णन ने आज कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का सफर मुनज्जम रजाकाराना खिदमात की ताकत और अपनी जात से पहले खिदमत के पायदार जज्बे की एक वाजह मिसाल है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी की तसनीफ करदा किताब आरएसएस एट 100 अ सेंचुरी ऑफ सर्विस यूनिटी एंड सेक्रीफाइस के इजरा के मौके पर कही। तकरीब से खिताब करते हुए नायब सदर ने कहा कि आरएसएस ने खिदमत, इत्तेहाद और कौमी शऊर के नजरियात को मजबूत किया है और बेलौस खिदमत और कौम की तामीर के जरिए नस्लों को मुतासिर किया है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि तंजीम का 100 साल सफर इस बात को जाहिर करता है कि कौम की देरपा तरक्की सिर्फ हुकूमती इदारों के जरिए ही नहीं बल्कि फाल शहरी किरदार और रजाकाराना खिदमत के जरिए भी हासिल की जाती है। ईरान के पासदारान इनकलाब इस्लामी IRGC ने दावा किया है कि उसने आज शाम कुवैत और ओमान में अमरीकी फौजी ठिकानों को निशाना बनाते हुए जवाबी हमले किए हैं। ईरान की सरकारी एजेंसी के मुताबिक IRGC ने एक बयान में कहा कि ये हमले ऑपरेशन नसर 2 के 11वें, 12वें और 13वें दौर के दौरान किए गए। उसने दावा किया कि ईरानी फोर्सेज ने शाम के अल तनफ खित्ते में अमरीका की खसूसी कार्रवाइयों के कमान के एक मरकज पर अचानक हमला कर दिया। यूक्रेन में रात में किए गए रूसी हमलों में कम से कम 4 अफराद हलाक और दीगर 20 जख्मी हो गए। ओडेसा इलाकाई फौजी इंतजामिया के सरबरा ओले कीपर ने बताया कि ओडेसा के जुनूबी साहिली शहर पर रूस के एक मिसाइल हमले में 2 अफराद हलाक और दीगर 10 जख्मी हो गए। यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि ज़ेपोरोजिया खित्ते में एक और हमले में मजीद 2 अफराद हलाक हो गए और 5 दीगर जख्मी हुए हैं। हुकाम ने रूसी हमलों में मुल्क के दीगर 5 खित्तों में लोगों के जख्मी होने की भी खबर दी है। चीफ इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत का इंतखाबी कमीशन ECI दुनिया के सबसे शफाफ और मोतबर इंतखाबी इदारों में से एक है, जहां दुनिया की कई जमहूरियतें भारत के इंतखाबी अमल को एक मॉडल के तौर पर देखती हैं। इंतखाबी कमीशन की जानिब से मुनक़िद ऑल इंडिया मीडिया कॉन्फ्रेंस 2026 से खिताब करते हुए आज ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारत में इंतखाबात आईन के तहत आजादाना तौर पर मुनाकिद कराए जाते हैं, जहां शहरियों को अपने नुमाइंदे चुनने की आजादी हासिल होती है। भारत के महकमे मौसमियात ने जैली हिमालय, मगरबी बंगाल और सिक्किम में आइंदा 2 दिनों के लिए शदीद से बहुत शदीद बारिश और कहीं कहीं इंतहाई शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में इतवार तक किसी किसी मुकाम पर शदीद से बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। बिहार, मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, उड़ीसा और शुमाल मशरकी रियासतों में कल शदीद बारिश की तवक्को है। वेस्टइंडीज के मायानास क्रिकेट खिलाड़ी सर गैरफील्ड सोबर्स का आज इंतकाल हो गया। वो 79 बरस के थे। मायानास क्रिकेटर की मौत की तस्दीक उनके फर्जंद डैनियल ने की है। मार्च 1954 से अप्रैल 1974 के दरमियान क्रिकेट के खेल में बेहतरीन ऑलराउंडर में से एक सोबर्स ने 93 टेस्ट मैच खेले और 57.78 की औसत से 8,032 रन स्कोर किए। इनमें 26 सेंचुरीज और 30 निस्फ सेंचुरियां शामिल हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के फास्ट मीडियम बॉलर सोबर्स ने टेस्ट क्रिकेट में 235 विकेट हासिल किए हैं। उन्होंने एक वाहिद ODI भी खेला है जिसमें उन्होंने 1 विकेट लिया था। वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1 ओवर के दौरान 6 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज भी थे। ये संग मील उन्होंने साल 1968 में ग्लैमॉर्गन के खिलाफ नॉटिंगम शायर के लिए खेलते हुए कायम किया था। भारत ने आज FIH खवातीन के हॉकी आलमी कप 2026 के लिए अपने 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। मिडफील्डर सलीमा टेटे इस पुरवकार टूर्नामेंट में भारतीय टीम की क्यादत करेंगी, जो 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नेदरलैंड्स में मुनाकिद होगा। गोलकीपर सविता और बिचू देवी खरीबाम ने टीम में अपना मुकाम बरकरार रखा है। इशिका चौधरी, सुशीला चानू, पुरखरमरम ज्योति और शिल्पी दाबास दिफाई पोजीशन संभालेंगी। मिडफील्ड की क्यादत सलीमा टेटे करेंगी और उनके साथ निकी प्रधान, साक्षी राणा, नेहा और दीपिका सोरेंग इस पोजीशन पर खेलेंगी। भारत की फॉरवर्ड लाइन ऋतुजा, ददोसा पिसाल, नवनीत कौर, दीपिका, इशिका, बलजीत कौर और

0: ड्यूटी डंगरडंग संभालेंगी। भारत को पूल डी में रखा गया है जिसमें चीन, इंग्लैंड और जुनूबी अफ्रीका शामिल हैं। टीम 18 अगस्त को जुनूबी अफ्रीका के खिलाफ और 20 अगस्त को इंग्लैंड के मुकाबले मैच से कबल हॉकी स्टेडियम में 16 अगस्त को चीन के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेगी। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म ने जींद से भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मरकज नागरिक देवोभव के जज्बे के साथ हर शहरी के लिए जिंदगी गुजारने में आसानी और नए मौके फराहम करने के तई अहदबंद है। हुकूमत ने पार्लियामेंट के इजलास से कबल इतवार के रोज कुल पार्टी मीटिंग तलब की है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू इतवार से मोलदोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया के 3 रोजा दौरे पर रहेंगी। नीति आयोग ने सरमायाकारी फ्रेंडलीनेस का इशारिया 2026 जारी किया है। गुजरात आला तरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली रियासत के तौर पर उभरी है। इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु आते हैं। और मायानाज वेस्टइंडीज क्रिकेट खिलाड़ी गैरी सोबर्स का इंतकाल हो गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार कार्यक्रम के लिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है कि शोधन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: वाह।
4: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

श्रोताओं नमस्कार। आज बातें एक ऐसी अदाकारा और गायिका की जिन्होंने अपने आगमन से ही फिल्मी दुनिया में मचा दी थी हलचल। उनकी आवाज के सभी थे इतने कायल कि हर गाना होता था सुपरहिट। पर उन्होंने फिल्मी दुनिया में तब कदम रखा था जब फिल्में होती थी बेआवाज। उन्होंने जीता दिल क्योंकि था उनका अलग ही अंदाज। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज बातें होंगी अभिनेत्री और गायिका कानन देवी की।

कानन देवी एक अदाकारा और गायिका ही नहीं थी, बल्कि वो तो फिल्मी दुनिया में महिलाओं के लिए एक पहल बनकर आई, क्योंकि ये वो दौर था जब तथाकथित सभ्य समाज की महिलाओं का फिल्मी दुनिया में आना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता था। कानन देवी आगे चलकर भी फिल्मी दुनिया में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में अग्रणी रही और कई काम भी उन्होंने इसके लिए किए, लेकिन वो बातें बाद में। अभी पहले सुन लेते हैं कानन देवी की वो आवाज़ जिसने अपने नाम कर ली थी लाखों दिलों की धड़कन।

देवी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत मात्र 10 साल की उम्र से ही कर ली। वो दौर मूक फिल्मों का था। मूक फिल्मों से आगे बढ़ते हुए उन्होंने बोलने वाली फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। वो बांग्ला की पहली स्टार कही जाती रही हैं। पहली फिल्म 1926 में आई, जिसका नाम था जयदेव। बोलने वाली फिल्मों के दौर में कानन देवी ऐसी अभिनेत्रियों में भी अग्रिम पंक्ति में आती हैं, जो पर्दे पर खुद के लिए गाया भी करती।

तकरीबन 4 दशकों तक कानन देवी फिल्मी दुनिया में सक्रिय रहीं। मूक फिल्मों से उन्होंने बांग्ला फिल्मों की ओर अपने करियर को आगे बढ़ाया। वो कई बड़े निर्माता निर्देशकों के साथ फिल्में करती रहीं। वो दौर ऐसा था जब अभिनेता अभिनेत्री फिल्म थिएटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में काम किया करते थे, जिसमें उनका प्रति महीने का एक निश्चित वेतन तय किया जाता था और इसके बदले एक निश्चित समय के लिए अभिनेता अभिनेत्री उनके अलावा किसी और के साथ काम नहीं किया करते थे। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में कानन देवी ने उस समय कोलकाता के मशहूर फिल्म निर्माण कंपनी न्यू थिएटर के साथ करार किया। इसके पहले और बाद में भी अन्य कई बैनर्स के साथ वो करार में रहीं, जैसे मदन थिएटर, ज्योति थिएटर, राधा थिएटर आदि। उन्हें इस दौर की अभिनेत्रियों से ज्यादा मेहनताना भी दिया जाता था, क्योंकि कानन देवी के अभिनय के साथ साथ उनके गीत सफलता के अलग पायदान छुआ करते।

0: रही है आली, अम्मा की डाली झूम रही है आली।
1: यहाँ कानन देवी के सफलता के किस्से सुनकर हम उनके कायल हो रहे हैं, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि उन्होंने सफलता के शिखर को छूने के लिए कड़ी मेहनत से काम लिया। 22 अप्रैल 1916 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जन्मी कानन देवी का बचपन कठिनाइयों से भरा था। पिता के व्यसन की आदत के कारण पहले गरीबी का सामना करना पड़ा और बाद में पिता के गुजर जाने के बाद नन्ही कानन देवी पर बचपन से ही माँ और स्वयं के जीवन यापन का बोझ भी आ गया। यहीं से शुरुआत हुई उनके अभिनय जीवन की।

0: अपने छोटी सी उम्र से ही फिल्मी पर्दे पर मूक फिल्मों में काम की शुरुआत करने के कारण कानन देवी ने तो ठीक से पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। अपनी आत्मकथा में उन्होंने कई बातों का उल्लेख किया है, जिसमें उस दौर में फिल्मी दुनिया में आई महिलाओं की स्थिति पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। उन्होंने बेबाक अंदाज में अपने कई सह अभिनेताओं की असुरक्षा की भावना का भी उल्लेख किया है। कानन देवी उन पहली अभिनेत्रियों में से एक रहीं जिन्होंने हिट फिल्मों के फायदे में एक हिस्से की बात निर्माता निर्देशकों के सामने रखी। उनकी आत्मकथा शोबेर आमी नोमी यानी सभी को मेरा नमन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अपनी बात रखने में निडर थी।
1: तुम बिना कल ना आवे मोहे, तुम बिना कल ना आवे।

आनंद देवी अपने अभिनय जीवन में एक लंबे समय तक बांग्ला फिल्मों में सक्रिय रहीं। उसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्मी दुनिया का रुख किया। ये उनके जीवन का वो समय भी रहा जब उन्होंने खुद को हर करार से मुक्त करके अलग अलग निर्माता निर्देशकों की फिल्मों में काम करने का साहस किया। आगे चलकर कानन देवी ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी हाथ आजमाया और अपना एक बैनर शुरू किया जिसका नाम रखा श्रीमती पिक्चर्स।

कानन देवी की कई फिल्में बांग्ला और हिंदी दोनों भाषाओं में एक साथ बनी और दोनों ही इंडस्ट्री में हिट भी रहीं। उनकी कुछ ऐसी ही फिल्मों में शामिल हैं विद्यापति, मुक्ति, स्ट्रीट सिंगर, लगन, सपेरा, जवाब और अनन्या। कानन बाला के नाम से फिल्मी करियर की शुरुआत करने के बाद धीरे धीरे उन्हें कानन देवी का नाम मिल गया और वो इसी नाम से मशहूर हैं। कानन देवी उस जमाने के तकरीबन सभी मशहूर सितारों के साथ फिल्मों में नजर आईं। इनमें नाम शामिल हैं कुंदनलाल सहगल, पंकज मलिक, पहाड़ी सान्याल, छवि बिस्वास, पृथ्वीराज कपूर के छोटे भाई त्रिलोक कपूर, अशोक कुमार और न्यू थिएटर के मालिक प्रथमेश चंद्र बरुआ, जिनके साथ उनकी कई फिल्में आईं।

कानन देवी संगीत से पहले ही जुड़ी हुई थीं और उनकी आवाज भी लोगों के दिलों तक पहुंचा करती थीं। लेकिन उनके संगीत जीवन में एक मोड़ तब आया जब वो मिली संगीत के जादूगर रायचंद बोराल से। आरसी बोराल ने कानन देवी को हिंदी की बारीकियां भी सिखाई और उन्हें शास्त्रीय संगीत के साथ साथ पश्चिमी संगीत और भारतीय संगीत सीखने के लिए भी प्रेरित किया। कानन देवी ने उस्ताद अल्लाह रखा से संगीत की तालीम ली। उनकी आवाज में अब मधुरता के साथ साथ रियाज का जादू भी नजर आने लगा। बात जब कानन देवी के गायन की हो रही है तो यहाँ जवाब फिल्म में उनका गाया वो गीत याद आता है जिसने सफलता के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे। तो चलिए सुनते हैं वो गीत।

कानन देवी की आवाज में ये इकलौता ऐसा गीत नहीं है जिसे चाहने वालों ने रातों रात प्रसिद्ध कर दिया। उन्होंने ये काम इसके बाद भी कई बार किया। एक समय आया जब कानन देवी को अभिनय से अलग एक गायिका के रूप में सम्मान मिला और ये वो समय था जब मेगाफोन ग्रामोफोन ने एक गायिका के रूप में उन्हें रिकॉर्ड्स के लिए अनुबंधित किया। सफलता एक ओर लोगों के मन में घमंड भी ले आती है, लेकिन कानन देवी ऐसी नहीं थी। मौका मिला तो उन्होंने इसे जिम्मेदारी समझी और तैयारी के लिए उन्होंने भीमसेन चटर्जी और आनंदी दस्तीदार से संगीत की तालीम ली। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक समय ऐसा भी आया जब कानन देवी को उस दौर में उनके गीतों के रिकॉर्ड्स की बिक्री के कारण हर 3 महीने में रॉयल्टी के 25,000 रुपए मिलते थे।

कानन देवी एक ओर जहां लगातार सफलता हासिल कर रही थीं, वहीं वो फिल्मी दुनिया और समाज में महिलाओं की स्थिति पर भी लगातार विचार कर रही थीं। उन्होंने फिल्मी दुनिया में काम करने वाली वृद्ध अभिनेत्रियों के भरण पोषण के लिए महिला शिल्पी महल नामक संस्था की स्थापना की और उसे अपने खर्च पर लंबे समय तक चलाती रहीं। उन्होंने अपने काम में खुद को आगे बढ़ाने के लिए हिंदी के साथ साथ संस्कृत साहित्य की शिक्षा, संगीत की शिक्षा, अंग्रेजी सीखना, विदेश में जाकर फिल्मों से जुड़े कई विषयों की शिक्षा भी ली। ये बताता है कि वो केवल सफलता के पायदान ही नहीं चढ़ रही थीं, बल्कि अपने निजी उत्थान और खुद को तराशने की दिशा में भी काम कर रही थीं, जिसका असर भी पूरी तरह नजर आ रहा था।

कानन देवी ने अपने जीवन में जब भी ये महसूस किया कि उनके साथ कोई अन्याय हुआ तो उन्होंने उस ओर कोई न कोई ऐसा निर्णय भी लिया जिससे आगे आने वाली अभिनेत्रियों के सामने एक मिसाल कायम हुई। जैसे कि उन्होंने जब फिल्मी दुनिया में अभिनेताओं के समान मेहनत आने की बात की तो उन्हें मना कर दिया गया। ये बात उन्हें नागवार गुजरी और उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपना काम करने की ठान ली। उनका ये कदम उनके सशक्त व्यक्तित्व को दर्शाता है।

अपनी खूबसूरती, अदाकारी और गीतों के लिए मशहूर कानन देवी ने फिल्मों में भी अलग अलग किरदार निभाए। उस जमाने में प्रचलित घरेलू और बेचारी महिला का किरदार उन्होंने जितनी आसानी से निभाया, उतनी ही सरलता से वो एक मॉडर्न और सशक्त विचारों वाली महिला के किरदारों में भी ढली। पर्दे पर उनके किरदार महिलाओं के लिए भी एक मिसाल बनकर सामने आया करते। वो निजी जीवन में भी इसी तरह सशक्त, प्रगतिशील विचारों का आईना बनकर सामने आती।

कानन देवी की प्रसिद्धि का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली तो लंदन के हाई कमीशन में इस समारोह में मुख्य अतिथियों में से एक बनकर वो शामिल हुई। उनके गीत और भाषण इस समारोह में भारतीय गर्व को बढ़ा रहे थे। कानन देवी एक बहुचर्चित सोप कंपनी के विज्ञापन में भी ली गई, जिसे आज तक केवल चर्चित अभिनेत्रियों को शामिल करने के लिए जाना जाता है।

नंदन देवी को फिल्मी दुनिया में उनके योगदान के लिए 1968 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1976 में उन्हें फिल्मी दुनिया के प्रसिद्ध पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया गया। इसके अलावा भी समय समय पर वो कई सम्मान पाती रहीं। कानन देवी 17 जुलाई 1992 को इस दुनिया से रुखसत हो गईं और अपने पीछे छोड़ गईं अपनी बहुमूल्य विरासत और सशक्त सोच।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री और गायिका कानन देवी पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। कार्यक्रम का संपादन सौरव घारू। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रसारण सेवा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, फिल्म 103 मेगाहर्ट्ज पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं। हम लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। अभी से लेकर 11 बजे तक बने रहें श्रोताओं हमारे साथ खूबसूरत सफ़र में, यानी रजनीगंधा गीत के इस कार्यक्रम

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। अपनी आपने सुना अलग अलग फिल्म के गाने को लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल, आर डी बर्मन के संगीत।

तू मेरा क्या लागे वो साथ हैं किशोर कुमार और सलमा आगा की आवाज़ में। अभी आपने सुना श्रोताओं फिल्म ऊंचे लोग के इस नगमे को, अनजान के बोलते आर डी बर्मन के संगीत। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

जावेद अख्तर के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत, फिल्म का नाम मिस्टर इंडिया। अभी आपने सुना इस फिल्म के गाने को कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा FM 103 मेगाहर्ट्ज पर, और बने रहे हमारे साथ। 10:20 और 38 सेकेंड हो चुके हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में। ये सफ़र बना है 1 रात्रि 11 बजे तक।

करियरी तेरा सवा सत्यानाश। अरे जेनी, अरे लड़की, ये तूने क्या किया? अरे मुझ लड़के को मझधार में तन्हा छोड़कर तू अकेली किनारे पर उछल पड़ी। बेवफा, बेरहम, बेमुरव्वत, तेरी ये हिम्मत।

ने फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। अभी आपने सुना फिल्म मर मिटेंगे इस गाने को अनुराधा पौडवाल किशोर कुमार की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत। और अब आइए सुनते हैं फिल्म उस्ताद के इस गाने को कविता कृष्णमूर्ति किशोर कुमार की आवाज़ में। गाने के बोल इंदिवर के हैं और अनु मलिक के संगीत हैं। फिल्म का नाम है उस्ताद।

किशोर कुमार अलीशा चिनाई की आवाज़ में आपने सुना फिल्म मिस्टर इंडिया के इस खूबसूरत से नगमे को। जावेद अख्तर के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। आइए सुनते हैं फिल्म अलग अलग के इस गाने को। किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाज़ में, आर डी बर्मन के संगीत, आनंद बख्शी के बोल, और इसी गाने के साथ आज के इस सफ़र से, रजनीगंधा के सफ़र से हमें दीजिए इजाज़त। रात 11 बजे सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली के समाचार 11:05।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में नाकाम रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
1: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने PGI चंडीगढ़ में PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।